प्राणायाम और हमारे आसनों को आप सुन करके करते हैं, सबसे पहले प्रणव प्राणायाम को अपनाएं। प्रणव प्राणायाम हमने आपको कई बार इसकी विधि भी बताई है और इसके लाभ भी बताए हैं। हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि प्रणव प्राणायाम हम करते कैसे हैं। हम किसी भी स्थान पर यानी स्वच्छ स्थान पर मैट बिछा के बैठेंगे, योगा मैट। अगर हमारे पास योगा मैट नहीं है तो हम कोई भी साफ चद्दर बिछा लें, या कोई भी, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो एक पतला वाला जो कंबल आता है हम वो भी बिछा के बैठ सकते हैं। और पद्मासन की स्थिति में जब हम बैठ जाएंगे तो आराम से बिल्कुल अपनी श्वास को मध्यम गति में और अपने चेहरे पे इस तरीके का एक मधुर सी मुस्कान हो, जैसे लगे कि हाँ हम एक प्रकृति के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। एकाग्रचित होकर के पहली उंगली की मुद्रा अपनाते हुए सीधे हमें बैठ जाना है, यानी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके। तत्पश्चात आंखें बंद करके हम ओम का उच्चारण 5 बार करेंगे। ओम का उच्चारण 5 बार करने के बाद में हम बिल्कुल शांत चित होकर बैठ जाएंगे। शांत चित होकर के बैठने का उद्देश्य केवल मात्र ये नहीं है कि हम बाहरी दुनिया से अलग हटके बैठ रहे हैं, जबकि ये है कि हमें अंदर की दुनिया में जाकर के खुद को जागृत करना होता है। हम 1 घंटा अगर नित प्रतिदिन योग को देते हैं तो बाकी के 23 घंटे हमारे बहुत ही स्वस्थ और शांति पूर्वक बीतते हैं। तो प्रणव प्राणायाम के लाभ तो ये हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम, जो कि हमारा मुख्य प्राणायामों में से एक है। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस दूर होता है, तनाव जिसे बहुत रहता है वो दूर होता है, साथ ही साथ आपका मन शांत होता है। अनुलोम विलोम हार्ट ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ हार्ट ब्लॉकेज के होने के बाद की समस्याओं को भी कम करता है। अनुलोम विलोम के बारे में हम जितना भी कहें बहुत ही कम है, क्योंकि अनुलोम विलोम से श्वास से निर्मित और हमारे नाक और कान से, गले से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वह सब इससे ठीक होती हैं। प्राणायाम फायदे कौन से हैं, आइए हम आप उसको बताते हैं। हमारे प्राणायाम परिणाम स्वरूप अभ्यास के कई मनोवैज्ञानिक लाभों का भी संकेत देते हैं, जिसमें कैंसर रोगियों के साथ साथ हृदय रोग के रोगियों में भावात्मक प्रतिक्रियाओं में सुधार, थकान, कमजोरी, तनाव और चिंता को कम शामिल करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सभी आसनों का जो राजा है वह कौन है? सभी आसनों का राजा जो कि कहा जाता है वो शीर्षासन। आइए हम शीर्षासन के बारे में जानते हैं। शीर्षासन का नाम शीर्ष शब्द पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है सिर। शीर्षासन को सब आसनों का राजा माना जाता है। इसे करना शुरुआत में बहुत अधिक कठिन लगता है, लेकिन इसके लाभ जो हैं वह बहुत ही अत्यंत लाभप्रद हैं। आइए हम आपको इसके फायदे बता देते हैं। शीर्षासन करने से पहले यह आसन जरूर करना चाहिए, जैसे करने का तरीका, आसन और इसके फायदे बहुत ही आसान से हो जाते हैं। हर आसन की तरह शीर्षासन के भी कई लाभ होते हैं, जिसमें से हम आज आपको कुछ मुख्य बताएंगे। दिमाग को शांत करता है, तनाव और हल्के अवसाद से राहत देने में यह मदद करता है। शीर्षासन जो कि एक पिनल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, हाथों, टांगों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। शीर्षासन फेफड़ों की कार्य कुशलता बढ़ाता है। शीर्षासन से पाचन अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। रजोनिवृत्त के लक्षणों में राहत देता है शीर्षासन। अस्थमा, बांझपन, अनिद्रा, साइन की जितनी भी चिकित्सकीय हैं इसे जरूर से करें। यह कैसे होता है, आइए हम आपको इसका तरीका बता देते हैं। शीर्षासन का करने का तरीका हम आपको आज बहुत ही अच्छे से और विस्तार से बताने वाले हैं। शीर्षासन करने के लिए अपनी योगा मैट या जमीन पर कंबल या कोई मोटा तौलिया बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। बाद में इस पर आपको अपना सिर टिकाना है, तो यह आपके लिए सिर को एक नरम पैड देगा। अब आगे झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से जोड़कर रखें, ताकि आपका सर हिले ना, और आपके सर के बीच में रख करके उसे सहारा मिले। अब सिर को दोनों हथेलियों के बीच में

रखें, श्वास सामान्य रखें, पैर की उंगलियों पर ऊपर आ जाए। आपका शरीर त्रिकोण मुद्रा में होगा। शरीर से आयुज की तरफ पारों को लेकर आए और आपकी पीठ एकदम सीधी हो जाए। जमीन और आपकी पीठ में लगभग 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जब पीठ एकदम सीधी हो जाए तो धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन बाजुओं पर यानी कि फोरआर्म्स पर डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठा लें। पहले टांगों को सिर्फ आधा उठाएं ताकि आपके घुटने छाती को छू रहे हों और पैर मुड़े हों। इस मुद्रा में 1-2 मिनट रहना या अभ्यास करें और फिर अगले स्टेप में जाएं। जब आप पहले स्टेप में निपुण हो जाएं, फिर दोनों टांगों को सीधा ऊपर उठाने की ही कोशिश करें। कोशिश करें कि कम से कम भार सिर पर लें, शरीर को सीधा कर लें और यह कम से कम 30 सेकंड तक ही आपको पहले दिन करना है। शीर्षासन वैसे तो बहुत ही सरल और बहुत ही लाभप्रद है, लेकिन इसको करने की एक टेक्निक से अगर आप करेंगे, अगर आप 1-by-1 स्टेप से करेंगे तो ही आप इसे कर पाएंगे। क्योंकि प्रारंभिक दिनों में जब आप शीर्षासन करेंगे तो थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको शुरुआती दिनों में शीर्षासन कैसे करना है। जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई योगा मैट या पतला सा कंबल या एक टॉवल आप ले सकते हैं अपने सिर के बल नीचे, सिर के नीचे रखने के लिए। उसी के साथ साथ आपको एक दीवाल का भी साथ लेना है, यानी कि आप दीवाल की सहायता से कोई ऐसी आप दीवार ले जहाँ पे उसके सहारे आपको थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर करके बिल्कुल सीधे हो जाए। जब आपको लगे यानी आपको एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा ही पैर उठा करके इसका अभ्यास करना है। जब आपको लगे कि आपके घुटने और पैर बिल्कुल सीधे हो रहे हैं तब आपको दीवार का सहारा नहीं लेना है। और इसके लाभ हमने आपको बता ही दिए हैं कि यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये था दोस्तों आज का शीर्षासन। जैसे हम योग प्राणायाम करते हैं, यह आसन भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे योग की योग पाठशाला में आकर के आज शीर्षासन का जो लाभ है और तरीका आपने सुना और आप इसे नित प्रतिदिन करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, योग की पाठशाला में मैं योगा एक्सपर्ट समता फिर से आपके सामने रूबरू होने आई हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए प्राणायाम के बारे में जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह कैसे करते हैं और इसके लाभ, विधि और इससे होने वाली असावधानियाँ, हम सबके बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राणायाम जीवन का एक रहस्य है। ये जीवन श्वासों की आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है, ये तो सभी को पता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक दोनों उत्पन्न होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रदूषण भरे माहौल से हमें होने वाली चिंता यह दिन ब दिन सताई जा रही है कि प्रदूषण हो रहा है, जिसका मेन कारण है वातावरण में हमें पेड़ पौधों की कमी बहुत मिल रही है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारी श्वासों की गति अपना स्वाभाविक रूप यूं ही खोही देती है, जिसके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाती। ऐसे में प्राणायाम को सीख कर अपने जीवन का एक अंग बनाए, क्यों ना हम अंग ही बनाए और हम उसे अपने जीवन में इस तरह घोल दें जिस तरीके से हम सुबह अपनी नित्य क्रियाएं जिस तरीके से करते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद में हमें लंच हो चाहिए, हमें चाय की तलब होती है, हमें न्यूज़पेपर चाहिए और हमें भागम भागी हमें अपना जॉब भी चाहिए। फिर शाम को थके हारे आकर के हमें डिनर भी चाहिए और थोड़े बहुत टीवी में अपनी न्यूज़ देखते हुए आराम से एक चैन भरी नींद चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने प्राणायाम की जगह पर वो तो खाली रह गई, वो तो हमने उसको पूरा किया ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि प्राणायाम को किस जगह पर हमें अपने जीवन में फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें कि सुबह उठते ही जब हम अपनी नित्य क्रिया करने के बाद इस प्रदूषण भरे माहौल को, जैसे आज जब हम किसी एक मेट्रो सिटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमें आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं,
तो हमें ये फॉग और ये धुआं हमेशा से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियां हो, हमेशा से हमें ये मिलता, दूर दूर से ही हमें प्रतीत होने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम अगर प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में लाएंगे तो हमें दिन ब दिन उसका लाभ और उसकी उसके होने वाली विशेषताएं दिन ब दिन हमारे शरीर में और हमारे जीवन में पूर्णता आने लगेगी। सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के बाद ही किसी दूसरे प्राणायाम करना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है। तो आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना है और उनके लाभ। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ ही है धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राण वायु को अंदर ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना। जैसे एक लोहार होता है दोस्तों, जिस तरीके से लोहार अपना काम करता है, उसे एक धौंकनी, जैसे अगर वो किसी भी चीज को बनाता है तो धौंकनी से अपने हथियार से एक लोहे पर वार करता है तो वो आवाज आती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें वायु को हमें अपने अंदर की श्वास को बाहर की ओर फेंकना और बाहर से हमें अंदर की ओर श्वास को ले जाना। तो आइए दोस्तों मैं बात करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम की विधि। जैसा कि मैंने हमेशा से बताया हुआ है, कोई भी प्राणायाम हो, वो सिंहासन, सुखासन, ध्यान मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। सबसे पहले कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर और मन को स्थित रखें, आंखें बंद कर दें, फिर तेज गति से श्वास लें, जैसा कि मैंने बताया अभी, तेज गति से श्वास लें और तेज गति से ही श्वास को बाहर निकालें। श्वास लेते समय पेट को फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट को पिचकाना चाहिए, इससे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। इस प्राणायाम को करते समय श्वास की गति सबसे पहले धीरे रखें, अर्थात 2 सेकंड में एक श्वास भरना। दोस्तों इस बात की जानकारी आपको पूर्णता लेनी पड़ेगी कि हमें कितने सेकंड में, कितने मिनट में एक प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों 2 सेकंड में एक श्वास भरना है और फिर श्वास को छोड़ना है, फिर मध्यम गति से श्वास भरें और छोड़ें, अर्थात 1 सेकंड में एक श्वास भरना और श्वास को छोड़ना, फिर श्वास की गति तेज कर दें, अर्थात 1 सेकंड में 2 बार श्वास भरना और श्वास निकालना। श्वास लेते समय और छोड़ते समय एक ही गति बनाकर रखें, कुछ इस तरह। वापस सामान्य अवस्था में आने के लिए श्वास की गति धीरे धीरे कम करते जाएं और अंत में एक गहरी श्वास लेकर फिर श्वास निकालते हुए पूरे शरीर को ढीला कर दें। एक बार में श्वास छोड़ें और ढीला। यह प्राणायाम कुछ कुछ कपालभाति की तरह होता है। आइए जानते हैं इनके लाभ। इस प्राणायाम से शरीर को प्राण वायु अधिक मात्रा में मिलती है। जैसे प्राण वायु, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, श्वास, ऑक्सीजन, जिनको भी लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की, जैसे हम पूर्णता श्वास नहीं ले पाते हैं, लगता है कि हम किस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम निरंतर रूप से करने से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इससे हमको निजात मिलती है। यह प्राणायाम शरीर को ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा पूर्ण करता है, जिसके कारण शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर करता है। तेज गति से श्वास लेने और छोड़ने के इस क्रम में हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हृदय में रक्त नलियों को शुद्ध व मजबूत बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारा डायाफ्राम तेजी से काम करता है, जिसमें पेट के अंग मजबूत होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति तो मजबूत बनती ही है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरह करना चाहिए, किस गति में करना चाहिए, कितने सेकंड में करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए और इनसे होने वाले लाभ। दोस्तों, जान लेते हैं इनकी सावधानियां। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्राणायाम महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पे नहीं करना चाहिए और गर्भावस्था की स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हर्निया, दमा, टीबी, अल्सर, पथरी, मिर्गी, स्ट्रोक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये अभ्यास ना करें। अभ्यास को करने से पहले हम आधा सेकंड, एक सेकंड हम अपने आप को पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम प्राणायाम करेंगे। फेफड़े, गला, हृदय या पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, नाक बंद हो या साइनस की समस्या हो तो भी, या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यह प्राणायाम करें। अभ्यास करते समय अगर चक्कर आने लगे, घबराहट हो, ज़्यादा पसीना आने लगे, उल्टी जैसा मन में प्रतीत होने लगे तो यह प्राणायाम रोककर पूर्ण रूप से आराम करें, लेट जाएं, उसके बाद ही हम प्राणायाम करें। नए अभ्यर्थी, जैसे जो लोग ने अभी अभी नया शुरू किया है प्राणायाम, तो मैंने पहले भी दोस्तों बताया हुआ है कि प्राणायाम करने से एक आधा सेकंड, 30 सेकंड ही पहले स्टार्टिंग में करें और एक बैग से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम ना करें। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो रुक करके आराम कर लें, लेट लें और फिर से आप शुरू कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी शुरू में कम से कम 10 बार श्वास छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं। जिनको तेज श्वास लेने में परेशानी हो या कुछ समस्या आती हो तो आरंभ में श्वास धीरे धीरे लें। ध्यान रहे दोस्तों, यह प्राणायाम दोनों नासिका छिद्रों के साथ उत्पन्न होता है और साथ में संपन्न होता है। श्वास लेने और छोड़ने को एक चक्र माना जाएगा, जो एक बार में लगभग 20 चक्र के बराबर होता है। जब यह 20 चक्र, 25 चक्र होने लगे तो यह प्राणायाम पूर्ण होगा। पूरा प्राणायाम करने के बाद श्वास की गति को पुनः सामान्य करने के लिए अनुलोम विलोम या आंतरिक और बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्राणायाम करने के लिए हमें 2 से 3 बार या 5 बार कपालभाति मध्यम गति से करते हुए तीव्र गति तक करके यह प्राणायाम पूर्ति करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राणायाम पूर्ति पर दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे व आंख पर लगाएं और उसके बाद धीरे से आंखें खोलने के बाद में ओम का उच्चारण मध्यम गति से

तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का चक्र पूरा हुआ। फिर हम मिलेंगे अपने नए एक प्राणायाम की ओर अपनी योगशाला और अपनी योग पाठशाला में। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समता, योगिनी समता, योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में बात करने आई हूं, जो कि हमारी बॉडी में तो होते हैं पर हमें उनका सही उपयोग और सही मापदंड नहीं पता होता है। सही मापदंड और

सही संतुलित अपने शरीर को करने के लिए कई ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसे अगर हम सही पावर पॉइंट का यूज करें, प्रेशर पॉइंट का यूज करें, तो हम घर बैठे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट शरीर के वे ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे स्थान होते हैं जहां नसें, रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां एक दूसरे से मिलती हैं। इन बिंदुओं पर हल्का सा भी अगर दबाव डालने से शरीर में ऊर्जा का प्रभाव संतुलित होता है और दर्द या तनाव में भी राहत मिलता है, जिसको हम एक्वा प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्वा प्रेशर के पास जाते तो हैं, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते तो हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हम घर में यूज तो करते हैं, लेकिन ऐसी मसाज थेरेपी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसका सही इस्तेमाल न करने से हमें दर्द की बजाय, दर्द ठीक होने की बजाय दर्द और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये जानना जरूरी होता है कि कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट जो कि काम कैसे करते हैं, कैसे दबाव डालते हैं हमारी मांसपेशियों पर, रक्त वाहिकाओं पर और हमारी एक दूसरे की मांसपेशियां यानी कि मांसपेशियों के बिंदुओं पर। तो आइए आज हम बात करते हैं कि प्रेशर पॉइंट कैसे काम करते हैं। जब किसी प्रेशर पॉइंट पर दबाव डाला जाता है

नमस्कार श्रोताओं, सुबह के आध्यात्मिक शो में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हम हर सुबह को एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, सीखते हैं और कुछ नए प्रयास से उन्हें ढूंढते हैं। और आज का विषय है मोरपंख। क्या कभी आपने गौर किया है उस मोरपंख के बारे में, जिसे हम किताबों में रखते हैं, मंदिरों में सजाते हैं या श्री कृष्ण के मुकुट में देखते हैं? वो सिर्फ एक

मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते। यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिछी, कभी आँखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था। यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

आप सुन रहे हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोरपंख की। तो चलिए मोरपंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्जवल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोर पंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोर पंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोर पंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोर पंख। मोर पंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोर पंख। वास्तु शास्त्र में मोर पंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोर पंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है। इसलिए मोर पंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोर पंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोर पंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोर पंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोर पंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोर पंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोर पंख। सिख धर्म में मोर पंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोर पंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोर पंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोर पंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोर पंख। तो मोर पंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोर पंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिस पे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौम आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोर पंख का इससे क्या संबंध है? मोर पंख करबला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोर पंख या मोर पंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार
हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और करबला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और करबला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

जो कि मोर पंख पर ही आधारित है, एक सुंदर भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से, जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पे अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोरपंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोरपंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोरपंख को गौर से देखा है, उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं, खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं, जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो, मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर, मगर सबसे शांत रहकर। और जब समय आए त्याग का, तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोरपंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।
2: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बने।

0: नजर है मेरी जा, मुझे खबर है। और पूरी खबर है, खबर इतनी ज्यादा है कि भाई इस खबर का पता लगाते लगाते हम स्टूडियो तक आप पहुंचे हैं और आपसे अब मुलाकात करने वाला है। एक बार आपका वापस से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। और आज है वेंसडे और वेंसडे मॉर्निंग का शो कुछ स्पेशल बनाने की हमने सोच रखा है, जिसको आज मिल करके आपके संग पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, आज क्या कुछ होने वाला है इस बात की जानकारी आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचने वाली है और उन अपडेट्स को आप अपने से जोड़ करके कहीं ना कहीं उसके बारे में अवेयर होने वाले हैं। तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। और अब बारी है सीधे आपको ले चलने की, कहाँ भाई, आपके थॉट ऑफ द डे की तरफ, और किधर। सो चलिए आपके थॉट ऑफ द डे की तरफ हम ले चलते हैं आपको और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और इस स्पेशल थॉट में आज आपको क्या मिलेगा, ये तो आप खुद ही समझने वाले हैं जब इस थॉट को सुनने वाले हैं। सो क्या है थॉट?
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: हाँ जी, तो जाहिर है अब हम आ गए हैं आपके थॉट की तरफ और बताने वाले हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या है। बड़ा ही प्यारा है। आज का थॉट कहता है कि शायद कुछ लोग जीवन से ज्यादा जीवन की संभावनाएं जीते रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग जिंदगी से ज्यादा जिंदगी की संभावनाएं जीते रहते हैं। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आज का थॉट ऑफ द डे बताता है कि ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो जीवन जीने से भी ज़्यादा, यानी अपनी ज़िंदगी को जीने से कहीं ज़्यादा जीवन की जो संभावनाएं हैं वो जीते रहते हैं। शायद ऐसा जीवन जब कुछ भी ना किया जाए और चल रहा हो सादा सा, मामूली सा, चलता रहेगा। उसी जीवन में आप उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं जिन संभावनाओं में आप ज़्यादा जी पाते हैं, जो संभावनाएं आपके जीवन को और भी ज़्यादा प्रकाशमय करती है, उजाला लाती है, खुशियां लाती है, सुकून भर देती है। तो कई बार ऐसा होता है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में जितना देखने में किसी को भी बड़ा ही नॉर्मल सा लग सकता है, बट वो किसी और के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये बात अपने आप में बहुत अलग है, लिटरली बहुत अलग है। तो मुझे लगता है अगर ऐसी खूबसूरत शख्सियत आप भी हैं कि ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी की संभावनाओं में जीते हैं, तो मुबारक हो। अब आप जो है ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ को भी अपने लिए ख़ास महसूस करते हैं और वो सिंप्लिसिटी आपकी स्पेशलिटी बन जाती है, यानी वो सादा होना आपकी खासियत हो जाता है। तो ऐसा होता है ना कि किसी को थोड़ा सा भी वॉक करने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कुछ पुराने गाने सुन लेने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, कोई छोटे छोटे वजहों की वजह से किसी से मिलने पहुँच जाता है, कोई इसलिए कॉल नहीं करता कि कॉल करके नहीं बताएंगे, सामने से मिल करके बताएंगे, कोई ख़रीद कर कई बार गिफ्ट ना दे करके अपने हाथ से बना करके दे देता है। तो हो रही है सिंपल सी ही चीज़ है लेकिन काफ़ी अलग है। तो एक सादा सा जो जीवन था उसको आपने स्पेशल बना लिया अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों से, और आप जीवन से कहीं ज़्यादा उसकी संभावनाओं में जी रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कितना स्पेशल जी रहे हैं आप, खुद कितने स्पेशल हैं। यस ऑफ कोर्स, मैं आप से ही कह रहा हूँ कि यू आर द वेरी स्पेशल पर्सन। सो इस थॉट को सुन लेने के बाद अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि आप हैं, आप हैं। सो भाई चलिए, फ़िलहाल आप अब कितना स्पेशल फील कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल एक और आपको स्पेशल फील कराने के लिए ये खूबसूरत सा नगमा आ गया है आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: आज क्या है,
0: क्या है आज? बुधवार है वैसे।

0: क्या बात है भाई, ये पुराने गानों का यार कसम से चार्म ही अलग है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग की स्पेशल शो में। आपकी मॉर्निंग जो कार्यक्रम नान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं। हम स्वागत करते हैं उनका जो फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, अपनी कार में ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, या फिर आप ट्रांजिस्टर से खेती करते हुए सुन रहे हैं, या आप किचन में खाना बनाते हुए सुन रही हैं, या हो सकता है पढ़ाई में ब्रेक निकाल करके आप अपना मॉर्निंग शो आरजे अदनान वाला सुन रहे हों। इसके साथ ही साथ रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से पूरे दुनिया भर से सुनने वाले सभी श्रोताओं का आरजे अदनान वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो अब चलिए चलते हैं चैट बॉक्स पर। आगे है मैसेजेस, काफी कुछ लिख भेजा है आपने। सबसे पहले अंश भट्टा का आया है परेड सरकार से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही अंश लिखते हैं कि वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचा तान मीत जाती है। ओह खींचा तान की से याद आया रबर, रबर बहुत याद आता था बचपन में, वो छोटे छोटे कागज बना करके ऐसे निशाने लगाते थे। खैर बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। एंड आशु मिश्र जी हैं जिनका कल बर्थडे था, बर्थडे गर्ल थी, आज वो वापस आ गई है अपने मॉर्निंग शो में और लिखा प्यारा सर सुप्रभात सर जी, थैंक यू सो मच। और कल का बर्थडे कैसा रहा, अब ये आप अलग से बताइए ना इसको। मीनू जी फ्रॉम द गोंडा लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, और खजुराहो से सुनती। अच्छा क्या बात है, खजुराहो मध्य प्रदेश से एक और हमारी प्यारी लिसनर जुड़ गई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करते हैं, मध्य प्रदेश से आप गोंडा FM को सुन रही हैं। साथ ही इसके बाद आपने बाकी लोगों को भी मॉर्निंग विश की है, कायनात हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी लिखती हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप लोगों ने आज के थॉट को सुनने के बाद अपना रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो सबसे पहले कौन क्या लिखता है, हाँ मैं बताता हूँ कौन क्या लिखा है। मीनू जी ने सबसे पहले लिखा है कि वाओ सुपर्ब थॉट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद जो है अगला रिएक्शन आशु जी ने भी लिखा है, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, दुख एक अनुभव है जो हर एक के पास है, फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसका खुद पर विश्वास है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस थॉट लिखा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इसके बाद सविता दुबे जी लिखती है बहुत ही प्यारा सुविचार लगा, थैंक यू। कायनात ने लिखा है वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉट, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को थॉट काफी ज्यादा पसंद आया और ये थॉट आपके लिए बेहतरीन साबित हो, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। और इस तरह के आप भी जिंदगी से कहीं ज़्यादा जिंदगी की संभावनाओं में अगर जीते हैं तो भैया आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप भी जिंदगी की संभावनाओं में जी रहे हैं। तो फिलहाल जिंदगी की संभावनाओं में आप कैसे जीते हैं इस बात को बताना नहीं चाहेंगे, चलिए फटाफट से मैसेज करिए और बताइए और हम आपको ले चलते हैं अगले नगमे की तरफ जो है बड़ा ही मत वाला, रंग वाला और दुनिया में छा जाने वाला।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

क्या आपने भी कभी चुराया है रायता? नहीं चुराया तो चलिए हम बता दें, खैर चुराया तो होगा, रायता अच्छा बहुत लगता है। सो अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि रायता भी चोरी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स आपको पसंद है, हालांकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने एक्स्ट्रा गिलास में ज़रूर लिया था पीने के लिए। ऑलराइट, हाँ हाँ चुरा लिया।

तो मुझ चेतन करके एक रायता होता है जिसमें मूली पड़ती है। जी हाँ, मूली से बनने वाला रायता जो है वो मुझ चेतन कहलाता है। इसके अलावा हमारी तरफ छुहारे का रायता भी होता है जो कि हमने अभी तक का टेस्ट नहीं किया, हो सकता हो आपने किया हो छुहारे का रायता। इसके अलावा पहाड़ी रायता होता है, सन्नाटा रायता होता है, बथुआ, इवन बथुए को डाल करके भी रायता बनाया जाता है, उसको हम बथुआ रायता भी कहते हैं। एंड इसके अलावा जो बहुत फेमस है अपने तरफ वो है बूंदी रायता, राइट। बूंदी रायता भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये उत्तर भारत के रायते का हम मैप आपको समझा रहे हैं। पश्चिम भारत की तरफ अगर हम चलते हैं तो पाते हैं पिटोड़ का रायता। जी हाँ, पिटोड़ का रायता काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है पश्चिम भारत में। और दाला रायता, दाला रायता भी होता है, इवन शेंग दाना रायता भी होता है, और तो और बिम्बला ससाओ भी होता है। यानी अलग अलग तरह की चीज़ों को डाल करके अलग अलग तरह के रायते से बनाया जाता है। मध्य भारत में जब हम आते हैं तो पाते हैं पुदीना रायता, यानी रायते में पुदीना होता है और उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा मध्य भारत में पाया जाता है कद्दू धुंगर का रायता। जी हाँ, कद्दू धुंगर का रायता, यानी वो रायता जिसमें कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है, वो रायता काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है मध्य भारत में। अब हम पूर्वी साइड अगर चलें तो लौकी का रायता, जाहिर है लौकी का रायता मैंने कल ही खाया था इत्तेफाक से, मुझे नहीं पता था कि लौकी के रायते का मैं मैप बताने वाला हूँ। इसके बाद तड़का रायता। भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं बड़ा स्पाइसी हो तो लाल जो सूखी मिर्च है उसका तड़का लगता है रायते में, आ क्या बात है भाई, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। इसके अलावा शोशार रायता, शोशार रायते में होता क्या है ये भी आपने खाया होगा, जिसमें होता है हमारा खीरा, खीरे से बनता है शोशार रायता। ये पूर्वी भारत में अक्सर देखा जाता है, आमतौर पर घरों में बनता है। इसके अलावा अम्बुला रायता, सो अम्बुला रायते में भी मिर्च पड़ती है और ये कच्चे आम का बनता है, यानी अमिया का बनता है और ये अम्बुला रायता कहलाता है। दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चले जहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो वहाँ बुरानी रायता होता है जिसमें लहसुन पाई जाती है। इसके अलावा मेंथे, दोडपत्रे, तंबुली पाया जाता है, मेंथा डाल करके भी रायता बनता है ग्रीन ग्रीन। इसके अलावा पेरुगू पचड़ी बनता है, नाम होता है पेरुगू पचड़ी। चुकंदर पचड़ी होता है, यानी चुकंदर से बना हुआ रायता होता है जो कि शायद आपने कभी ना खाया हो, मैंने भी नहीं खाया है। एंड एक और रायता होता है जिसमें मिलाया जाती है प्याज, और वो होता है वेंगाया शायर पचड़ी। जी हाँ, नाम होता है इसका वेंगाया शायर थायर पचड़ी, शायर नहीं थायर। वही मैंने सोचा भाई ऐसे रायते कब आने लगे मार्केट में जो शेर व शायरी का शौक रखते हैं। सो इतने सारे रायते जो हैं वो बताए हमने मैप पे। हमने शुरुआत की उत्तर भारत से जहाँ मुझ चेतन, छुहारे का रायता, पहाड़ी रायता, सन्नाटा रायता, बथुआ रायता, बूंदी रायता। पश्चिम भारत की तरफ हम आए तो देखा पिटोड़ का रायता, दाला रायता, शेंग दाना रायता, बिम्बला ससाव। मध्य भारत में हमने देखा पुदीना रायता, कद्दू धुंगर का रायता। पूर्वी भारत में हम पाते हैं लौकी का रायता, तड़का रायता, शोशार रायता, अम्बुला रायता। और दक्षिण भारत में हम पाते हैं बुरानी रायता, पेरुक पचड़ी, मेंथे तंबुली और चुकंदर पचड़ी, वेंगाया थायर पचड़ी। यानी उधर जो है रायते को पचड़ी बोला जाता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो पा रहा है। वैसे अब आपको कौन सा रायता पसंद है, खाने वाला या फैलाने वाला? और अगर फैलाया है तो कहाँ फैलाया, कोई एक एग्जांपल दे के आप बता सकते हैं? मैंने कई बार ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रायते फैलाए हैं, अचानक पहुँच करके लोगों की पोल खोल दी है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि हम इससे बचे रह गए हैं, तो कई बार ऐसा वाकई निकला है मुझसे कि भाई रायता फैल गया पूरा, यानी पूरा बना करके रखा था, सारी चीज़ें हो गई थी एंड टाइम पे कुछ ऐसा हो गया जिससे कि सारा मामला जो है वो बिगड़ गया। तो ऐसे रायते मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में भी फैले होंगे, है ना? चलिए अच्छी बात है, अब नहीं मतलब रायता फैलना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप उसको समझ पाए। ये अच्छी बात है। फिलहाल हम चलते हैं अब गाने की तरफ, और बड़ा ही खूबसूरत सा अगला नगमा है जिसको कई नए सिंगर्स ने कवर भी किया है और उसको काफ़ी लोग सुनते रहते भी हैं और उनको अच्छा भी लगता है।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
7: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
8: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है।
9: देखिए, प्यार कैसे होता है हमको ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है कि जिस वक्त सोने को लेकर के इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, उसी वक्त गोल्डन कलर का कुछ दिखा है और काफ़ी हैरान कर देने वाला दिखा है। लिटरली आप यकीन कर पाना मुश्किल होगा आपका, लेकिन ये सच है। अब क्या है ये तो हम आपको बताने वाले हैं इस सॉन्ग के सुन लेने के बाद, क्योंकि आप जान ले प्यार कैसे होता है।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए भाई, गोल्डन गोल्डन की बात हो रही थी तो अब हम बताने वाले हैं कैसे गोल्डन चीज़ जिसकी खोज की गई है, जो देखा गया है, जो आप सुनने के बाद सुन करके हैरान होने वाले हैं कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ है। क्या हुआ है? गोल्डन कुछ ऐसा दिखा है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बता दें कि फिलहाल जो एक अलग सी चीज़ देखी गई है वो है अंटार्कटिका के द्वीप पर पहली बार गोल्डन पेंगुइन देखी गई है। अब ज़रा सोचिए, पेंगुइन हमेशा आपको बड़ी ही क्यूट लगी है ब्लैक एंड वाइट में। इवन अभी एक पेंगुइन की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जो पहाड़ों की तरफ अकेले जाती हुई नज़र आई थी, जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने और न जाने कौन कौन से लोगों ने अपनी राय दी थी, ज़िंदगी में एक्साइटमेंट को लेकर के या गम को लेकर के बहुत सारी चीज़ बताई थी। फिलहाल अब आपको बता दें कि अंटार्कटिका द्वीप पर पहली बार गोल्डन पेंगुइन नज़र आई है, और हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वेबसाइट्स पर गोल्डन पेंगुइन की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, और ऐसा माना जाता है ये एक दुर्लभ प्रजाति है। जी हाँ, लेकिन इसका सच जो है थोड़ा अलग और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जो कि आपको जान करके और भी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी जागने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि बेल्जियम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वीएस एडम्स ने 2019 में इसकी फ़ोटो ली थी, और उन्होंने बताया था कि वहाँ लगभग 1,02,000 किंग पेंगुइन मौजूद थे, लेकिन उनमें से ये एकमात्र सुनहरे रंग का पेंगुइन था, यानी सिर्फ इकलौता इतने सारे पेंगुइन्स में। सो वैज्ञानिकों की माने तो पेंगुइन में ल्यूसियम नाम का एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति मौजूद होती है। ल्यूसियम से बॉडी में मेलेनिन नाम के रंग द्रव्य कम बनता है, इसी वजह से जानवरों या फिर अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं यानी पक्षियों की, तो इनकी बॉडी में जो सामान्य रंग है वो बदल जाता है। यही वजह था कि इस पेंगुइन के काले पंख जो है सुनहरे और हल्के पीले रंग के दिखाई दे रहे थे। सो एक्सपर्ट के हिसाब से ऐसे पेंगुइन बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए इन्हें 1 in a million मामला कहा जाता है, यानी लाखों में एक वाला मामला। क्या कहते हैं? 1 in a million ये मैटर कहलाता है। अब ज़रा सोचिए कितना ज़्यादा दुर्लभ नज़ारा होगा, और जिसने कैप्चर किया भाई वो तो कितना ज़्यादा खुश नसीब होगा कि पहली बार ज़िंदगी में उस शख्स ने भी आंखों के सामने गोल्डन पेंगुइन देखी होगी। तो अभी ब्लैक एंड वाइट पेंगुइन तो आपको बड़ी ही क्यूटी सी लगती है, अब अगर आपके सामने गोल्डन आ जाए पेंगुइन तो आप क्या करने वाले हैं? सोचिए और बताइए। फिलहाल मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि भाई इस बात को आप भी बता दिए कि अगर आप कभी नज़रों से देख लेते हैं गोल्डन पेंगुइन तो फिर आपका क्या रिएक्शन होने वाला है। फिलहाल चलते हैं आपको आगे सॉन्ग की तरफ ले चल करके, और वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे ओ मेरे प्यारे शिष्य सद्गुणी
1: जी गुरुदेव,
0: कबीर का कोई दोहा तो सुनाओ।
1: अभी सुनाता हूँ। कबीर तेरे दुनिया में कैसे कैसे हैं ईशु, कोई मांगे कपड़ा लता तो कोई मांगे टिशू टिशू टिशू।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, सो भाई एक बार वापस से आ गए हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉकर जी अदनान, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। वक्त है सिटी अपडेट की तरफ चलने का और बताने का कि भाई आज सिटी अपडेट में क्या है आपके लिए और क्या कुछ हो रहा है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: हाँ जी, तो चलिए आपको बताते हैं कि मोतीगंज से ये खबर है और मनकापुर की जो आदर्श ग्राम पंचायत गढ़ी मोतीगंज है उसमें बारात घर बनने वाला है। सो कल की ही बात है, ग्राम प्रधान ने बताया, उसमें भूमि पूजन किया और ये गांव जो है मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में सेलेक्टेड है। ग्राम प्रधान ने बताया कि भाई सामुदायिक शौचालय के पास बनने वाले बारात घर का निर्माण 3 महीने में पूरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी वंदना वर्मा, सियाराम और इस तरह से कई लोग जो हैं मौजूद हैं। ग्राम प्रधान जो हैं वो अरुणेश यादव हैं। इसके अलावा आपको बता दें, दिव्यांग जन पंजीकरण शिविर में 46 का चयन हुआ है। विकास खंड परिसर में मंगलवार को जो दिव्यांग जन पंजीकरण और सहायक उपकरण वितरण के लिए शिविर लगा, शिविर में चूंकि काफ़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, जहां पे उनका पंजीकरण किया गया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए। इस तरह से काफ़ी लोग पहुंचे और 46 दिव्यांगजन पात्रों का पंजीकरण किया गया। ज़रूरत के हिसाब से जो सहायक उपकरण है उसको अवेलेबल कराया गया, उसकी प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको बैटरी चले ट्राईसाइकिल, वॉकर ये सब बांटे गए हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि फिलहाल CHC में डॉक्टर्स की कमी से रोज़ाना रेफ़र किए जा रहे हैं मरीज़, और कहीं ना कहीं मांग की जा रही है, जहां पर 96 डॉक्टर्स होने चाहिए वहां सिर्फ 18 डॉक्टर्स से काम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही हैं, जिसको लेकर के मांग की जा रही है कि भाई डॉक्टर्स की संख्या ज़रूर बढ़ाई जाए। इस तरह से रेफ़र करना पड़ता है और कई बार बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं जो सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है उसको लेकर के है। आपको बता दें 91 नंबर्स के साथ में यूपी के पहलवानों को दूसरा नंबर मिला है। सो ये खबर है। फिलहाल हम बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हो रहा ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में यूपी के पहलवान छायर हैं। हालांकि ग्रीको रोमन शैली के मुकाबले में हरियाणा की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के बाद जारी रैंकिंग में हरियाणा के बाद 91 नंबर्स के साथ में उत्तर प्रदेश को दूसरा नंबर मिला। सो महिला वर्ग की प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह और यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण सिंह ने पहलवानों से परिचय प्राप्त करके कराया और इसमें मुकाबले भी हुए। सो फिलहाल आपको ये हमने अपडेट दी। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट भी आपके गोंडा से ही आ रही है। सो आज जो है वो 10:30 सुबह क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोज़गार मेले का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी सुबह 10:30 से CHC करनैलगंज में जन्म से कटे होंठ और कटे तालू की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, उन मरीजों के लिए पंजीकरण शिविर भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह 11:00 से रुपहडीहा ब्लॉक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय केंद्र सरकार की निदेशक प्रतिमा सिंह चौपाल लगाने वाली हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अगली अपडेट क्या आ रही है। फिलहाल अगली जो अपडेट आ रही है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई आ रही है। यूपी बोर्ड के जो मेधावी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है जगह जगह, मतलब ऐसे कई जगह है जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आए बच्चों को, उसको लेकर के उनको सम्मानित लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा स्वगणना 24 घंटे में पूरी करने की बात कही गई है शिक्षकों के लिए, नहीं तो कार्रवाई की बात की गई है। सो डिजिटल जनगणना के तहत चल रही स्वगणना को लेकर के BSA अमित कुमार सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है और इन्होंने आदेश जारी किया है कि सभी जो टीचर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, 24 घंटे के अंदर अपनी स्वगणना पूरी करने के निर्देश दिए। कहा आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि शासन के निर्देशों के बावजूद ज़िले के ज़्यादातर विद्यालयों और कार्यालयों के कर्मचारियों ने अभी तक स्वगणना नहीं की है। इस वजह से प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में गोंडा का प्रदर्शन काफ़ी कम है और BSA ने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी https://se.cens.us.gov.in पर पोर्टल पर ज़रूर जाकर के अपना पंजीकरण करा ले और प्रोसेस पूरा होने के बाद स्वगणना पहचान संख्या जो प्रति संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र है वहाँ पे अवेलेबल करानी होगी। इसके अलावा सभी शिक्षकों कर्मचारियों को अपने तैनाती क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वगणना के लिए इंस्पायर करना होगा। सो इस तरह से जो है वो स्वगणना की बात सामने आ रही है। सो फिलहाल गैस की किल्लत को लेकर के भी एक अपडेट है जो कि है कि गैस किल्लत को लेकर के कल यानी मंगलवार को वकीलों ने अपर आयुक्त मीनू राणा से मुलाकात की और ज़िले में जो गैस सिलेंडर्स की किल्लत है जिससे कंज्यूमर्स परेशान हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं अधिवक्ता व्यस्तता के चलते लाइन लगाकर गैस नहीं ले सकते हैं जिससे घरों में रसोई गैस की समस्या पैदा हो गई है। इससे पहले कई एडवोकेट्स ने गैस किल्लत को लेकर के डीएम से शिकायत भी की थी। डीएम ने डीएसओ को निर्देशित किया लेकिन गैस एजेंसियों के मालिकों ने इसको फिलहाल नज़रअंदाज करने की बात आई जिसको लेकर के फिलहाल बात वापस से की जा रही है। सो ये अपडेट रही और इस अपडेट के साथ ही साथ अब हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ और अगला सॉन्ग लाजवाब है भाई साहब। मुझे लगता है अगले सॉन्ग को सुन लेने के बाद मार्केट में जो है वो सनस्क्रीन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है, तो चलिए हम बता देंगे कि ऐसा क्या है जो सनस्क्रीन की डिमांड हम ज़्यादा बढ़ने की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और इस वक्त 10:20 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है भाई साहब कि इस वक्त जो है 89.6 एफएम का मॉर्निंग शो अपने शबाब पर चल रहा है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ। अगले सॉन्ग में जो आवाज़ है वो है किशोर कुमार साहब की। आहा, क्या बात है।
1: गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा,
0: गोरा दिन दो दिन में ढल जाएगा, इसलिए कहते हैं भाई सनस्क्रीन लगा के निकला करो और अपने सेहत का ख्याल रखो, पानी शानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया करो और घूरा कम करो अपना, है ना।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुना तो रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
9: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
10: जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
9: नहीं।
10: थोड़ा भी नहीं?
9: नहीं।
10: झूठा भी नहीं?
9: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो चलिए भाई आपको बताते हैं। हमने बताया था रायता मैप, जिस पर आपके रिस्पॉन्सेज भी आए थे और काफ़ी नए लोग भी वापस से आ गए हैं, तो उनके बारे में भी बताने वाले हैं। प्रीति जी आ चुकी हैं बहराइच से। सर जी वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर मौजूद है। इसके बाद गीता श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और आपको सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। दीपक हथिया गड़गोंडा से हैं, गुड मॉर्निंग।

उसके अंदर काफी ज्यादा फील होता है ना। यस ऑफ कोर्स, सच में। तो चलिए भाई, आप लोगों ने मैप के बारे में बताया था, तो सबसे पहले हमारी गीता जी ने रिस्पॉन्स दिया है, बूंदी का रायता, लौकी का रायता, खीरे का रायता और बथुए का रायता। अच्छा, ये रायता आपने खाए हैं, क्या बात है। एंड आशु जी ने बोला है, सर जी बूंदी रायता घर में ही बन जाता है। बेशक, सही कहा। चुकंदर का रायता बहुत अच्छा लगता है, मैंने बनाया। ओके, सो बहुत सारे रायते के बारे में हमने बताया था, फ्रूट रायता, प्याज का रायता। गीता जी, आपने ये खाया है या आपने सिर्फ नाम कोट किया है? चुकंदर, लौकी, खीरा, बूंदी का रायता, पाइनएप्पल का रायता बनाया है आशु जी ने। क्या बात है भाई, ये रायता एक्सपर्ट बन गई हैं आप इसी के साथ में। ज़बरदस्त लेकिन लगता है भैया, रायते की बात ही अलग है। मतलब रायता नाम आ जाए तो खाना ऐसा लगता है जान आ गई, जान जान। सो इसके अलावा भैया, आप लोगों ने मैसेजेस भेजे हुए हैं गोल्डन पेंगुइन को लेकर के, और इसको लेकर के लिखा है गीता जी ने, दो पैरों पर भागती गोल्डन पेंगुइन। जी हाँ, बेशक, सही बात है। एंड ये गोल्डन पेंगुइन जो है बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है। इस तरह की कोई अभी तक खबर नहीं आई थी, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि कोई गोल्डन पेंगुइन होती भी है। सो ऑफ कोर्स इसलिए ये काफ़ी अलग रही। और अब चलते हैं फिलहाल आपके नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और अगला सॉन्ग जो है वो दोस्ताना मूवी का ये गाना है। एंड शायद आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि आखिर कौन सा ये गाना है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना है और अपने यारों को डेडिकेट भी किया है। चलिए वापस से अपने यार को डेडिकेट कर दिए ये याराना वाला सॉन्ग।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: हाँ जी, दो बड़ी अहम अपडेट है जो कि आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। एक तो मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव जी का निधन 38 साल की एज में हो गया है और आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो है वो है ऑफ कोर्स नीट यूजी जो है वो निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया नीट का एग्ज़ाम और पेपर लीक के वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। सो क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो आपको हम बता दें कि फिलहाल पेपर लीक और एग्जाम में जो अनियमितताएं थी उसके बाद एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की जो एग्ज़ाम था उसको निरस्त कर दिया है। 5 दिन की चुप्पी और फिर इनकार और अब फजीहत के बाद एनटीए ने वायरल जो पेपर लीक था प्रश्न पत्र उसको हूबहू होने की बात कबूल कर ली है और जांच जो है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और एनटीए ने अपनी नाकामी एक्सेप्ट करते हुए दोबारा एग्ज़ाम कराने की घोषणा की है। सो जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा और परीक्षा जो है वो 3 मई को हुई थी जिसमें 22,79,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं और आरोप ये भी है कि परीक्षा से कई दिन पहले जारी हुए गेस्ट पेपर से कई जो प्रश्न हैं वो मिले थे। 6 राज्यों में फैले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर जारी हुआ था जिसमें 400 लोग जुड़े हैं और इस बीच नासिक क्राइम ब्रांच ने जो है शुभम खैरनार 30 को गिरफ्तार भी कर लिया है और इन्हें इंदिरा नगर इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस के हिसाब से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था और बाद में डिजिटल निगरानी के जरिए पकड़ा गया। सो राजस्थान में सीकर और जयपुर से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि परीक्षा से पहले मोबाइल फ़ोन पर प्रसारित कुछ सवाल सच में प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के जो ज़िंदगी पर इसका कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। ये एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराया जाएगा। परीक्षा जो एग्ज़ाम है ये 7 से 10 दिन में जारी किया जाएगा और साथ ही स्पष्ट किया कि दोबारा एग्ज़ाम में नया शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही पहली फीस में ली गई फीस भी वापस की जाएगी। इस साल नीट यूजी देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में भी आयोजित की गई थी। सो फिलहाल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक के जो है लगातार स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी हो रहा है और नीट यूजी की जो एग्ज़ाम है निरस्त होने के बाद देश भर में विद्यार्थियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया है। फिलहाल दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना होगा ऐसा कहा है एनटीए ने। स्पष्ट किया है कि परीक्षा के लिए दोबारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, ना ही कोई अलग से शुल्क देना होगा। इसके लिए मौजूदा पंजीकरण और परीक्षा केंद्र विकल्प ही मान्य रहेंगे। एनटीए ने कहा है कि भाई परीक्षा दोबारा कराने से स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को असुविधा होगी पर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखने के लिए यह कदम ज़रूरी था। एनटीए ने अपने कैंडिडेट्स और जो उनके अभिभावक हैं उनसे सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील भी की है। फिलहाल आपको हम बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में फाइलों में अटकी हुई है। 2024 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा कंप्यूटर आधारित कराने की सिफारिश की थी। एनटीए ने 5 बार फाइल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी पर टकराव और सही कोऑर्डिनेशन नहीं होने से जो ये पूरा प्लान था ये सिरे से नहीं चढ़ पाया। जबकि एनटीए ने एम्स पीजी एग्ज़ाम में डेमो भी लिया था जिसमें कभी लीक की संभावना नहीं रहती है। सो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी नाकामी तो है ही है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने दिया है इतनी तैयारी की न जाने कहां से कहां सेंटर से गए, होटल लिया, किराया दिया, आए गए पेट्रोल डीजल ट्रेन बस कार जैसे भी इंतज़ाम करके सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा झटका होता है जब ऐसा कोई बड़ा वो भी इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माने जाने वाला नीट जैसा पेपर अगर लीक हो जाए और उसके बाद उसको निरस्त कर दिया जाए। सो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। लगातार इधर कई वक्त से ऐसे मामले चलते चले आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल बता रहे हैं सिस्टम में और इसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िलहाल आपसे बात करते करते कब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का ध्यान ही नहीं रहा। चलिए फिलहाल आप बने रहिए अपने गोंडा एफएम पर और सुनते रहिए बैक टू बैक शोज। हम वापस से आपसे मुलाकात करेंगे आपके फ्राइडे स्पेशल शो में और अब आप मुस्कुराते रहिए, गाना गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए अपना 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन
और मैं आरजे अदनान चलता हूँ आपसे विदा लेते हुए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई, वो तो टाइम पर आ जाती है, आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
6: ठीक है, पूछती हूँ समता जी। अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है, वह रूठ कर नैहर चली गई है।
7: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
0: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका अपनी मम्मी का घर होता है।
6: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं, किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई है।
7: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना, चलो चलो हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
0: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने, यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
6: भैया किरण दीदी नहीं है पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है।
0: अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
0: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमारी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर काटा हुए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: थैंक यू रेनू भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजी पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं, सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: हुई ना बात, आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: ये क्या खुसुर पुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना? अरुणी को कच्ची अमिया खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ सीधे मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिमी देख देख देख अरुणी, तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

0: चलो चलो, रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
4: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
3: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
4: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
3: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
4: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
3: जी।
4: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगी तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
3: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
4: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
3: जी
4: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
3: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
4: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
3: जी।
4: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर, भेदभाव खत्म करना।
3: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
4: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
3: जी।
4: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
3: जी,
4: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
3: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता
4: जी। जरूर
3: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
4: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
3: जी।
4: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
3: जी,
4: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
3: जी।
4: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
3: जी
4: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
3: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
4: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
3: जी।
4: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं।
3: जी,
4: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
3: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
4: देखिए खानसा जी,
3: जी
4: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा,
3: जी
4: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं,
3: जी
4: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
3: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
4: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका।
3: जी,
4: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
3: बिल्कुल,
4: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
3: बिल्कुल,
4: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
3: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
4: जी आकांक्षा जी।
3: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
4: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
3: जी,
4: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
4: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
3: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
4: देखिए आकांक्षा जी,
3: जी
4: मेरा संदेश बहुत साफ है।
3: जी,
4: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए।
3: जी,
4: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
3: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
4: जी धन्यवाद मैम।
3: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। लगातार पानी पीते रहिए, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि आजकल लोग घर से बाहर निकलना बंद कर रहे हैं। और एक बेहतरीन सलाह भी है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बॉटल जरूर लेकर जाएं। प्लस कोशिश करें कि आप ज्यादा देर धूप में ना रहे। इस बढ़ती गर्मी में जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक हीट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम, न जाने ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम्स, कितने ही इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर एक और इश्यू है जो बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है और उसे कहते हैं नोज ब्लीडिंग, यानी कि नाक से खून का आना। जब अचानक से नाक से खून आने लग जाता है तो उस मोमेंट में इंसान हद से ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो बीपी बढ़ चुका है या फिर मेरे दिन ही नजदीक आ चुके हैं और अब कुछ नहीं होने वाला। बट होता इसका उल्टा है। अगर नाक से खून आने लगे तो इसके क्या कारण होते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। जी हाँ, एक बार आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की एक खूबसूरत सी पहल जिसमें बात होती है आपकी सेहत की। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आज हम बात करेंगे नाक से खून आने की समस्या। नाक से खून आने की समस्या लगभग 10 में से 6 लोगों को होती है। कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर वो इस चीज की समस्या को फेस भी करते हैं और कई बार इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो नाक से खून क्यों आता है और गर्मियों में ज्यादातर ये समस्या देखने को क्यों मिलती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि अगर नाक से खून आता है तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे कंट्रोल करना है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी, स्टे ट्यून्ड।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: अरे सुना
8: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
9: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
3: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
9: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
3: जी,
9: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
9: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
3: जी,
9: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
3: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
9: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
3: जी,
9: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं। पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
3: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
9: जी। आज दीदी
3: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
9: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
3: जी।
9: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
3: जी,
9: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
3: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
9: जी दीदी
3: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
9: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
3: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: Delicious.
8: है ना? Let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं नाक से खून आने की समस्या में स्पेशली जो गर्मियों में आमतौर पर देखी जाती है वो समस्या, जिसको देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नाक से खून बहना यानी कि नाक की अंदरूनी वेसल्स में उत्तकों से खून का रिसाव होना, एक या दोनों नथनों से हो सकता है। आमतौर पर ये केवल एक नाक की यानी कि एक नेजल से यानी कि एक नथुने से ज्यादातर आती हैं और इसमें इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये सोचकर कि बीपी बढ़ चुका है या फिर कोई और कारण है। लेकिन जिस तरह से आजकल तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से 45 डिग्री 48 डिग्री होता जा रहा है और इसमें जो सूखी हवा चल रही है यानी कि ड्राई एयर चल रही है, इसकी वजह से आजकल आमतौर पर यह समस्या देखने को मिल जाती है। आपकी नाक में कई छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाएं आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को गर्म या नम करने में मदद करती हैं। लेकिन ये नाक के भीतरी सतह के करीब स्थित होती हैं। जब हवा नाक से होकर गुजरती है तो ये रक्त वाहिकों को सुखा सकती है और उनमें जलन पैदा हो सकती है। इससे उनमें चोट लगने या टूटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे नाक से खून आने लगता है। लगभग 10 में से 6 लोगों को जीवन में कभी ना कभी नाक से खून आने की समस्या होती है। ज्यादातर मामलों में यह मामूली ही होता है और इसका इलाज घर पर ही हो जाता है। घर के इलाज से ही नाक से खून आने की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर खून बहुत ज्यादा बह रहा हो या आपको उल्टी या सांस लेने में तकलीफ जैसे अन्य लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं तो उस वक्त आपको इमरजेंसी सुविधाएं लेने की जरूरत होती है। हम आपको बता दें, नाक से खून आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर गर्मियों में जो मेन कारण होता है वो होता है ड्राई एयर का, यानी कि बढ़ते हुए तापमान में जो सूखी हवा चलती है, जब आप ऑक्सीजन के साथ उस हवा को अंदर लेते हैं और ये आपके उन वेसल्स को यानी कि उन रक्त वाहिकों को चोट पहुंचा कर उन्हें क्षति पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो या तो टूट जाती हैं या तो फट जाती है। इसी की वजह से आपके नाक से खून आने लग जाता है। जी हाँ, इस खून को रोका भी जा सकता है और कई बार इसका इलाज घर पर ही मुमकिन भी होता है। लेकिन नाक से खून बहने के प्रकार की अगर हम बात करें तो नाक से खून बहने के दो मुख्य प्रकार होते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता खून बहने के स्थान के आधार पर इनका वर्णन करते हैं। हम आपको बता दें, सामने से नाक से खून बहना, नाक के अगले हिस्से से खून बहना नाक के सामने वाला भाग यानी कि स्पेक्ट्रम के निचले हिस्से से शुरू होता है जो नाक के दोनों किनारों को अलग करता है। नाक के इस सामने वाले हिस्से में मौजूद कोशिकाएं और छोटी रक्त वाहिकाएं नाजुक होती हैं और ये आसानी से टूट जाती हैं और इनको टूट कर ये खून के साथ बह सकती हैं। ये नाक के खून को बहने का सबसे आम प्रकार है और आमतौर पर ये गंभीर नहीं माना जाता और इतना गंभीर होता भी नहीं है। आमतौर पर इसका इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के, तो नाक के भीतर के हिस्से में होने वाले नोज ब्लीडिंग आपके गले के पास यानी कि आपके नाक के पिछले हिस्से में स्थित बड़ी रक्त वाहिकाओं की वजह से होती हैं। जब उनमें बहुत ज्यादा ब्लड का प्रभाव बढ़ जाता है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और अगर नाक से खून आपके पिछले हिस्से से बहता है, जिसकी वजह से फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है या फिर आपको उल्टी जैसा फील होता है, इस प्रकार की नोज ब्लीडिंग में आपको तुरंत ही चिकित्सा के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सिर्फ नाक के सामने के हिस्से से खून आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आप इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है नाक से खून आते वक्त या फिर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, उस वक्त आपको डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं लक्षण और कारण की, तो हम आपको बता दें, नोज ब्लीड जो फिलहाल आजकल ज्यादातर देखने को मिल रहा है उसका एक रीजन है ड्राई एयर। इसके अलावा एलर्जीज का होना या फिर अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, उसके कारण भी। दवा में मेनली जो ब्लड थिनर्स होते हैं, ब्लड थिनर्स का मतलब है वो दवाइयाँ जो आपके खून को पतला करने का काम करती हैं। कई लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है यानी कि उनके खून के थक्के जम जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें ब्लड थिनर्स की दवा देते हैं यानी कि ब्लड थिनर देते हैं। और वो मेडिकेशन अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो कई बार ये कारण भी होता है आपके नाक से खून आने का। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो बहुत ऊंचाई है यानी कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके नाक से खून आ जाए। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, लाइक अगर आपको पॉलन से एलर्जी है, आपको धूल से एलर्जी है या फिर आपको किसी और ऐसी चीज़ से एलर्जी है, तो उस एलर्जी के कारण भी आपके नाक से खून आ सकता है। प्लस अगर आप नाक को बहुत देर तक कुरेदते रहते हैं तो आपके नेल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से भी आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर नाक से खून आने के अलावा आपको कोई और लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट अगर आपको नाक से खून आने के साथ साथ कुछ और भी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको सांस लेना, चक्कर आना, उल्टी होना या फिर दर्द होना, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस एक नथुने से खून बहने का कारण है तो उसका कारण क्या हो सकता है। नाक से खून बहने की समस्या अधिकतर एक ही नथुने से होती है, लेकिन कभी कभी ये दोनों नथुनों से एक साथ भी आ सकती है। नाक में खून बहने के कई कारण हो सकते हैं। हम आपको बता दें, गर्म और कम अर्दात वाली जलवायु, ऊंचा क्षेत्र यानी कि किसी पहाड़ पर चढ़ाई या फिर किसी ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा गर्म हो, यानी कि अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हो सकता है कि आपकी एक नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें अक्सर मैंने खुद भी अपने बचपन में देखी है, जब मेरे ही साथ पढ़ने वाले एक बच्चे को गर्मी के मौसम में अधिकतर नकसीर फूटने की समस्या रहा करती थी। उनके घर वाले इतना डरते नहीं थे, बस वो कॉटन लगाकर अपना सर कुछ देर तक ऊपर रख के अपने उस खून के बहाव को रोक देता था। तो क्या इसको ऐसे ही ठीक किया जा सकता है या कुछ और भी है जो आप कर सकते हैं? चलिए आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात कि अगर नोज ब्लीडिंग आपको होती है तो आपको क्या कुछ करने की जरूरत है।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं नोज ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून आने की समस्या के बारे में। यूं तो हमने गर्मियों में होने वाले कुछ कॉमन कॉजेज के बारे में जाना, या फिर वो चीज़ें जो आपको आम तौर पर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें एलर्जीज आ गई, जिसमें गर्म हवा आ गया, गर्म कमरा आ गया, या फिर कुछ ऐसा बढ़ता हुआ तापमान जिसके संपर्क में आप काफ़ी देर तक रहते हैं। तो ये सारे मेन कारण होते हैं नाक से खून आने के। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप को नाक से खून आने की समस्या देखने को मिल सकती है। पहला, अगर आपने अपनी नाक में कोई वस्तु डाली हुई है, यानी कि अगर आप अपनी नाक में कोई ऐसी चीज डाल रखे हैं, कई बार लोगों की आदत होती है, उन्हें पता नहीं क्यों लेकिन अपनी नाक में कभी कागज, कभी कुछ डालने की आदत है, जिसकी वजह से फिर उन्हें बाद में छींक आती है और उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। अगर आपको भी ऐसी आदत है तो आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको कभी कभी नोज ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। अगर आपके नाक या चेहरे पर चोट लगी है तो इसके कारण भी आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको नोज ब्लीडिंग देखने को मिले। प्लस अगर आपको साइनस का संक्रमण है, जिसके कारण आपको लगातार छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है या नाक आपकी बह रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको नोज ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिल जाए। हम आपको बता दें, सफाई सामग्री से यानी कि सफाई वाली चीज़ों से निकलने वाले केमिकल्स कई बार कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी सुगंध यानी कि जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और वो जब आप उन्हें इनहेल करते हैं इसकी वजह से भी आपके नाक से खून आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या नहीं है तो अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो ये कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जो नाक से खून बह सकता है। पहला है शराब का सेवन करना, दूसरा है उच्च रक्तचाप यानी कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, या आपका बीपी अप डाउन लगा रहता है और आपका बीपी ऑलमोस्ट हर वक्त हाई रहता है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि आपकी नाक से खून आए। नाक में ट्यूमर का होना, चेहरे और नाक की सर्जरी का होना, या फिर आप गर्भावस्था में हों, तो गर्भावस्था में भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि इंसान सो रहा होता है और अचानक से उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। नींद के दौरान नाक से खून आने के कारण वही हैं जो दिन के दौरान आते हैं, यानी कि गर्म हवा का होना, एलर्जी का होना, या फिर आपकी जो नाक की ऊपर की नाजुक झिल्ली है उसको नुकसान किसी तरह से पहुंचा है। सर को एक तरफ करके सोने से भी नाक पर सीधा दबाव पड़ता है और रात में नाक से खून आ सकता है। तो रात में अगर आप अपने नाक को या फिर अपने सर को दोनों हाथों से, इवन कई लोगों को मैंने देखा है कि वो तकिए से भी अपने सर को ढककर सोते हैं, एक तकिया नीचे, एक तकिया ऊपर, बाकी तकिया उनके आसपास पड़े रहते हैं, अगर आप भी इनमें से किसी एक तरह से सोते हैं, वो भी इस गर्मी में, तो हो सकता है कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से आपके नाक से खून आना शुरू हो जाए। अगर हम बात करें जोखिम की, तो किसी को भी नाक से खून आ सकता है। अधिकतर लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर इसका अनुभव होता है, लेकिन कुछ लोगों को नाक से खून आने की संभावना अधिक होती है। इनमें से जो लोग शामिल हैं वो हैं 2 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे, जो गर्म हवा से, सर्दी से, एलर्जी से, या नाक में उंगली या फिर कुछ सामान या फिर कोई ऐसी चीजें डालने की वजह से अपने नाक की उन पतली झिल्लियों को नुकसान पहुंचा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके नाक से खून आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। बात करते हैं अगर दूसरे उम्र की, तो 45 से 80 वर्ष की आयु में जो वयस्क होते हैं, 50 वर्ष की आयु के करीब पहुंचने पर रक्त का थक्का जमना, इस आयु के आसपास आपको बीपी की समस्या अधिकतर देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से भी कई बार 45 से 80 वर्ष के बीच में जो लोग होते हैं उन्हें नोज ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, गर्भ अवस्था के दौरान नाक की रक्त वाहिका फैल जाती है, जिससे नाक की परत में मौजूद नाजुक रक्त वाहिका पर अधिक दबाव पड़ता है और आपको नोज ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। जिन लोगों का खून बहुत ज्यादा पतला है, अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं, दवाओं में अगर आप एस्पिरिन या फिर वारफेरिन जैसी दवाएं आपकी शामिल हैं, तो जी हाँ, आपको नाक से खून आ सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या इसका कोई निदान है, क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है कि अगर मुझे नाक से खून आ रहा है, बार बार आ रहा है, हर गर्मियों में ऐसा होता है, इवन सर्दियों में भी हो रहा है, तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है, क्या इसका कोई और भी कारण हो सकता है? तो वह कारण की तो हमने ऑलमोस्ट आपको हर एक कारण बता दिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आप किसी ऊँचे एल्टीट्यूड की जगह पर हैं, यानी कि किसी ऊँचाई की जगह पर हैं, आप गलत तरीके से सो रहे हैं, आपकी नाक पर चोट लगी है, आपकी नाक की सर्जरी

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की गोंडा शहर की धड़कन पर। बात कर रहे हैं आज हम नाक से खून आने की समस्या, और अब बात करेंगे कि इसका निदान कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको रोक कैसे सकते हैं। भाई, रोकथाम करना और निदान करना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निदान की। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स आपके करवा सकते हैं, जिसमें आपके शारीरिक परीक्षा यानी कि आपके फिजिकल टेस्ट शामिल हैं। डॉक्टर कारण जानने के लिए आपके फिजिकल टेस्ट करा सकते हैं, नाक में किसी बाहरी वस्तु के लक्षण को भी जान सकते हैं। हो सकता है आपकी नाक के अंदर कोई ऐसा वायरस या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो, जिसकी वजह से आपको नोज ब्लीडिंग बार बार हो रही हो। तो इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट होता है, प्लस डॉक्टर्स आपसे आपका फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, प्लस पूछ सकते हैं कि आपने अपने पास्ट में यानी कि अपने बीते हुए कल में कौन कौन सी दवाइयाँ ली थी, या वर्तमान में आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। डॉक्टर दवा और इतिहास के बारे में ज़रूर आपसे पूछते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आपने कभी कोई मेडिसिन ली हो, तो प्लीज़ उसे ज़रूर से बताइएगा कि आपने ये मेडिसिन ली है, और उनका नाम बताइएगा, प्लस उनकी डोसेज भी ज़रूर से बताइएगा, ताकि डॉक्टर को ये बात कंफर्म हो सके जो आप दवा ले रहे हैं, कहीं ये दवा की वजह से तो नहीं, कहीं ये दवा आपको नुकसान तो नहीं कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। हम आपको बता दें भाई, अगर आपके नाक से बार बार खून आ रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली कि आपकी नाक जो आजकल सूखी हुई इस हवा में यानी कि ड्राई एयर के अंदर ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पतली झिल्ली होती है वो फट जाती है यानी कि टूट जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके नाक से खून आ रहा है तो नाक के अंदर नमी बनाए रखें, नाक को ज़ोर से साफ करने से बचें। कई लोगों को सफाई, हाइजीन मेंटेन करने के चक्कर में वो अपने नाक के साथ कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर जाते हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ी से साफ करते हैं कि सफाई के साथ साथ नाक की झिल्लियाँ भी फट जाती हैं और वहाँ से खून आने लग जाता है। तो नाक को साफ कीजिए, लेकिन ज़ोर से साफ मत कीजिए। छींकते समय अपना मुँह खुला रखें। हाँ, आई नो कभी कभार ऐसा होता है कि छींकते समय लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है, और वो उस लाउड आवाज़ को रोकने के लिए, या फिर कहें तो जो उन्हें शर्म आती है कि एक बंद कमरे के अंदर मैं कैसे छींकूंगा, तो उसको रोकने के लिए स्पेशली हमारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि वो अपनी छींक को रोक लेती हैं, मुंह को बंद कर लेती हैं, और उनकी नाक पर पूरा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से भी आपकी नाजुक झिल्लियाँ फट सकती हैं और आपके नाक से खून आ सकता है। तो जब भी आपको छींक आए तो हमेशा अपने नाक के साथ साथ अपने मुँह को खुला रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि नाक में ठोस वस्तु ना डालें। नाक में अगर आप कोई ठोस वस्तु डालते हैं तो डालने से बचें। अगर आपको नाक से बार बार खून आता है, तो अगर आप कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको चोट लग सकती है, तो सबसे पहले उसको कवर ज़रूर करें। बच्चों के नाखून छोटे रखें, क्योंकि नाखून की वजह से बच्चे अपनी नाक को अक्सर चोट पहुंचा लेते हैं। तो बच्चों के नाखूनों को हमेशा कट करके रखें, प्लस अपने नाखूनों को दांत से ना चबाएं। हाँ, भी नेल कटर का इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपने

को साफ करें, क्योंकि आपकी उंगलियां यानी कि आपके नेल्स आपकी उन पतली झिल्लियों को अक्सर चोट पहुंचा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कब कब आपको डॉक्टर्स की सहायता लेनी चाहिए। अगर आपके नाक से बार बार खून आ रहा है, यानी नाक से लगातार बार बार खून बह रहा हो, खासकर यदि ये बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक रहता है, तो फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। और अगर आपको अनीमिया है तब तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको अनीमिया है, प्लस आपके नाक से बहुत जल्दी जल्दी प्लस बहुत लंबे लंबे समय तक खून निकल रहा है, तो जिससे आपके शरीर में खून की कमी और ज़्यादा हो सकती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। प्लस अगर आपका खून का बहाव नहीं रुक रहा है, यानी कि आपको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आपने उस जगह पर दबाव डाला हुआ है जहां से खून निकल रहा है, यानी कि अगर आपके सामने के हिस्से से खून निकल रहा है, तो आपने अपने मुंह को ऊपर करके आपने नाक के उस पॉइंट को पकड़ रखा है जिससे आपको लगता है कि यहाँ से खून रुक सकता है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक उसका बहाव यानी कि खून का बहाव नहीं रुका है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। प्लस अगर आपके गले में महसूस हो रहा है, वो जो ब्लड है, वो जो खून बह रहा है, अगर वो आपके गले में महसूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको दिक्कत हो रही है बोलने में, या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, प्लस आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नाक से खून आने के साथ साथ ये अन्य लक्षण होते हैं जिसमें से आपको उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स या फिर ऐसे कोई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सर पे चोट लगने के कारण भी नाक से खून आ सकता है। यदि सर पर चोट लगने के कारण से आपके नाक से खून निकल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बच्चों में नाक से खून आना, यदि बच्चों में नाक से बार बार खून आ रहा है जिसका बहाव बहुत तेज़ है, जो रुक नहीं रहा है, 15 से 20 मिनट हो चुका है और लगातार वो खून बहता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। नाक से खून आना एक आम तौर पर देखी जाने वाली समस्या है और इससे अधिकतर लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इसको कैसे रोकना है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है कि खून का बहाव नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा फील हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और खून का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये वो कारण होते हैं जहां पर आपको सोचने की और आपको चिंता करने की ज़रूरत है, जहां आपको एमरजेंसी सर्विसेज को लेने की ज़रूरत है। तो भाई ये वो कारण है जिससे आपको समझ में आता है कि नाक से खून आना, एक तो सबसे बड़ा कारण है गर्मी, यानी कि बढ़ती गर्मी की वजह से अगर नाक से खून आ रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है और तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके नाक के पिछले हिस्से से खून निकल रहा है जो आपके गले तक जा रहा है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है और चिंता करने के साथ साथ तुरंत डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत है। आइए रहते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
6: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
7: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
6: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
7: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
6: अच्छा।
7: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
6: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
7: बहुत सारी,
6: जैसे?
7: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
6: जी।
7: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
6: और बाकी?
7: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका सुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
6: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
7: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
6: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
7: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
6: जी
7: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
6: जी।
7: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
6: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
7: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े, या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
6: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
7: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
6: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
7: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
6: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
7: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
6: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
0: तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आज हम बात कर रहे थे नाक से खून आने की समस्या के बारे में, जो कि फिलहाल बढ़ती हुई गर्मी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई गर्मी में सिर्फ नाक से खून आने की समस्या ही नहीं, इसके अलावा आपको और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें डिहाइड्रेशन है, जिसमें डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, हीट स्ट्रोक है, रैशेज हैं, एलर्जीज हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बढ़ती हुई गर्मी में अपना ख्याल रखिए, ठंडा पानी पीते रहिए, बहुत चिल्ड वाटर ना पीने की कोशिश करें। कि अगर आप अभी अभी धूप से रहे हैं और अगर आपने तुरंत बर्फीला पानी पीना है तो आप ऐसा ना करें, यह आपको परेशान कर सकता है, प्लस आपको जुखाम भी दे सकता है। सामान्य पानी पिए यानी कि नॉर्मल वाटर पीने की कोशिश करें अगर आप बहुत तेज धूप से आ रहे हैं, प्लस आप अपनी वाटर बॉटल लेकर जाएं। कोशिश करें वो वाटर बॉटल प्लास्टिक की ना हो, वो स्टील की या ग्लास की होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से निकलना अवॉइड करें सुबह और शाम में। ज़्यादातर घर से बाहर निकले, मार्केटिंग करने जाएं, शॉपिंग करने जाएं। आपकी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आप दोपहर में कहीं जाने का शौक रखते हैं तो दोपहर में ना जाएं। प्लस बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों से दूर रहें, जैसे कि अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय पीते आए हैं अब तक, तो कोशिश करें इस बढ़ती हुई गर्मी में इसे घटाकर 1 से 2 या फिर 3 कप तक काम करें। तो भाई इतना ही करना होता है, गर्मी में अपना ख्याल रखते रहिए, हाइड्रेशन वाली चीज़ें लेते रहिए, यानी कि वो फल वो सब्जियाँ खाइए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। साथ ही साथ हर घंटे 1 गिलास पानी जरूर पिए, वाटर ब्रेक खुद को देते रहें, खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। घड़ी में वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, अब फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगनी अपनी आरजनती के साथ, आपके अपने FM रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
4: अरे सुना
6: क्या,
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
8: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं और अगर कोई परेशानी आए तो आयुष्मान संपर्क 24 घंटे कैसे करते हैं और आयुषी चैट बॉट कैसे आपकी मदद करती है इसमें। इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्यारे सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी।
1: जी
2: मैं बढ़िया हूँ और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गाँव की उर्मिला दीदी है।
1: अच्छा।
2: उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, चलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल गईं। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किया और बिना एक भी रुपए लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम भी कर रही हैं।
1: ओहो, अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता न मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? और मतलब ये है मेरा कहने का कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सकता है?
2: बिल्कुल है आरजे आकांक्षा जी।
1: जी,
2: आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने आयुष्मान संपर्क नाम का 2400 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर बना रखा है।
1: अच्छा।
2: आप बस 1800-1844-44 डायल कीजिए और उधर से कोई ना कोई तुरंत बात करने आ जाएगा।
1: एक बार फिर से नंबर बता दीजिए,
2: 1800-1844-44।
1: अच्छा।
2: और मान लीजिए आपने कॉल किया, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके कार्ड पर कौन सी सुविधाएं मिलती हैं या किसी को अस्पताल में ओपीडी या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे।
1: बहुत अच्छे।
2: कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जांच कहाँ करानी है ये समझ में नहीं आता, ऐसे में भी आयुष्मान संपर्क वाले बताते हैं कि नजदीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां फॉलो अप मिल जाएगा। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो वो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं। एक बात और, ये सिर्फ जानकारी देने वाली जगह नहीं है, यहां लोग आपकी राय भी पूछते हैं कि सेवा कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सेहतिया भैया, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो क्या आयुष्मान योजना के लिए भी कोई ऐसी सुविधा है जहां लोग बिना कॉल किए मोबाइल या कंप्यूटर पर तुरंत अपना सवाल पूछ सकें, मतलब बस लिखें और तुरंत जवाब मिल जाए?
2: देखिए, आयुष्मान योजना की अपनी एक वेबसाइट है आयुष्मान UP.IN। इस वेबसाइट पर आपको आयुषी नाम का एक चैटबॉट मिलता है। आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो बस वेबसाइट खोलिए और आयुषी से बात शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे, आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। ना किसी का इंतजार, ना कॉल लगने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हों। चाहे आप लाभार्थी हों या अस्पताल चलाते हों, आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है। आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
1: हाँ सेहतिया भैया, हमारे एक एडिटर साहिबा भी हैं जिनका नाम आयुषी है, वो भी हर एक समस्या का समाधान करती हैं, एकदम ऐसे ही जैसे कि ये आयुषी चैट बॉट है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो PMJA है इसमें किन किन बीमारियों को कवर किया जाता है।
2: देखिए, आयुष्मान PMJAY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत है, मतलब पेट का ऑपरेशन, हार्निया, अपेंडिक्स वगैरह, योजना में सब शामिल है। फिर आता है ENT, यानी कान नाक और गले से जुड़ी परेशानियाँ। अगर किसी का कान से पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत है तो इसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान लोगों की सर्जरी भी आयुष्मान PMJAY में होती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
1: सिहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए जैसे दिल की बीमारी या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान PMJA कराता है?
2: बिल्कुल कराता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान PMJAY कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं, ऐसे में इलाज बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में इसका खर्च कवर होता है। फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टेंट लगाने में बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल है। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी न्यूरो सर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो भी आयुष्मान PMJAY के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
1: तो सेहतिया भैया, अब एक सवाल और है आपसे कि क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चे की सर्जरी जैसी बड़ी इलाज भी आयुष्मान PMJAY मतलब PMJAY में कवर होती है?
2: आयुष्मान PMJAY महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस सर्जरी से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुंह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत है, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान PMJAY के तहत होता है। अब बात करते हैं कार्डियो थोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है
1: जी।
2: ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान PMJAY इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च नहीं उठाना पड़ता। फिर है बर्न्स मैनेजमेंट यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए तो उसका पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी, सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज है। अगर बच्चों को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत है तो ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान PMJAY में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
1: अरे वाह भैया, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपकी तबीयत नासाज होते हुए भी सर्दियों का असर है आप पे, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए। चलिए एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी सर्जरी वाली सुविधाएं बताई, मतलब कई सारी सुविधाएं बताई, हमने समझी भी उसे, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में आते हैं?
2: आयुष्मान पीएम जय सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इन सब का इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बुखार, संक्रमण जैसे आम लेकिन गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। अब बच्चों की बात करते हैं
1: जी।
2: बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याएं इत्यादि का इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में होता है। नवजात शिशु की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्कीम है। सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में कवर होते हैं?
2: बिल्कुल कवर होते हैं। आयुष्मान पीएम जय का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लिवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
1: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएम जय में मिलता है?
2: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई और गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक करना, उसे आराम देना। आयुष्मान पीएम जय में ये सुविधा भी कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जिससे बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए आयुष्मान पीएम जय में विशेष पैकेज है।
1: तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएम जय देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भागा दौड़ी के कैशलेस हो जाता है तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएम जय के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और ANM की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलो अप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर हाँ, जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि
3: हम अपने
0: और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
5: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका भाई। कल मैं नहीं आई थी और लेकिन मैंने पूरा का पूरा शो सुना था, तो आयुषी आई थी एंड अंशिका आई थी ऑलवेज। बहुत ही बढ़िया वाला शो हुआ, बहुत ही मज़ा किया, मस्ती की आप लोगों ने। तो भाई जल्दी से आज भी चैट बॉक्स में आ जाएं एंड आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। साथ ही साथ में इस प्यारी सी दोपहर में जो मीठी वाली दोपहर

0: हैं, जो मीठी वाली धूप है ना, इस धूप में भी इस धूप का आह्वान करते हुए आइए एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे, शुभ दोपहरिया।
1: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हैं हम फिर से लेकर के आपका अपना पसंदीदा वाला शो, और आपकी सहेलियां हाजिर है फिर से वही बातें करने के लिए। वही बातों का मतलब है कि आज आप सभी को पता है कि आज है वेनसडे की ये हमारा वुमेन सेंट्रिक। हम बात करेंगे हमारी सहेलियों को लेकर के, कुछ उनकी फिटनेस को लेकर के, कुछ उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर के, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पर इन सब से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेगमेंट जो अभी हमने कुछ ही दिनों से स्टार्ट किया हुआ है सुन सहेली में, यानी कि एक प्यारी सी पोएट्री। और आज आप सभी समझ रहे होंगे कि हमारी पोएट्री का जो एक टाइटल है, जो शीर्षक है, वो आज भाई हमने विमेन सेंट्रिक डे पे है तो ऑफकोर्स महिलाओं पे ही होगा, लेकिन कुछ अलग है। समझने की कोशिश करिए कि इसमें है क्या।
0: बिल्कुल, तो समझाना और समझना वो अभी है, मतलब बाकी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले, जैसा कि अभी अंशिका ने बताया कि आज है विमेन सेंट्रिक, यानी कि हर दिन हम कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए लेके आते हैं, लेकिन आज जो दिन है ना बुधवार का, वो स्पेशली हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है महिलाओं के लिए। तो आज कुछ खास नहीं, आज बहुत कुछ खास होने वाला है, तो उसके लिए आप सभी को आना पड़ेगा चैट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मोबाइल उठानी है और 89.6 FM को ट्यून कर लेना है, और मैसेजेस के लिए हम वेट तो करते ही हैं। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा नहीं कुछ हार भार लगे, तो आप सिर्फ एक मैसेज डाल सकते हैं, गुड आफ्टरनून या शुभ दोपहरिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी सी पोयम को। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में से ये चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द ओ गम को छिपा लिया सीने में, अब लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ, लब पे कभी आए वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही यह कायनात जवान। मतलब क्या बता दूं कि मेरे होने से ये कायनात जवान है, और माँ के कदमों में, और माँ जैसा दिल, एक बहन जैसा प्यार, और बहुत सारे रिश्तों को एक साथ समेटती हुई एक औरत होती है।
1: जिंदगी की बेहद हसी हकीकत हूँ मैं, हर रूप रंग में ढल कर सवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ। सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ।
0: बिल्कुल, तो दुनिया वालों को और हमारे घर में जो लोग हैं उन्हें बताना है कि एक औरत है, उनके लिए एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो सुबह, अगर जो जॉब में है महिलाएं, तो उनके लिए एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो काम पे जाती है और फिर से वो काम पे जाती है। इस लाइन के पीछे का जो अर्थ है ना, ये वही समझ सकती हैं जो जॉब में जाती हैं, और जो ऐसा नहीं है कि जो घर में होती है वो काम नहीं करती है, भाई पूरे दिन का काम जो काज होता है वो सारी घर की महिलाएं ही करती हैं, लेकिन जो विमेंस जो जॉब करती हैं, चाहे वो स्कूलिंग का हो, ऑफिस का हो, कोई भी काम हो, तो वो काम पे जाती हैं सुबह। क्या कहती हैं कि मैं सुबह काम पे जा रही हूँ, यानी अपने ऑफिस, और जब ऑफिस से घर लौटने का टाइम होता है तो क्या कहती हैं, मैं फिर से काम पे जा रही हूँ। यानी वो आधा अधूरा खाना बना के आती हैं, फिर खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना देती हैं, हस्बैंड को खाना देती हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्ग की सेवा करती हैं, साथ ही साथ में अपने पूरे घर में जो मेंटेनेंस होती है, आधा काम सुबह और आधा काम शाम को, पूरा आकर के वो मैनेज करती हैं। तो काम पे जाना और काम पे फिर से लौटना एक महिला ही है जो ये काम कर सकती है।
1: कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बैकबोन, आपकी अगर बैकबोन ही सही नहीं होगी तो आप सीधे खड़े भी नहीं रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमारे घर की फीमेल्स जो होती हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, चाची हो, दादी हो, नानी हो, कोई भी हो, हर रिश्ते में, हर पॉइंट पर वो कहीं ना कहीं पूरा घर मैनेज करती है। एक दिन के लिए अगर वो ना हो तो ऐसे लगता है कि यार घर में कोई काम नहीं हो पाएगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हस्बैंड्स हो, चाहे घर में कोई भी हो, कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। अगर आप ढूंढ, कई बार हम लोग जो फीमेल्स कहीं चली जाती हैं कहीं पे भी, तो हम कहते हैं ना ये पता नहीं क्या सामान है, कहीं मिल ही नहीं रहा, इन्हीं लोग रखती हैं, इन्हीं लोग जानती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक घर को जिस तरीके से एक फीमेल, एक औरत संभाल सकती है, उस तरीके से शायद ही कोई संभाल सकता है। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम उसकी उस मेहनत की कद्र करें, समझें, और कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा सा स्पेस दें, कहीं ना कहीं कोशिश करें समझने की कि हर किसी को एक स्पेस की जरूरत होती है। तो आज हमारी पोइट्री तो आप सभी ने अभी जान ली कि महिलाओं के ऊपर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि है रियल लाइफ फैक्ट। तो आज हमारा जो रियल लाइफ फैक्ट है, यानी कि जिंदगी का सच है जो हर दिन हम आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, आज वो सच भी हमारा कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारी सी मतलब बहुत ही प्यारा है ये। आई थिंक जो समझेंगे वो इसका जो एक कहते हैं ना कि शब्द कुछ नहीं होते, बट उनकी जो मीनिंग आप निकालेंगे अपनी साइड से, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट वो है क्या। तो आज का जो रियल लाइफ फैक्ट हमारा निकल करके आया है वो ये आया है कि जो महिलाएं होती हैं वो तनावपूर्ण स्थितियों में भी, जहाँ पर पुरुष कहते हैं लड़ो या भागो, मतलब वो जहाँ पर पुरुष ये करते हैं कि या तो हम लड़ेंगे और या तो भाग जाएंगे, वहीं पर महिलाओं का होता है कि वो हमेशा उन परिस्थितियों को और उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि खराब से खराब परिस्थितियों में भी महिलाएं जो होती हैं वो सोच समझकर और स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ निर्णय लेती हैं, जिससे कि उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और सिचुएशंस जो बहुत खराब हो चुकी होती हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि एक महिला जो है वो घर में हर तरीके से, किस तरीके से एक हर चीज को अपने लेवल पर मैनेज करती है।
0: बिल्कुल। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आपने अभी देखा कि आपने सुना अभी कि किस तरीके से एक महिला ही है जिसकी नींव जो होती है वो घर की नींव है। और कहते हैं ना कि जब हम मकान बनवाते हैं, जब हम मकान देखने जाते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसकी नींव पड़ी है कि नहीं पड़ी है, क्योंकि जब नींव अच्छी होती है ना तो घर का जो हमारा मकान है वो घर कहलाता है। और उसकी जो आप उसके ऊपर जितना भी बड़ा मकान, मतलब ऊपर से आप इसको आप बनाते जाएं, तो उसकी जो मजबूती होती है ना वो बरकरार रहती है। लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर है तो वो घर नहीं बन सकता है, मकान नहीं बन सकता है। तो आज का जो रियल फैक्ट्स ऑफ में लाइफ में यही आया कि हमारी जो हम लोग यानी कि जो जितनी महिलाएं हैं वो घर की नींव होती है। तो इसीलिए आप उनका सम्मान करें, उनकी कद्र करें, और उनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी सलूक ना करें कि वो एक दिन बिल्कुल नर्वस हो जाए, उसके दिल टूट जाए कि भाई मैं इतना घर के लिए कर रही हूँ लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे, यानी कि आज के टॉपिक्स को लेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि अनुष्का जी एंड नागेश्वर जी आ गए हैं, मैं उनके मैसेजेस को भी पढ़ूंगी। लेकिन तब तक के लिए सभी लोग आ जाएं ताकि वन बाई वन हम सभी के मैसेजेस को ले सकें। तो चलिए भाई सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, बस हम यूं गए यूं आए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, यानी कि हमारे प्रोग्राम के टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि हमारा आज बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन वाला टॉपिक होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि सेंसेशन क्यों है भाई, क्योंकि देखिए महिलाओं का जीवन ही मुझे लगता है कि एक सेंसेशन है, क्योंकि कभी ना कभी वो फीलिंग्स, वो भावात्मक रूप से जुड़ना किसी से, उसके बाद में फीलिंग का गेम खेलना एंड देन उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, तो सारी चीज़ें ये एक महिला के साथ ही होती है। अगर महिला जिसे कहते हैं ना कि हम लोग अगर अंदर से मजबूत होते हैं तो उतने ही भावुक भी होते हैं, क्यों?
3: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात करें तो कहते हैं ना कि जितनी मजबूती वो शो करती है, मतलब कि हाँ वी आर स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक जो कोमलता वाला पार्ट होता है वो उनके अंदर ज्यादा होता है।
2: और क्योंकि ना मतलब क्योंकि वो जल्दी से हर्ट हो जाती हैं किसी भी, वो लोग ना अपेक्षाएं ज्यादा रखती हैं किसी, मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई उन्हें प्यार दे देता है, चाहे घर में हो भाई हो या फिर हस्बैंड हो या फिर पिता हो या तो फिर बच्चे हो, कोई भी रिश्ता हो, तो अपेक्षाएं ज्यादा वो लोग रख लेती हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो हर्ट भी होती हैं। इसीलिए आज का जो मोटिव है ना, आज का जो एक स्लोगन है कि अपेक्षाएं कम रखोगे तो दुख कम होगा।
3: बहुत ही प्यारी लाइन है, और इसे आप समझने की कोशिश करें लिसनर्स, जो भी हमारी फीमेल लिसनर्स सुन रही हो, वो इसमें जो एक मीनिंग छुपी हुई है ना, उसे समझने की कोशिश करें। तो आज भी हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो किसी एक ऐसे ही लगाव से है। कहते हैं ना एक लाइन, कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो आज कुछ ऐसा ही है कि जग को जीवन देने वाली, यानी कि एक नई जिंदगी को एक दुनिया में लाने का जो बहुत बड़ा एक जिम्मा होता है, वो कहीं ना कहीं एक फीमेल के ऊपर ही होता है। वो एक नई जिंदगी को 9 महीने तक अपनी कैरी करती है अपने अंदर, उसके एहसासों को, उसकी फीलिंग को फील करती है, और फिर कहीं ना कहीं एक बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड से गुजर करके वो उसे इस दुनिया में लेकर के आती है।
2: और कहा जाता है कि ये जो एक जो पॉइंट होता है ना, ये जो एक समय होता है ना, ये एक औरत के लिए सबसे बड़ा स्पेशियस होता है, सबसे बड़ा स्पेशल होता है। तो काफ़ी कुछ वो सफ़र करती हैं उसके दौरान में, एक प्रेगनेंसी के दौरान में काफ़ी कुछ वो सफ़र करती हैं, स्टार्टिंग के दिन हो, मिड के दिन हो, चाहे एंडिंग के दिन हो, एक अंदर से डर भी बना रहता है। जब फर्स्ट टाइम जो लेडीज़ मदर बनती हैं तो उनके दिल में एक डर भी रहता है, साथ ही साथ में उनको एक अलग से केयर भी चाहिए होती है, एंड साथ ही साथ जो एक अलग से जो बातें होती हैं वो तो होती ही होती हैं, लेकिन एक केयर और एक सम्मान की भी बात प्लस हो जाती है, एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक जिम्मेवारी हो जाती है उनके घर वालों की। तो आज हम बताएंगे आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से महिलाओं को होती है दिक्कत।
3: सबसे पहले हम आते हैं जिस पॉइंट पे, वो होती है मेंटल हेल्थ। देखिए हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको रेडी होना है तो वो दिमाग से पहले हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है तो लगता है अरे ये क्या दे दिया, हम तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे इस काम को करने के लिए। कोई काम ही आप ले लीजिए, अगर आप मेंटली उस प्रिपेयर नहीं थे और अचानक आपके सामने आया तो लगता है अरे हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे, आप कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस पीरियड में बहुत कुछ उनकी बॉडी में फिजिकली भी चेंज होता है और मेंटली भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, तो ये बहुत नॉर्मल है। इस टर्म में ज्यादातर महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अपनी डोज से ज्यादा उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मदर्स जो होती हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती हैं कि बिल्कुल आराम से उठो, आराम से बैठो, अच्छे से काम करो, कहीं हल्का सा भी अगर पेन हो जाता है तो लगता है अरे कुछ हुआ तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें। इग्नोर करने का सेंस है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं, डिमांडिंग इन द सेंस कि खाने में चूजी हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें खाएंगी, सब चीजें नहीं खाएंगी, और हो सकता है पहले वो सब कुछ खाती रही हो लेकिन इस टर्म में उनको लगता है कि नहीं कुछ ही चीजें चाहिए। और एक बात और आती है कि इस टर्म में सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। खुश रहना सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप इस पीरियड में किसी भी महिला को मेंटली खुश रख पा रहे हैं, खुश है वो, तो सबसे ज़्यादा बच्चे पे भी पॉजिटिव असर पड़ता है और वो एक जो कहते हैं ना कि जो पीरियड होता है वो बहुत अच्छे से बीत जाता है, बहुत स्मूथली बीत जाता है। तो खुश रहना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
2: मैंने बताया ना अभी कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं स्ट्रेस कर लेती हैं या फिर घर वालों की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि घर वालों का ध्यान ना देने पाने की वजह से, या फिर हस्बैंड की कुछ ऐसी अनबन होने के कारण से, कई काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा मानना होता है कि लड़कियां कहती है कि शादी हम लोग कर लें और शादी के बाद हम लोग सब कुछ अच्छा होता है, खुश होती हैं, ये होती हैं, 100% होती हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी के साथ वो दुख वाले दिन भी नहीं होते हैं, बट मुझे लगता है कि आजकल शादी के पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे शादी हो जाती है वैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होने लगती हैं जिसका निवारण एंड ऑफ द जो हम अगर कह लें कि वो डिवोर्स और ये सब चीज़ें होनी हो जाती हैं, और उसी के बीच सफ़र करती है एक महिला। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो सफ़र करती है, शादी हुई हो गई है तो वो सफ़र करती है। तो भाई कहने का सेंस केवल ये है कि अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसे किस तरीके की केयर चाहिए। सबसे पहला तो उसे उस वैसा उसको माहौल चाहिए, क्योंकि जब माहौल अच्छा मिलेगा तो हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो इम्प्रूव करती है। और कहते हैं ना कि अगर आपका शरीर, आपका दिल अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा होगा, और शरीर अच्छा है तो आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है।
3: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं एक पॉइंट और है कि मेंटल हेल्थ, तो मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण महिलाओं में जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो होता है कि उन्हें लगता है वो मोटी हो रही है। कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर महिलाएं बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं कि अरे मैं मोटी हो जाऊंगी और फिर मैं पतली नहीं हो पाऊंगी और फिर तो मुझे कोई मतलब उस तरीके से अटेंशन नहीं देगा और मुझे मोटा नहीं होना है। ज़्यादातर महिलाएं इस बात को करती हैं, तो उन्हें ये समझना है कि ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए आप पहले स्लिम थे, ठीक है, प्रेगनेंसी का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वज़न बढ़ना बहुत आम है, बहुत आम बात है, ये नेचुरल है कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये कहा जाता है कि हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है, ये जो पीरियड होता है इसमें आपका हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है, न कि इस पर फोकस करना कि वज़न बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत महिलाएं इस बात को लेकर भी चिंतित हो जाती हैं कि हमारे पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और किसी किसी को वाकई बहुत ज़्यादा होती भी है। तो इस पॉइंट पर आपको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें जो भी आपके साथ हो रही हैं, किसी किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी को वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होती है जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको ये समझना है कि ये नेचुरल है। और देखिए कई बार महिलाएं जैसे कहती है ना कि वो उसको तो नहीं हुआ था, मेरी फ्रेंड को फलाती उसे तो बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं होती और मुझे क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है और इस पीरियड में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आपने देखा होगा किसी किसी को कि वो इस पीरियड में कोई कोई महिलाएं जो होती हैं बहुत स्मूथली रहती हैं, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होता, उन्हें लगता ही नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है, बहुत बहुत खुश रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी किस तरीके से उस पीरियड पर रिएक्ट करती है ये देखना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो। एक पॉइंट और है कि महिलाएं इस पीरियड को बिल्कुल ये समझ लेती हैं, या उनके घर वाले ही कई बार कहते हैं कि आराम करो आराम करो, बस बिस्तर से उठना मत, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के पीरियड में आपको चलना भी है, हल्के फुल्के काम भी कीजिए, और खुद को बिजी रखने के साथ साथ फिट रखिए। फिट रखने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो करनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल इस बात से नहीं भागना चाहिए कि नहीं हम एकदम आराम करेंगे। अगर आप भरपूर आराम करेंगे तो इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो लेज़ी हो जाएगी। और कहते हैं ना कि जब बेबी हो तो उस टाइम पे तो ज़रूर से चलना चाहिए। हल्के फुल्के काम करने का मतलब है हल्का फुल्का चलिए, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस मत दीजिए, लेकिन आराम भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। और एक बात और है कि हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुद को बिजी रखने का मतलब है सॉन्ग सुने। अगर आपको सॉन्ग सुनने हैं तो प्रेगनेंसी के पीरियड में स्पेशली सूफी सॉन्ग सुनने चाहिए, क्योंकि सूफी की जो म्यूजिक होती है बहुत बहुत एक
2: मतलब सूदी म्यूजिक होती है,
3: बहुत पीसफुल होती है। बहुत ज़्यादा डरावने सॉन्ग्स, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव चीज ना देखें। ऐसा कहा जाता है कि इस पीरियड
2: वो असर होता है बच्चे
3: वो
2: पे।
3: असर होता है बच्चे पे, जैसे क्राइम शोज या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें वायलेंस हो या इस तरह की कोई भी चीज हो, वो देखने से बचना चाहिए। और अच्छी चीजें देखे, जितना हो सके उतना मुझे लगता है कि धार्मिक चीजों को देखना चाहिए, उससे बच्चे पे एक अच्छा असर पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं वो बच्चे में जाती हैं। और जितना हो सके उतना चेयरफुल रहने की कोशिश करें। घर वालों का भी ये एक पूरा मोटिव बनता है कि वो होने वाली माँ को पूरी तरीके से अटेंशन दें।
2: और एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि इन सारी बातों से पहले सबसे पहले ना एक केयर होती है जो कि वो घर वाले ही ज्यादा समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो इन सब चीजों को हटा करके दरकिनारे करके एक हस्बैंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वाइफ की केयर करें, इस खास करके इस पीरियड में। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए सुनते रहें 99.6 FM पे आपका अपना शो सुन सहेली।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज एक ऐसी डिजीज के बारे में बताएंगे जो कि अमूमन महिलाओं में, गर्ल्स में और ये उम्र के हर एक पड़ाव में कभी भी होता है। क्या होता है? कुछ ऐसी मतलब मेजर बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कभी भी हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है ना, तो बस ऐसा ही इसका मिक्स एंड मैच वाला है।
7: बिल्कुल, आज हम आपको बताने वाले हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में। ये अगर आम बोलचाल की भाषा में हम इसको लेना चाहें तो ये डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है कि अचानक आपकी लाइफ में कुछ बदला है तो उन सिचुएशंस से हम एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब हम उस बदलाव को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। यही है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो हर बदलती सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो तो हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि महिलाओं में स्पेशली होता है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है और वो बहुत जल्दी अपने बदलते हालातों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। जैसे कि अगर एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जहाँ पे आपने मतलब जितने भी दिन आपने वहाँ पे बिताए हैं, कई साल अपनी आधी ज़िंदगी, और फिर वो छोड़ करके आपको दूसरे के घर जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं, बहुत जल्दी उस माहौल में घुल मिल जाती हैं और वो लोग फिर कहते हैं कि नहीं अब हमारी बहू ठीक है, उसने एडजस्ट कर लिया। पर कुछ होती हैं जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम्स आती जाती हैं धीरे धीरे। तो यही है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर।
0: तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसे आम भाषा में इसे क्या कहते हैं, आपको पता है
7: क्या कहते हैं
0: इसको? आम भाषा में कहते हैं परिस्थितियों से समझौता ना कर पाना, जिसके कारण से आ जाता है तनाव।
7: यस मैम,
0: ठीक है, तनाव आ जाता है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम कोई भी, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, कोई भी है, शादी करके नए घर के नए माहौल में गई, ठीक है, वहाँ वो कुछ और सोच के गई, कुछ सपने अलग लेके गई, लेकिन वहाँ हुआ क्या, उल्टा उसका हो गया। तो क्या हो गया, तनाव होगा, बेचैनी होगी, फिर सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा कि मैं तो भैया अपने हस्बैंड को लेकर के अलग रहना, सबसे पहला पॉइंट कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर के अलग रहना चाहूंगी, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो वो तनाव में ये गलत काम हुआ, तो ये जो इंसान सोच के आए उसके बाद वैसी परिस्थितियां उन्होंने बनाई, तो क्या हो जाता है, ये तनाव के कारण से हो जाता है डिसऑर्डर।
7: जी मैम,
0: समझ में आया?
7: समझ में आया।
0: तो तुम ऐसे मत करना।
7: नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि इंसान को, मतलब ऐसा, ये लाइन हमारे साइकोलॉजी में जरूर कही जाती है कि आपका दिमाग आपका गुलाम हो ना, आप अपने दिमाग के गुलाम।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
7: वो आपके हिसाब से चलना चाहिए, न कि आप उसके हिसाब से। जैसे कि अभी मैम ने बताया, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अगर 100 में हम रेशियो निकालने जाएंगे तो आई थिंक 95% घरों में यही होता है कि थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आई नहीं कि बस दिमाग में आता है यार सेपरेट हो जाओ,
0: सेपरेट हो जाओ।
7: लेकिन क्या सेपरेट होने पे प्रॉब्लम नहीं आती है?
0: नहीं आती है ना। वो जहाँ पूरा, जहाँ पर एक टाइम का खाना बनाना पड़ता था, अब वहाँ पर तीनों टाइम के मतलब
7: वही
0: काम करना पड़ रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो उन्हें सुकून, ये तो ये मानसिक स्थिति खराब होने के लक्षण है।
7: बिल्कुल। अब मुझे तो लगता है कि उल्टा, देखिए ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन जिन भी घरों में केवल हस्बैंड वाइफ होते हैं और वहां पर मान लीजिए बेबी है, छोटा बेबी है, तो आप कैसे केयर करोगे? और अगर उस पर आप जॉब में हैं तो और प्रॉब्लम होती है। और अगर उसी घर में चाची हैं, दादी हैं, तो बहुत इजी हो जाता है कि मम्मी आप देख लो और मैं जॉब करके आऊंगी, फिर बहुत इजी रहता है। मतलब एक फ्लेक्सिबल होता है, बच्चा चाचा के पास है, अपने बड़े पापा के पास है, किसी के भी पास है, तो बहुत एक फ्लेक्सिबल। और सिर्फ बच्चे की बात नहीं होती, मान लीजिए
0: खुद भी तो अपना आजादी से हो जाता है ना, वो खुद भी।
7: मान लीजिए आप अकेले हस्बैंड वाइफ ही हैं दो जन, तो मतलब अगर आपके हस्बैंड को आपको कहीं जाना है मान लीजिए, तो हम कह नहीं देते मम्मी जरा नाश्ता, मम्मी बना देंगी नाश्ता, मैं जा रही हूँ। वो एक सुकून हुआ ना कि, और नॉर्मल है। देखिए एडजस्टमेंट की बात आए तो एडजस्ट करने का मतलब होता है कि हम कब नहीं एडजस्ट कर,
0: कब नहीं कर पाते,
7: जब हमारी कहीं ना कहीं हमने सोचा,
0: हमारा ईगो भी टकराता है,
7: ईगो भी टकराता है,
0: इसी वजह से भी एडजस्ट। हाँ, मैं क्यों झुकूं,
7: और मैं क्यों झुकूं,
0: और ना झुकने के कारण सब कुछ बर्बाद भी होता है। लेकिन वो एडजस्टमेंट है कि बर्बाद हो रहा है तो होने दो, लेकिन हम लोगों को नहीं झुकना है, मतलब झुकेंगे नहीं। जैसा नहीं, वो कौन सा वो आता, कौन सा तो एक मूवी आई थी अभी, झुकेगा नहीं साला, कौन सा था वो, कौन सी मूवी थी अभी, कोई थी भाई, किसी को याद है तो बता दो, जो हाथ से ऐसे अपनी फेस पे घुमाते हुए करते हैं, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, तो ये था। तो ये मतलब वैसी वाली स्थिति है, मतलब ऐसी वाली स्थिति हो जाती है कुछ महिलाओं के घर में, क्योंकि हम लोग खुद भी देखते हैं और देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन झुकेगा नहीं साला वाली स्थिति है।
7: तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और एक फीमेल के अंदर तो नहीं ही होनी चाहिए। देखिए इस पॉइंट को इस तरीके से लेते हैं कि मान लीजिए आप अलग भी हो गए, हम कहते हैं ना आप सेपरेट रहेंगे तो बड़े खुश रहेंगे, ये मैंने कुछ लोगों को सुना है कहते हुए। लेकिन अब आप सोचिए कि जो आपको काम थोड़ा करना पड़ता होगा, मतलब तीन लोग हैं अगर घर में, तो हम काम बांट लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते हैं और चाहते हैं झगड़े ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, तो द बेस्ट तरीका है अपने काम को बांट लीजिए। अगर तीन लोग हैं तो वो तीन काम को तीन हिस्से में आप बांट लीजिए।
0: उसके बावजूद भी ये तो बहुत छोटी सी टेक्निक है, ये ज्ञान मत दो यहाँ पर। ये पता है, ये जो ज्ञान होता है ना, ये उन महिलाओं को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि तीन काम है तो तीन बांट लो। उसके बावजूद जिसके दिमाग में अगर केवल षड्यंत्र हो और जिसके दिमाग में केवल ये चीजें हो कि भाई मुझे तो एडजस्ट करना ही नहीं है, फिर बताओ,
7: वो दूसरी चीज हो जाती है वायरिंग की गड़बड़ी।
0: तो वायरिंग के लिए उसके लिए स्क्रू ढीला,
7: कहते हैं ना फ्यूज बॉक्स है तो वायरिंग की गड़बड़ी है, तो जो मतलब लाइट है वो बराबर नहीं जल रही है। हाँ। तो ये वो महिलाएं होती है जिनकी वायरिंग की गड़बड़ी। और वाकई में देखिए, हम जो डिसऑर्डर आपको बता रहे हैं ये ऐसी ही महिलाओं में पाया जाता है,
0: जैसे
7: किसी भी हालत में मतलब वो नहीं करना।
0: तो मीनू गोंडा जी ने लिखा हुआ है कि पुष्पा राज, हाँ जी बिल्कुल, पुष्पा राज वाली जो एक डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो बिल्कुल यही वाली ही एक टेक्निक है। तो कुछ ऐसी हैं जिसे आजकल के ये देखा गया था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब पूरा सब कुछ खराब हो रहा है, वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झुकेगा नहीं।
7: तो एक बहुत ही अच्छी कहावत कही जाती है कि झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती है कि अगर अपने रिश्ते में आपने झुकना नहीं सीखा, कई पॉइंट्स पर चुप रहना नहीं सीखा, तो आप अपने रिश्ते को आगे लेकर के नहीं जा पाएंगे। ये सीधी बात है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे तुम चुप क्यों थी, तुम भी तो जवाब दे सकती थी। लेकिन मोस्टली पॉइंट पर देखिए, जवाब तो कोई भी दे सकता है। अगर किसी को लड़ना है, कोई आर्ग्यू कर रहा है तो वो तो हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे चुप रह जाना चाहिए, वहाँ आपके रिश्ते जो होते हैं वो बेहतर होते हैं धीरे धीरे, आपकी एक वैल्यू बनती है कि अरे नहीं वो बहुत अच्छी है, एक वैल्यू बनानी अपनी बनानी पड़ती है अगर आप नए घर में जा रहे हैं।
0: और साथ ही साथ में कि महिलाओं में ही ये क्यों होता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में महिलाओं में ही पाया जाता है ये जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि महिलाओं का जो जीवन होता है ना वो सामाजिक भी होता है, तो समाज में अगर जाएंगी एक दूसरे को देखेंगी तो एक दो चार चीज़ें और भी सीख करके आएंगी, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट हो चाहे पॉजिटिव हो। तो कहते हैं ना कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन नेचर में ये है कि हम खराब चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, जल्दी गेन कर लेते हैं, है ना। तो बस वही हाल है कि अगर हम खराब चीजों को जल्दी उठा लेते हैं तो ये भी एक कारण बन सकता है कि उन महिलाओं के लिए कि अगर कहीं भी वो समाज में अगर जा रही हैं तो उन्हें वो अपनी फ्रेंड्स को अपनी इन सारी बातों को से अवगत कराती हैं, भाई मेरे घर में ये हो रहा है, तो भाई फ्रेंड तो फ्रेंड है, वो उनको और अच्छा ओपिनियन देती है कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम छोड़ दो, तुम काम ही मत किया करो, बैठ ही रहा करो, बैठ के खाया करो। तो कहते हैं ना कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ऐसा
7: संगति
0: का, पर ऐसा भी नहीं है, ऐसा जैसे 10% में ऐसी महिलाएं आती हैं, बाकी 90% जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को एडजस्ट करना जानती हैं।
7: बिल्कुल,
0: और मुझे तो लग रहा है कि पहले की महिलाओं में एडजस्टमेंट जो ये चीजें थी ये बहुत जल्दी हुआ करती थी।
7: अब कहीं ना कहीं फीमेल्स में, मतलब जो आजकल की निकल रही है उनमें ये देखा जाता है कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है कि एडजस्टमेंट का तो कहीं नाम ही नहीं है, बस मेरी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर सास है तो वो मुझे बहुत प्यार करेगी, अगर हस्बैंड है तो वो भी बहुत प्यार करेगा। आप पहले से पूरा एक ग्राफ बना के क्यों जाते हो, जरूरी थोड़ी नहीं है, हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें कुछ बहुत अच्छा मिल जाए।
0: हाँ।
7: कई बार हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं वैसा घर मिल जाता है, और कई बार हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन वैसा मिलता
0: तो
7: नहीं।
0: कुल मिला करके यही एक निचोड़ निकलता है इस डिसऑर्डर का कि आपकी शादी कहीं पे भी अगर हुई है तो आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो पहले से ही उम्मीदों को लेकर के ना जाए।
7: बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं कि जिनकी वजह से अगर जिनसे आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। दो थेरेपी है, दो पॉइंट्स है। पहली पॉइंट ये है कि टॉक थेरेपी से ये बहुत जल्दी ठीक होता है, लेकिन यहाँ टॉक थेरेपी किसी के साथ नहीं करनी है, खुद के साथ करनी है। खुद की बातों को खुद सुनिए, खुद समझिए, आप बेहतर समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इसमें कुछ कमी आएगी, आप सीखेंगे कि एडजस्ट कैसे करना है।
0: खुद से बात करना कि हमें दूसरों की गलती निकालने से पहले खुद को अपने आप में उसमें आंकना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पर एक ब्रेक लें।
7: तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं बस एक प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे और यूं गए यूं आए। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट वाला शो सुन सहेली स्टेडियम।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो वापस आ गए हैं हम फिर से आपसे बातें करने के लिए, और अब जो बताने वाले हैं ना वो है हमारी अपनी यानी कि सेल्फ केयर की बात। अभी तक हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें कर ली, आपको बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारा हमने आपको ज्ञान दिया, लेकिन सबसे मेन एक जो बात होती है ना वो ये होती है कि सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स में, सबकी केयर करने में कई बार हम अपनी केयर भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुद को संभालना, खुद की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसके लिए और आपकी डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं हमारे पास,
4: जो कि हमें तो बेहतर बनाती ही बनाती हैं, साथ में हमारे व्यक्तित्व को, हमारी खुद की सोच को और साथ ही साथ हमारे पॉजिटिव होने पर भी एक बड़ा सा ना एक पॉइंट करके जाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम फिट होते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, तो खुद ब खुद हम में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट भी आ जाता है।
3: बिल्कुल मैम, तो सबसे पहला पॉइंट आज जो निकल कर के आता है वो ये है कि आपको अपनी सुबह की शुरुआत जो करनी चाहिए वो सुबह सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए।
4: क्यों?
3: इससे ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है और साथ ही साथ में बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से आपके पेट में जो भी मतलब कहते हैं ना कि हम खाते हैं तो जो खाना हमारे पेट में जाता है, ऑब्जर्व होता है, उसमें से कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है
4: और ये हमारी बॉडी को, जैसे कहते हैं ना कि हम पानी पीते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है ना कि हाइड्रेट करो, ठीक है, तो ये हमारे शरीर को रिहाइड्रेट करता है और एनर्जी देता है। तो इसीलिए गर्म पानी एक ग्लास ज़रूर पीना चाहिए, मतलब थोड़े थोड़े से स्टार्ट करिए, आप आधे ग्लास से शुरू करिए और बिल्कुल गुनगुना, बिल्कुल गर्म पानी नहीं कि गर्म पानी पी लिया, बिल्कुल गुनगुना। और सेकंड पॉइंट है कि टाइमली आप अपने आप को न्यूट्रिशन दें, यानी कि समय पर खाना, मतलब ये तो एक सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आप समय पे अगर नाश्ता करते हैं, समय पे खाना खाते हैं, तो आप ना समझ लो घी खाने का काम करते हैं।
3: जी मैम,
4: जैसे हम लोग, जैसे बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि वो लोग क्या कहते हैं कि रोटी पे बहुत ज़्यादा मक्खन घी लगा के खाते हैं, लेकिन उनका टाइम सही नहीं होता है तो उनको वो अच्छे से नहीं लगता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैट बॉडी में हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम से खाएंगे और आपको प्रॉपर जितनी मील होती है आप उतना ही लेंगे, लेकिन अगर आप टाइमली लेंगे ना तो वो आपको उतनी बॉडी में लगेगा जितनी उसकी वो नीड होती है। तो सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जितनी भी देरी हो सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जिसमें हम ले सकते हैं प्रोटीन, जो क्या कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडा खा सकते हैं, अंकुरित अनाज, दूध और फाइबर, फल सब्जियां शामिल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक्सरसाइज, भले 20 मिनट लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अंशिका तुम करती हो?
3: हाँ, मैंने शुरू किया था बट अभी फिलहाल मैं नहीं
4: किया था, यानी तुमने शुरू किया ही नहीं है। अगर एक्सरसाइज करती तो ऐसे नहीं होती।
3: हाँ मैम, रूटीन में उधर मतलब कुछ टाइम पहले था रूटीन,
4: सिर्फ और सिर्फ मैं सभी लिसनर्स को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 2 से 3 आसन कर लेने हैं, 2 से 3 प्राणायाम कर लेने हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जैसा कि प्रणव, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये 3 ऐसे प्राणायाम हैं, और अग्निसार 4, पेट के लिए, श्वास के लिए, ये 4 ऐसे प्राणायाम हैं, आसन हैं, जिसे आप अगर कर लेंगे ना और आप अपनी घर की क्या कहते हैं वॉच में देख करके, या फिर आप मोबाइल है तो उसमें टाइमर लगा लीजिए, मात्र 2 मिनट से शुरू करिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने मिनट हुए?
3: 8 मिनट।
4: 8 मिनट सुबह अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं हम, और हम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं बैठ करके, है ना? तो सबसे पहले तो हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद हमें दूसरों को सलाह देनी चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए ये बोलने का हकदार मैं हूँ कि मैं गुनगुना पानी भी पीती हूँ और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ।
3: नहीं, मैं एक्सरसाइज अब करूँगी।
4: ठीक है, तो एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा फैट हटता है बॉडी से। और ये कहना कि हाँ मैं हेल्दी हूँ तो मैं फिट हूँ, मैं मोटी हूँ तो अच्छा है कि मैं हेल्दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कभी भी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि आप अपना वजन कम करें। समझ में आया? वजन कम होगा तो बुद्धि महीन होगी, बुद्धि मोटी नहीं होगी। और अगर बुद्धि अगर महीन होगी तो आप जल्दी से अच्छा सा काम कर सकते हैं, सोच लेंगे। ठीक है, तो 20 से 30 मिनट का व्यायाम आपको जरूर करना है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही 20 मिनट तेज वॉक या योग या डांस कर सकते हैं, और या तो कोई अच्छा सा वीडियो चला करके जिसमें आपको ये पता चले कि हाँ इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं, तो आप उसको चलाएं, उसको सुनें। और नहीं, इतना भी टाइम नहीं है तो 20 मिनट भी नहीं, केवल 10 मिनट का आप अलार्म फिट करें और आप 2-2 मिनट का आसन शुरू कर दें। तो आई थिंक सो कि आप कल से करेंगी अंशिका।
3: बिल्कुल मैम, मैं कल से शुरू करने के लिए पूरी तरीके से अपने लिए टाइम निकालूं।
4: हाँ, तो टाइम निकलता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए जो बिल्कुल स्पेशल वाला पॉइंट है, वो है बोन हेल्थ, यानी कि हड्डियों की सुरक्षा। जब हम लोग उठते हैं तो टक टक की आवाज आती है, तो 30 की उम्र के बाद कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, जिसको जरूर से बढ़ाना चाहिए। डाइट में दूध, दही, पनीर को शामिल करना चाहिए। समझ में आया?
3: जी मैम।
4: एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। दिन में 10 मिनट का समय खुद के लिए निकालें, अपने आप में मेडिटेशन, गहरी सांस, श्वास लेते हुए कसरत करें, और हाइड्रेशन के लिए दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना न भूलें।
3: 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
4: 2 से 3 लीटर कितना हुआ? मतलब एक हमारी एक बॉटल होती है,
3: हाँ,
4: वो आधे लीटर की होती है।
3: ओके।
4: 4 ग्लास 3 ग्लास आते हैं मुश्किल से, तो हमारी बॉटल समझ लो कि 6 बॉटल नहीं पी सकते हैं, तो 5 पियो, लेकिन 2.5 लीटर पियो, मतलब इतना माना जाता है कि 8 गिलास आपको पानी
3: पीना ही
4: पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, और खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल भी जरूरी है कि 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। एंड वेलकम बैक मीनू जी अगेन एंड अगेन, आशु जी एंड रिंकू जैन, आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी बहुत अच्छी लगती है, हम महिलाओं को काफी फायदा होता है। थैंक यू सो मच रिंकू जी। तो चले, यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ और भी है, अभी एक सॉन्ग सुन लेते हैं और उसके बाद आते हैं हम आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, क्योंकि हम आज आपको एक और चीज देने वाले हैं जो कि है टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे सुनने के लिए आपको अभी बने रहना है, बस हम यू गए यू आए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। इतने प्यारे से गाने में मन तो नहीं कर रहा था आने का, लेकिन जो टाइम है वो भागा जा रहा है एंड मौसम भी इतना प्यारा सा हो रहा है, तो टिप ऑफ द डे के बाद में हम इस गाने से ही आज आपसे विदा लेंगे, ठीक है? तो चलो अंशिका सुना दो।
1: तो आज का हमारा जो टिप ऑफ द डे है वो स्पेशली हमारे फीमेल लिसनर्स के लिए है, और मेल भी इसका यूज कर सकते हैं, जो कि है कि रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में ऐसी 3 चीजें जरूर लिखें जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में।
0: अच्छा,
1: जैसे कि आज खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, आज मैंने वॉक की, या आज मैंने किसी की मदद की। इस तरह की चीजें जरूर लिखी।
0: बिल्कुल, तो ये है आज आपका टिप ऑफ द डे कि आप अपनी डायरी में 3 ऐसी चीज़ों को ज़रूर मेंशन करें जो एक दिन में आपने अच्छा काम किया हो, ठीक है? तो चलिए हम लोगों को दें इजाज़त, और इस प्यारे से गाने के साथ आज हम आपसे लेंगे विदा। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
11: अरे सुना?
12: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
12: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
13: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
12: और जेंट्स के लिए?
13: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
12: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
13: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब
14: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
16: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी गोंडा वासियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके होस्ट एंड दोस्त यानी कि आज आकांक्षा आपके फोनी फरमाइश कार्यक्रम यानी के कॉलर ट्यून गोंडा में। और मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है हमारा तो मूड हो गया है थोड़ा सा पानी में भीगने का, थोड़ा सा चाय पीने का, थोड़ा सा किसी के साथ में घूमने का। आपका कैसा है आप बता सकते हैं कॉल करके। कॉल इन शो आपका स्टार्ट हो गया है और कॉल के माध्यम से बस आपको अपने पसंदीदा सॉन्ग्स की फरमाइश करनी है। और आज तो मैं ये नहीं कहूँगी पसंदीदा सॉन्ग हो, आज होगा सॉन्ग आपके मूड के हिसाब से। आप अपने मूड के हिसाब से कोई भी सॉन्ग चुनिए और कॉल कर लीजिए। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो कैनेस्टर 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को। हाँ जी, और साथ ही साथ में ये भी बता दूं कि स्टूडियो का नंबर क्या, नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429 जिससे आप बखूबी हैं रूबरू। फिलहाल आज के इस शो की हम ओपनिंग करेंगे बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के जरिए जिसका ट्यून आपने अभी जी हाँ एंट्री लेते ही एंजॉय कर लिया है। और इस गाने की डिमांड की गई है हमारे प्यारे देवी प्रसाद जी के द्वारा। भाई इन्होंने किया है ऐसा सॉन्ग जो मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहती और इनके लिए तो भाई हमारी प्लेलिस्ट का स्पेशल वाला सॉन्ग है। तो मौसम एंजॉय करिए, इस सॉन्ग को एंजॉय करिए और इंडिया वाले देवी प्रसाद जी फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कॉल करके कि आपको हमारी पसंद का नगमा कैसा लगा। फिलहाल के लिए ओपन हो चुका है आपका 3 से 4 वाला फोनी फरमाइशी कार्यक्रम और 3:09 आपकी घड़ी में और ये गाना आप तक पहुंच रहा है। एंजॉय करिए, आते हैं नेक्स्ट वाले नगमे के साथ में। उससे पहले किसी ने कुछ लिखा है वो भी बताएंगे कि क्या है।

हमारे एक प्यारे से श्रोता हैं जिनका नाम है द ग्रेट सिंह साहब। उन्होंने बोला भैया कि गोंडा के बाहर वाले लोग क्या करें, तो आप अपने उधर का माहौल बताइए कैसा है। भाई हमारे यहाँ का मौसम तो इतना मस्ताना हो गया है कि दिन में ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज गए हैं। हाँ, 6 से 6:30 का वक्त पूरी तरह से अनुभव किया जा सकता है आज के मौसम से। और इतने मौसम में, इतने प्यारे से मौसम में, इतने रोमांटिक से मौसम में अगर आप रोमांटिक सॉन्ग्स ना सुने तो फिर इस मौसम का होना बेकार है। फिलहाल ये गाना

फिलहाल करना क्या है भाई, आप लोगों के मैसेजेस की ओर भी आना है, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही खूबसूरत सी सॉन्ग की डिमांड हुई है मौसम के अकॉर्डिंग। तो भाई हम मौसम वाले जोनरे में जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दे दोस्तों कि यही सेम सॉन्ग की डिमांड की गई है अरमान जी के द्वारा, और आपको हम सूचित करना चाहेंगे अरमान जी आपका गाना तो प्ले हो गया है, तो दोबारा से मैं प्ले नहीं करूंगी, मैं इसी में आपको ऐड करूंगी। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नगमा है जो कि क्या है वो आप खुद ही सुनिए। शशि जी की डिमांड है जो हमें सुनती हैं, कहां से ये तो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी डिमांड हम तक पहुंचा दी है, तो ये डिमांड हम आप तक पहुंचाते हैं। 3 से 4 के सफर में आपके होस्ट हैं दोस्त आरजे आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गैनेसलेट 106 FM गोंडा शहर की धड़कन, और ये नेक्स्ट नगमा आप सभी के लिए स्पेशली, आइए एंजॉय करते हैं।

रेडियो द ग्रेट सेन साहब की लाइन है और लिखते हैं, उसकी मोहब्बत का अब कैसा हिसाब हो जो गले लगा कर कहती है आप जी बड़े खराब हो, बड़े खराब हो, बड़े खराब हो। काफी प्यारा सवाल और काफी सही वाली बात कही आप, बड़े खराब हो। नहीं खराब नहीं हो, बड़े ही अच्छे से प्यार से बोला है किसी ने, तो मान लीजिए ना नोक झोंकाला खराब अच्छा होता है। फिलहाल ही गाना।

हाँ जी, और प्रमुख जी ने भी बता दिया कि उनके उधर का जो मौसम है यानी कि श्रावस्ती का, फिलहाल ये श्रावस्ती में है, हम इस समय श्रावस्ती में इकोना में है और यहाँ बहुत तेज आंधी आई हुई है, बारिश भी हो रही है। भाई मैं इस स्टूडियो में क्या करूँ, मुझे भी स्टूडियो के बाहर जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का मूड बनाना है तो गाना बजाना है, गाना बजाने के लिए आपको जी हाँ कॉल करना पड़ेगा। कॉलिंग नंबर वही है 6093316429। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, इससे पहले कि कुछ और हो, सुना देते हैं आपको एक प्रेम भरा नगमा जो कि थोड़ा सा आपके दिल को दहलाएगा बहलाएगा, लेकिन आप सुनना भी पसंद करेंगे। कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक जिसकी डिमांड की गई है दरक्षा अंसारी जी के द्वारा सीतापुर से, और जो अभी आपने एंजॉय किया वो थी शशि जी के डिमांड। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा में।

जी हाँ पंडित जी, आपके गोंडा छोड़ते ही आंधी आ गई, और यहाँ तक कि ये आंधी गई हमारे एमपी राजस्थान की गलियारों तक। और हमें अगर हम गलत नहीं तो हमारी उत्तराखंड से सुनने वाले जो श्रोता जी हैं जिनका नाम है रीना जी, वो भी बताएंगी उनके उधर का मौसम कैसा है। फिलहाल ये गाना बहुत खूबसूरत है।

जी अरिजीत साहब की आवाज में अभी आपने ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा एंजॉय किया है। कारण ये है कि मौसम ने इसको और भी मतलब क्या ही बता दूं फीलिंगफुल बना दिया है भाई। और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड, आप यकीन नहीं करेंगे, ये डिमांड है हमारी अल्फिया जी की और इनको सुनना है आज ही के मौसम वाला सॉन्ग। और इस सॉन्ग को हम डेडिकेट करना चाहेंगे अपने प्रबल मिश्रा जी पंडित जी को, क्योंकि इनका कहना है कि भैया ये गोंडा छोड़ के जैसे गए आंधी आ गई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गए और यहाँ पे आंधी तूफान मचा के गए हैं, इसलिए आपको ये गाना मैं डेडिकेट करती हूँ। एंजॉय दैट ट्रैक।

हाँ जी दोस्तों, अभी बढ़ेंगे इस प्यारी से खूबसूरत सी डिमांड के बाद एक और डिमांड की और चैट बॉक्स वाक्सी और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप तक हम बहुत देर से आएंगे और केवल नाम ही पढ़ेंगे क्योंकि डिमांड इतनी सारी आई हुई है और तूफानी ऐसा लग रहा है रफ्तार में आई हुई और सबको बजाने गाने बड़े प्यारे प्यारे हैं तो मैं तो बिना बजाए रह नहीं पाऊंगी। अगर एक आध छूट गया तो उसके लिए माफीनामा मैं जी हाँ दर्ज करा के ही जाऊंगी, मुझे मालूम है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट वाली डिमांड हमारी सभी हाजी की है और इस गाने के बाद नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे प्यारे कमल की और कमल जी के बाद में होंगे हमारे रिजु जी, उसके बाद अजीज जी और अजीज जी के बाद में होंगे दीपक जी और उसके बाद में किसकी डिमांड है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए ये गाना

भाई इस मौसम में ऐसे गाने हो भाई, सभी हाजी आपकी डिमांड तो क्या बोलूं मैं, बड़ी ही प्यारी होती है। और हमारे कुछ लिसनर्स है ना जिनकी प्लेलिस्ट बड़ी यूनिक सी होती है और उनको मालूम होता है, नॉलेज है कि किस वक्त कौन सा म्यूजिक ट्यून करना है। फिलहाल ये गाना।

क्या बात मजा आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारी कमल जी की है, और आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ट 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम।

श्रोताओं और आपके लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं, तो भाई जो भी आप कॉल कर रहे हैं फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले नगमे को प्ले करने के लिए। और ये गाना है हमारे प्यारे जी हाँ मुंबई के गोरे छोरे आने के रिजु जी की डिमांड, और इनकी डिमांड आई है क्या आप भी सुनिए हम भी सुनते हैं। बारबी कार बारबी कार बारबी बारबी बारबी बारबी कार।

हाँ जी, तो आपने अभी सुन लिया बॉबी कल सॉन्ग। और भैया कल इन्होंने हम लोग को बनाया था, क्या नहीं बनाया नहीं था, इन्होंने बोला था कि आप लोग थोड़ी देर के लिए जाइए क्रेजी फॉग और फॉग नहीं फ्रॉग कूदियो और सारे बिस्तर को मेंटेन कर लीजिए। और आज इन्होंने शिक्षा दी है कि आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है। आई एम अ बॉबी गर्ल, वो वो वो वो वो, इजी है, ऐसे वाला आप ट्राई कर सकते हैं। और बिलाल के लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। बड़ा ही प्यारा सा नगमा था, थैंक यू रिजू जी हमको अंग्रेजी सिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड पर। और ये डिमांड है हमारे अजीज जी की ओर से, मुंबई से आई हुई। देखते हैं मुंबई से एक और डिमांड हम पर आई है और ये डिमांड क्या कहती है। फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में जो कि दीपक जी की, और फिर होंगे मैं मनीष शर्मा जी, फिर होंगे मैं मुस्तफा जी, और उसके बाद होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जी, और फिर उसके बाद होंगे हमारी रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से।

जी हाँ, तो भाई पानी का मौसम आ गया है और अगर बरस जाए तो दो चार बाल्टी बचा के रखिएगा, पौधों में डालिएगा, उनकी आयु सीमा बढ़ जाएगी। ये थोड़ी सी सूचना थी, आपको देनी थी तो हमने दे दी। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये डिमांड आपने एंजॉय किया अजीत जी की डिमांड पे, जो की है मुंबई से, और नेक्स्ट डिमांड है हमारे हथियागढ़ से आई हुई। हथियागढ़ से आया है एक सॉन्ग हमारे पास में दीपक जी का। चलिए ट्यून कर देते हैं 3 से 4 के सफर में। आपकी होस्ट एंड होस्ट आरजे आकांक्षा के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा को।

जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी हमारे दीपक जी की हथियागढ़ से, और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। लेकिन उससे पहले आप सभी का नाम फटाफट से ले लें, वरना फिर आज हमको वक्त नहीं रहेगा और गाने बहुत सारे हैं। और हाँ जी, मुझे मालूम है रवि जी आवाज विकास कॉलोनी से आप सुन रहे हैं, आपके उधर आंधी आई है, हर तरफ आंधी आई है, थोड़ा सा सब्र करिए। और हमारे बीच में आज बड़े दिनों बाद मौजूद है बुद्धिजीवी प्राणी यानी हमारे बुद्धिजी लुधियाना से, मीनू जी हैं गोंडा से, नागेश्वर ढाकर जी रतलाम की गलियों से, इसके अलावा हैं रवि जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, मनी शर्मा जी हैं, प्रबल मिश्रा जी हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैसेज की तो हमारी गुलफशा अंसारी जी हैं सीतापुर से, दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, और नेक्स्ट मैसेज में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे रिजू जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और नेक्स्ट में हमारे आर के श्रीवास्तव जी भी हैं, कमल नयन जी हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारी नेहा जी यानी कि मंगू जी का है, चंगू जी भी आई हुई है, नीना जी भी आई हुई है, वक्त निकाल करके आई हुई है, भैया बड़ी बिजी रहती हैं लेकिन आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगा देख के आपको। और इसके अलावा हमारे प्यारे रामकृष्ण नंदन जी भी हैं इलाहाबाद से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक जा रही है, तो आप ज़रूर बताइए आपके उधर का मौसम कैसा है। एफ जी भी हैं मतलब फ्रॉक जी हैं, आप क्या हैं आप अपना प्लीज़ पूरा नाम मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम से आपको फ्रॉक ना बुलाएं। हाँ जी, और इसके अलावा हमारे बीच में और कौन मौजूद है देख लेते हैं भाई, कोई छूट ना जाए। हाँ जी, धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, द ग्रेट सिंह साहब जी हैं और प्रमुख जी हैं लुधियाना से। तो भाई हमने सभी के मैसेजेस लगभग ले लिए हैं, और अगर किसी का नाम छूटा है तो हमारे हैं शैलेंद्र रिझारिया जी खजुराहो एमपी से, और दीपक जी तो हैं ही जिनका सॉन्ग चल रहा है, सबलू सावन जी मुंबई बोरीवली से, तरसती नजरें नजरों ने हर पल आपको ऐसे मांगा, ओके जैसे हम नहीं नहीं जैसे हर अमावस में किसी ने चांद मांगा। क्या बात भाई, मांगना भी एक कला है, क्या मांगना है, किससे मांगना है, कितना मांगना है, ये भी दिमाग की बात है। रिंकू जैन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रिंकू जैन जी। और मिस्टर कैप्सूल जी आप अपना नाम प्लीज लिख के आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और

मुझे तो डीजे वाले बाबू ने तो पता नहीं बजाया या नहीं, लेकिन अपन ने बजा दिया है भाई। आरजे बाबू नहीं बबुआइन है और उन्होंने बजा दिया है ये गाना। मतलब मनीष शर्मा जी का ये गाना कंप्लीट होता है। अभी बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं, मुस्तफा जी के सऊदी अरेबिया से आई हुई है। भैया इनका कहना होता है हम जब कॉल करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा 30 रुपया कटता है, तो हमारा गाना जरूर बजाएगा। इसलिए आपकी बारी आ गई उचित वक्त पे, तो हम बजा देते हैं आपकी पसंद का ये वाला गाना। और उसके बाद आते हैं प्रबल मिश्रा जो पंडित जी की डिमांड के साथ में, फिर होंगे हमारे सुखी राम जी, और उसके बाद में होंगे हमारे एक और प्यारे से लिसनर, उनका नाम हम तभी डिस्क्लोज करेंगे, नहीं बता देते हैं, रीना शर्मा जी होंगी, और फिर कौन होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये गाना

क्या बात है भाई। और वाकई परदेशों से आंखियां नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये लाइन हमने स्पेशली इसलिए बोली है क्योंकि रामकृष्ण नंदन जी का कहना, हमारे यहाँ गर्मियों के सीजन में सर्दियों की फीलिंग नहीं आती, 45 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। तो भाई परदेशी आप क्यों बन गए, हाँ वापस से गोंडा चले आइए, फिलहाल बढ़ेंगे नक्सल डिमांड की ओर। और ये डिमांड है हमारे प्यारे पंडित जी यानी प्रबल जी की। आइए देखते हैं आज क्या सुनना चाहते हैं, मिलकर सुनते हैं इस गाने को और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ।

क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड थी और जिस तरह से मौसम है उसी तरह से फीलिंगफुल सॉन्ग आपने एंजॉय किया प्रबल जी की डिमांड पे। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन थमना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग है। और रिक्वेस्टेड इसलिए है क्योंकि ये किसी के जज्बात है किसी तक पहुँचने के लिए, यानी कि डेडिकेशन के लिए आया हुआ सॉन्ग है चांदनी जी की ओर से उनके किसी समवन स्पेशल के लिए। और उन किसी का नाम है आकाश जी। आकाश जी, आपके लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही जज्बात से ये गाना भेजा गया, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और अगर रूठे होंगे ना तो मान जाइएगा, मौसम है बदलता रहता है, आप अपना मूड भी बदल लीजिएगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं चांदनी जी की डिमांड पे आपके अपने शो, जी हाँ, कॉल इन शो कॉल एट्यून गुंडा के साथ।

डिमांड होंगे हमारे सुखी राम जी को, उसके बाद होंगे हमारी रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से, फिर होंगे हमारे रामेश कुमार जी महाराष्ट्र से, उसके बाद होंगे हमारे समलू सावंत जी मुंबई बोरेवली से, धर्मेंद्र मोहन भारती जी हमारे आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, उसके बाद कौन है ये हम बाद में बताएंगे।

बाजी और शो के अंत तक कॉल्स आ रही हैं, हम क्या करें बताइए आप लोग। फिलहाल कोई बात नहीं, हम कॉल बाद में रिसीव करेंगे, उससे पहले बताएंगे कि ये इस गाने का फीडबैक क्या हुआ है। गाना काफी पसंद किया गया है चांदनी जी और आकाश जी, उम्मीद है कि आप दूर नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और हाँ, एक हमारे दोस्त ने भी हमको मैसेज किया कि आपको डेडिकेट है, तो हम बता दें जनाब, हम आपसे दूर नहीं गए हैं, बहुत जल्द आपसे फुर्सत पाते ही हम आपको कॉल पर ज़रूर बात करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है और हम व्यस्त क्यों हैं ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे सुखी राम जी की, और सुखी राम जी के सॉन्ग के बाद हम आएंगे रीना।

जी गाना बहुत खूबसूरत है लेकिन इससे ज्यादा नहीं बजा पाऊंगी। गाना वाकई बहुत बेहतरीन है। रफ्तार जी भी हमारे बीच में हाजिर है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती है। आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा भी हम बनेंगे रीना शर्मा जी की ओर से, और निशा जी का 3 दिन से गाना रह जा रहा है, जाते जाते आज उनकी लास्ट डिमांड हम जरूर करेंगे। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए।

जी, और अगर वक्त की बात करें तो 3:51 शेष मेरे पास केवल 9 मिनट है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और नेक्स्ट डिमांड हमारे रमेश कुमार जी की महाराष्ट्र से आई हुई, आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को।

हाँ जी श्रोताओं, हिंदी सैड सॉन्ग को कवर वर्जन में कवर करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और डिमांड हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की आवाज, बिकॉज कॉलोनी गोंडा से एंजॉय द ट्रैक।

बहुत ही सुंदर सी रोमांटिक सॉन्ग की डिमांड की गई थी धर्मेंद्र मोहन जी के द्वारा। बहुत बहुत थैंक यू धर्मेंद्र जी। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो है निशा जी की डिमांड। और इसके बाद में लास्ट डिमांड लेके आते हैं हम अपने अनुष्का जी की, और माफी चाहेंगे माफीनामा के साथ में वापस से हाजिर हैं हम राजू सलमानी जी से और अपने अनीरा जी से। और इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट लिसनर जिनका सॉन्ग आज रह गया है वो हमारे रीत लाल जी और मुमताज अंसारी जी, और साथ ही साथ में अंश जी हैं हमारे भट्टा परेड गांव से। पलाल ये गाना एंजॉय करिए।

प्लेलिस्ट आप ही लोग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी डिमांड के लिए और मौसम के अकॉर्डिंग डिमांड करने के लिए और भी बड़ा वाला थैंक यू। और जिनके सॉन्ग्स रह गए उनसे माजरे चाहूंगी और कल फिर से मिलेंगे इसी वक्त पर। और इसी के साथ में एक और बात कहनी थी, मुझे कहना ये था, क्या कहना था मैं भूल गई, मैं इतनी भुलक्कड़ क्यों, नहीं याद आ गया भाई। मौसम का आनंद उठाइए इस आज की लास्ट वाली डिमांड के साथ में, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल आपके अपने शो में क्वालिटीन गोंडा के साथ में। फिलहाल बाय बाय। और ये डिमांड हमारे अनुष्का जी की, और पानी में भीगना और किसी से मुलाकात करना, और अगर मुलाकात किसी और से नहीं कर सकते खुद से जरूर करिएगा चाय के साथ में। एंजॉय द ट्रैक। बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: कुछ गा दीजिए ना रफी साहब।
5: जी नहीं, मैं गाता नहीं।
4: सुना दीजिए ना जानू।
5: बुरा ना माने तो आप भी गाओ।
4: जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
5: दिल को चुप गया।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोना शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो गया है गोधूली, और आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं। वो किसी न किसी कार्यक्षेत्र को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में बेहद अहम बातों को लेकर के हाजिर है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं एंड फिजिशियन होम्योपैथ हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू
1: सो मच। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई बहुत अहम मुद्दों पे बात होने वाली, दरअसल बात इतनी अहम है कि आपका और हमारा जो दिन ब दिन बदलता लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो हम डिप्रेशन में आ रहे हैं या टेंशन में होते हैं या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेगी। और महज जानेंगे नहीं बल्कि उसके उपचार पर भी हम बातें करने वाले। इसके अलावा योगा के बारे में विस्तार से बातें होने वाली हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसीलिए हम पहले ही वॉर्न कर रहे हैं कि कहीं छोड़ के मत जाइएगा, सुनते रहिए। सो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और अपने परिवार के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमित सिंह, मेरा जन्म ग्राम बनकटी अर्जुन सिंह, जिला गोंडा में ही हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय ITI मनकापुर से हुई। मैंने हाई स्कूल वहाँ से पास करने के बाद GIC गोंडा से इंटर किया। उसके बाद फिर तैयारी किया लखनऊ में, फिर पॉट के एग्जाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन होम्योपैथी के लिए हुआ। फिर मैंने वहाँ 5.5 साल का कोर्स ये जीवज यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैंने RML यूनिवर्सिटी से किया, और ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही। मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर ITI मनकापुर में थे, माताजी शुद्ध रूप से गृहिणी थी। हम लोग का गांव से भी काफ़ी लगाव रहा, और इसलिए हम लोग इस कार्य को और अच्छे से जानते हैं। और जो कार्य हमको मिला है जिला प्रोग्राम का प्रबंधक का, वो और अच्छे से कर पाते हैं, जो कि हमको जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े रहे हैं, क्या खान पीन रहा है लोगों का, क्या लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में।
1: बेशक। तो अभी तक आपने बताया कि आपकी क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और अभी तक की आपने पोस्ट के बारे में बताया, एक क्लिप्स दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो वापस से एक बार पीछे चलते हैं आपके जीवन में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका एम्बिशन क्या था, क्योंकि अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपने क्या सोचा था, गवर्नमेंट जॉब में ही आने का था या कुछ और प्लानिंग थी कभी आपकी कि आप कुछ और परस्यू करेंगे?
2: एक्चुअली प्लानिंग तो सच पूछे तो सिविल सर्विसेज की ही थी, लेकिन प्लानिंग चेंज होती रहती है। आदमी बच्चा रहता है तो पायलट बनने की कोशिश करता है, फिर कोई और बनता है, कोई और मिलता है कुछ और बनता है। लेकिन फिर मेडिकल में चले गए, तो मेडिकल में फिर जब जाने के बाद आपने इतना समय दे दिया है 5.5 साल, फिर लगता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए है फिर वो आपने किसी की सीट बेकार कर दी है ना, अगर छोड़ के आप किसी और चीज़ में जाते हैं। फिर इसी विधा में आगे बढ़ गए हम लोग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर लिया, तो अब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्लिनिक कर रहे थे, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऑलराइट, तो मतलब आप भी पायलट बन चुके हैं जैसे हम भी बने थे कभी।
2: वुमन सभी बच्चे पायलट कर्नल कुछ ना कुछ बनते ही रहते
1: हैं
2: है ना।
1: और मेरे जैसे बच्चे हैं तो हाँ, वो फिल्मों में भी जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप तो स्मार्ट हैं, कहीं जा सकते।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो बचपन में जो कुछ भी देखते हैं और उनको लगता है इसमें बहुत लाइमलाइट है, इसमें बड़ा नाम है या बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस चीज में जाने की वो जरूर ट्राई करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिताजी का आपको साथ मिला। पिताजी का कभी इस बात पे कोई प्रभाव था कि आपको यही करना है, यही परस्यू करना है, क्या था?
2: नहीं, उन्होंने कभी इस तरह का दबाव तो नहीं डाला, जो ठीक लगे वो करो। उनकी इच्छा कुछ ऐसी नहीं थी कि आप स्पेशली यही करें, जो करो वो ठीक से करो, उसी में नाम करो,
1: जो भी करे उस पे 100% दे।
2: 100% दे।
1: ओके।
2: और उसी में आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं करना है। उनका जोर इसी पे था।
1: ओके, पढ़ाई लिखाई में किस तरह के आप छात्र थे? बड़े एवरेज थे या टॉपर थे या वीक थे, क्या था आपके साथ में?
2: पढ़ाई लिखाई में तो मैं शुरू से ही ठीक रहा, अच्छे स्टूडेंट्स में हमेशा गिनती रही।
1: ओके,
2: ध्यान भी रहता था उधर पढ़ने पे, बाकी चीजों में भी रहता था, खेलने में भी रहते थे हम लोग।
1: ओके, यानी आपकी जो गिनती होती थी वो एक अच्छे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं गिनी जाती थी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे तो कुछ ना कुछ आपकी रुचि भी रही होगी, तो किन चीजों में आपकी रुचि बहुत रही है बचपन से?
2: अध्ययन में, लेखन शैली में, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, कुछ कंपटीशन होते थे इन सब पे, और जैसे हम लोग के यहाँ यूथ विंग पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी हमने कई बार अवार्ड्स जीते हैं, क्लस्टर पे, फिर जोनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल तक गए उस पर काम करते हुए, स्काउट गाइड में भी रहा, उसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान का नहीं लगा मौका, कुछ पढ़ाई की व्यस्तता के कारण, लेकिन द्वितीय सोपान तक उसमें ही पास किया हमने। ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी और एक्टिविटीज थी उसमें कुछ ना कुछ करते रहे। खेलने में बैडमिंटन का शौक था।
1: खेलने में बैडमिंटन का शौक था, ओके। मतलब एक तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आप उस तरह के छात्र थे कि आपको नई चीजें करने में बड़ा मजा आता था, यानी कोई भी चीज अगर नई आपने देखा कि अध्ययन के अलावा भी कुछ है तो उसको जब तक कर ना ले, उसको जान ना ले, मतलब वो एक होता ना जिज्ञासा होती है
2: जी।
1: तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एक छात्र जीवन में तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया कि आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, आप क्लस्टर लेवल पे गए, आप उससे ऊपर भी गए, ये बहुत अच्छी बात है। डिबेट की आपने बात की, अगर हिंदी में बात करें तो उसका लोग बोलते हैं बहस
2: जी,
1: और यूं तो हम मार्केट में बहुत सारी बहस देखते हैं, तो आप कौन सी बहस करते थे?
2: बहस तो कई प्रकार की है, हम लोग सकारात्मक बहस की बात करेंगे ना, जिससे कुछ अर्थ निकले
1: जी।
2: एक आप गए सब्जी लेने, वहां से बहस कर रहे हैं, पैसा छुड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सब्जी लेने वाले से अगर इस पे बहस हो जाए आपकी कि ये सब्जी अच्छी नहीं है, कहाँ से लाए हो, ऐसे अच्छी आ सकती थी तो अच्छा है, लेकिन आपकी बहस यहाँ से हटाओ, ऐसे करो, दो चार चीज फ्री दे दो, तो वो नकारात्मक हो जाती है। आपको लेना है कि आपको बहस में सकारात्मक चीज खोजनी है, नकारात्मक खोजनी, मिलेगा तो दोनों, च्वाइस आपकी है, आपको लेना क्या है, बहस करनी किस पे,
1: बहस करनी किस पे, मतलब ये डिपेंड करता है। वाह, वेरी नाइस, आपने कहा कि भाई किसी चीज को एक तो नेगेटिव बहस होती है, एक होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होती है, कुछ निकल के आता है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को उनको इस तरह के मौके देने चाहिए, और जो बच्चे डिबेट्स वगैरह जैसी चीजों में रहते हैं उनकी बुद्धि पे इसका क्या असर पड़ता है?
2: देखिए, मैं तो चाहूंगा कि पूरी तरह छूट देनी चाहिए, उनको वॉच करें, गाइडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन दबाव ना डालें। अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं या किसी कंपटीशन भाग लेना चाहते हैं, करने दीजिए आप, नहीं करने देंगे तो बंध जाएंगे बच्चे, फिर बौद्धिक विकास नहीं हो सकता उससे। आप जबरदस्ती की किताबें रटवा लें, 10 किताबें रख दें, पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे पढ़ के? इस तरह की पढ़ाई आपकी किसी काम नहीं आ सकती। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं, आप कुछ भी बन जाएं, आप दिन भर उसी में परेशान रहेंगे, दवाओं में परेशान। मेंटली फिट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा अपने कार्य में, फिर आप चाहे जो बन जाए, पूर्णतः आपने 100% नहीं दे सकते। आपने भी देखा होगा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे।
1: बेशक, मतलब आपके सिंपल सा कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि आप घूमने निकले हैं पहाड़ियों में और आपने 3-4 झूले टांग के रखे हैं, लगातार टांग के रखे हैं, तो आपका बार बार जहन जाएगा, कंधा दर्द हो रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको रखेगा, मतलब आपको खाली हाथ जाना, तब तो आप एंजॉय कर पाएंगे, और यही लाइफ है शायद, कि आप बैलेंस कर लें, अपना मेंटली तौर पर भी आप फिट रहें और फिजिकली तौर पर भी। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत खूब आपने कहा। अब मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में हमेशा भाग लिया है, आपके टाइम पे क्या आप भी आज के जैसे वो अकेले रहने पे विश्वास करते थे क्या, कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, खेलकूद में मैं अकेले लूंगा, सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, क्या था और अभी क्या मानना है आपका इस चीज को लेकर?
2: देखिए, उस वक्त मैं क्या, कोई भी अकेले नहीं रहता था, मोबाइल नहीं था सोशल मीडिया नहीं था, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग निकलते थे हालचाल पूछने के लिए, आपको 4 बार किसी दोस्त के घर जाना पड़ता था, है हो भैया कि नहीं हो,
1: ओके।
2: आप क्या था, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे आ गया, कॉल कर लिया, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, टेलीफोन लगे थे, लिमिटेड लोगों के यहाँ लगे थे, महंगी कॉल दरें हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा कि थोड़ा सा हालचाल पूछने में 10 से 15 रुपए लग जाया करते थे, और जब उस 10-15 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी।
1: बेशक बेशक,
2: तो आपको किसी दोस्त से मिलना होता था तो उसके घर जाना ही पड़ता था, वो भी साइकिल चला के जाना पड़ता था, तो आपकी बॉडी फिट रहती थी, खेलने जाना प्लान करना है तो सब मिलके एक साथ बैठते थे, है ना, क्रिकेट मैच होता था, 2-2 रुपए के चंदे लगते थे बच्चे फिट रहते, मेंटली फिट रहते,
1: मेंटली फिट रहते,
2: तुमने दिया कि नहीं दिया,
1: सामाजिक मूल्यों को जानते थे, मिलते जुलते थे, रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को लेकर के रेस्पेक्ट की जो भावना, हम सम्मान की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं कि विविधताओं को एक्सेप्ट करने का मादा था। बेशक सही कहा आपने, क्योंकि आपने भी अपना जो बचपन गुजारा है वो कुछ इस तरह ही गुजारा है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, खेलना कूदना पढ़ना सब उन्हीं के साथ में, यानी एक शानदार बचपन आपने बिताया है। और इस वक्त जो हमारे शो को जेंजी यानी आज की जो जनरेशन सुन रही है वो सिर्फ इमेजिन कर रही होगी कि कितना खूबसूरत जिंदगी हुई करती थी इससे पहले, क्या बात है। सो फिलहाल हम बता दें कि अब हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर वो किस चीज के लिए हैं, कौन सा मिशन चला रहे हैं और कौन से मिशन से हम लोगों का क्या फायदा होने वाला है। सो आइए मिलते हैं ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: Delicious.
6: है ना, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका अपने शो, जिसका नाम है गोधरी। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके साथ में मौजूद है। आज जो चर्चा हो रही है और होने वाली है, वो बहुत ही अहम मुद्दों पर हो रही है। सो फिलहाल आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे वापस से बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आयुष मिशन के, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये आयुष मिशन है क्या और आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है?
10: देखिए, मेरा पद जो है वो हिंदी में आप समझिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक का, आयुष मिशन। इसमें आयुष का AYUSH करके लेते हैं इसमें हम लोग। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, इन सभी को एक साथ मिला के एक मंत्रालय बनाया गया आयुष। उसके तहत कुछ मिशन में मतलब है कि कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम को जोड़े गए, कैसे हम लोग पुरानी पद्धति की जो दवाइयाँ थी उन पे ज़्यादा फोकस करें। मॉडर्न मेडिसिन पे इतना दबाव बढ़ रहा है, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, आपको प्रॉपर टाइम में इलाज नहीं मिल पा रहा है, शहरों में भागना पड़ रहा है। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि आप अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, आपकी किचन में ही तमाम मेडिसिन रखी हुई हैं, आप जानते नहीं हैं तो इसलिए आप भाग रहे हैं।
9: वो क्या आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे, दादी नानी के नुस्खे जिन्हें
10: हाँ, कह सकते हैं। अच्छा था, मतलब उसमें नीम हकीम खतराए जान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है वैसे ही, है ना। सबको पता था कि अदरक और शहद लेने से खांसी ठीक होती, लेकिन अब विश्वास घट गया तो अब लेंगे ही नहीं। आप तो पहुंच गए किसी सिरप लेने के। ठीक है, सिरप भी लीजिए, जब जरूरत पड़े तब लीजिए, पहली शुरुआत यहीं से कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। योगा कर लीजिए, भूल गए हम लोग शुद्ध चीजों को खाना, भूल गए हैं। अब सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए बीमार रह रहे हैं। तो एक मिशन ये चलाया गया, भारत सरकार की इच्छा थी, तो उसके तहत ये मिशन जो चल रहा है, इसमें ये है कि सभी लोग स्वस्थ हों और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हों, आपको साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इस पे जोर है भारत।
9: ओके, तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझे तो जो हमारी भारत सरकार है उसका ये विजन और मिशन है कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्दी रखा जाए पारंपरिक तरीकों से, घर से ही वो खुद का ट्रीटमेंट कर पाए। और जो आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन पे आजकल जो बोझ बढ़ता जा रहा है, लोग उसके तरफ भागते जा रहे हैं, उसकी जरूरत ना हो। और शायद आपने ये भी जो बात कही आपकी बातों से निकल के आ रहा कि कई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती जैसे खांसी बुखार जुकाम, इनका शायद ट्रीटमेंट खुद ही हम कर सकते हैं घर पे रह करके आराम से, जब तक के लिए हमको ये महसूस ना हो कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही है और हमको डॉक्टर के यहाँ अब जाना ही पड़ेगा। और आपने बताया कि इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे इलाज होते हैं, योगा से कर सकते हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, इसमें से कुछ नाम से तो हम बहुत अच्छे से चिर परिचित हैं। और हम चाहेंगे कि एक बार आप भी हमको ये आयुष में जो AYUSH है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चले कि आयुर्वेद क्या है, योगा क्या है, यूनानी क्या है, सिद्धा क्या है और होम्योपैथ के बारे में।
10: देखिए अभी अपने भारत सरकार ने इसको चलाया, इस मिशन को, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ा रही है
9: जी।
10: इसमें ए से जो आयुर्वेद का तो आप लोग सब परिचित हैं ही हैं कि हम लोग की जड़ी बूटियां थी आयुर्वेद से है, चाहे तुलसी का पौधा हो या लेमन ग्रास हो या और चीजें जो आप लोग जानते हैं, इलायची हुआ, ये सब चीजें इनका क्या प्रयोग है, इस तरीके जो जड़ी बूटियों का यूज है ये हो गया आयुर्वेद से। और कुछ ऐसी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा
9: जी।
10: तो थोड़ा बहुत तो आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं पर बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये भी मानना पड़ेगा, हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं
9: बिल्कुल,
10: लेकिन ऐसा है नहीं। अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं योगा के लिए, सबको लगता है कि हमने देखा और टीवी में देखा योगा, अच्छा यूट्यूब में देख लेंगे किस बीमारी पे कौन सा योगा करना है, तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को खुद जान पाए, कभी कभी होता है हम लोग उल्टा योगा कर लेते हैं, है ना, इसके लिए क्या एक बढ़िया प्रशिक्षक चाहिए होता है।
9: तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, ये उल्टा योगा आपके कहने का क्या मतलब है?
10: जैसे हम लोग टीवी में देख रहे हैं, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सांस लेना है कि छोड़ना, वो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आवाजें एक ऐसी आती है, अब एक प्रशिक्षक के सामने बैठेंगे तो वो टोक देगा आपने ये गलत कर दिया, या आप योगा करते करते इधर झुक गए, इधर मत झुकिए, टीवी में तो आपने देख लिया कि हाँ सीधा सीधा बैठना है सब कुछ, पर क्या एक्चुअल में आप सीधे बैठ के कर रहे हैं, उस मुद्रा में कर रहे हैं, ये सामने वही समझिए, जैसे बच्चे को तो किताब दे दीजिए वो पढ़ सकता है घर पे, लेकिन आप विद्यालय क्यों भेज रहे हैं, इसलिए कि सही मार्गदर्शन मिले,
9: मार्गदर्शन मिले,
10: तो कौन देगा, वो प्रशिक्षक देगा, वो ज्यादा अच्छा देगा, हो सकता है कुछ लोग अपने मन से भी अच्छा कर लें, बहुत अच्छा कर लें, लेकिन पूर्णतया सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी जरूरत है। ऐसे ही फिर एक यूनानी है,
9: जी
10: पद्धति है, ये भी आयुर्वेद की से मिलती जुलती है, लेकिन यूनान से है, उसके जो खोज थी वो यूनान से थी,
9: ओके
10: हाँ, इसलिए यूनानी है। और होम्योपैथ जैसे आप जानते हैं जर्मनी से इसकी निकली हुई पद्धति, उसमें भी मतलब टिंचर्स बनते हैं, वो भी आयुर्वेद से लिए आते हैं, मतलब हमारा बेसिक तो देखेंगे जो भारत की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद है, मूल जननी तो हम उसी को मानते हैं, निकले वहीं से सब कुछ, सिद्धा भी है वो भी नेचुरोपैथ से जुड़ी होती है। तो अब इन सभी चीज को मिला के एक छत के नीचे, भारत सरकार का ये मंशा है कि एक छत के नीचे इन सब की व्यवस्था की जाए और वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर जो रखे जाएं, जो प्रशिक्षक रखे गए हैं, उनसे आप पहुंचकर दवा ढंग से ले सकें, अपने मन से मत ले लीजिए, वो आपके तय करेंगे कि भाई इस बीमारी में आपको क्या लेना है, आप मत तय कीजिए कि हमको यही लेना है, कुछ चूक हो सकती है आप, इसलिए।
9: और वो जो एडवाइस आती है कि हमारी चाची तो ये कहती है, हमारी नाना ये बताते थे, हमारे फलाने, क्योंकि आपने ये चीज अभी कोट किया कि खुद से आपको नहीं बनना है डॉक्टर, यानी इसके स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह होती है नेगेटिविटी की कि हम खुद से चीजों को इस्तेमाल करते हैं और कुछ अगर बाई चांस चीजें नहीं सही हो पाती तो हमको लगता है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने कहा कि ये जो पांच तरह की पद्धतियां हैं इनको एक छत के नीचे लाने की कोशिश सरकार के जरिए की जा रही है। अच्छा, चाहे आयुर्वेद की बात किया जाए, योगा की बात किया जाए या होम्योपैथ की, एक चीज सब में कॉमन कहा जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या ये सच है?
10: देखिए मोटी मोटे रूप से आप कह सकते हैं पर ऐसा नहीं है पूर्णतया, हम लोग इसको हमेशा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ योगा आपने गलत कर दिया तो उसमें भी आपको नुकसान होता है, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, पता चला कि आप गए थे दूसरी बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी लेके चले आए। ऐसे आयुर्वेद में भी कब क्या खाना है, आपने भी सुना होगा दही के साथ ये चीज नहीं खाना चाहिए,
9: कॉम्बिनेशंस जो
10: होते हैं ना,
9: बिल्कुल,
10: तो दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज कॉम्बिनेशन कैसे जाना आपने, नुकसान तो है नहीं, तो फिर तो कभी भी कुछ भी खा लीजिए आप,
9: कुछ भी खा ले, सही बात है,
10: कटहल के साथ दूध नहीं पीना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है, तो ये भ्रांतियां तो है नहीं, ये फैक्ट है, तो इसको बताने के लिए कौन होगा, इसीलिए डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको सभी चीज की इलाज खुद नहीं करना चाहिए।
9: तो आपने ये चीज बताया कि साइड इफेक्ट उस तरह तो नहीं होता है जैसे मॉडर्न दवाओं में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये है कि इससे फायदा ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तब तो आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसमें आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से करने की कोशिश की और आपको वहाँ पे ज्ञान नहीं है, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा चीजें फिर उल्टी पड़ सकती है। चलिए ये बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, आपने कहा क्योंकि आयुष मिशन के तहत ये सेंटर्स यहाँ चलाया जा रहा है गोंडा में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्लीज बताइए कि किस तरह के सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त, कितने प्रशिक्षक हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन सेंटर्स पे किस तरह से लोगों को योगा कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लगभग कितने लोग आते हैं और किस तरह से वो लाभ पा रहे हैं इन सारी चीजों से।
10: देखिए, ये सेंटर्स पूरे जिले भर में लगभग सभी ब्लॉक्स में हैं, और ये वेलनेस सेंटर में योगा प्रशिक्षक रखे जाते हैं। जो डॉक्टर्स वहाँ हैं ऑलरेडी, वो दवा लिखते हैं, उसके साथ में आपको बताते हैं कि इसमें ये योग जरूरी है, तो वो योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक रखे गए हैं। एक महिला रखी जाती है और एक पुरुष, और वो दोनों लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इस बीमारी में ये करना है। आपको एक दिन सिखाएंगे, दो दिन सिखाएंगे, फिर आप उसके बाद अपने घर पे जाकर कर सकते हैं। अच्छा, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है कि वेलनेस सेंटर चलते हैं। अब धीरे धीरे हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसमें आप कहीं भी जाइए और सीखें और लोगों को जोड़ें। हमारा कहने का मतलब है आप पूरे मोहल्ले में भी अपने बताएं कि आप जाइए भैया, इस चीज़ का पैसा मत खर्चिए, सरकार आपके लिए पहले से व्यवस्था करके रखी हुई है, तो बस यही उद्देश्य है इसका।
9: ओके, तो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अगर हम चूंकि सिटी में बैठे हैं इस वक्त, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे कोई आपका सेंटर चल रहा है?
10: यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीछे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ वेलनेस सेंटर चलता है, वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों प्रशिक्षक हैं। आप जब जाएंगे वो लोग आपको इसकी सुविधा देंगे, आपको अच्छे सिखाएंगे, बताएंगे क्या क्या कैसे करना है, आप सीखिए फिर वहाँ भी जाके कीजिए, उसके बाद अपने घरों पर करते रहिए।
9: अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है कि आपने किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ही एंट्री होगी वेलनेस सेंटर पे, या कोई भी कभी भी जा सकता है?
10: देखिए, एक समय निर्धारित है, उस समय के बीच में आप जब जाएंगे तो कोई ऐसा एंट्री तो नहीं है। आप जाएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, उसमें उस हिसाब से जो योगा के प्रशिक्षक हैं वो आपको एक प्रशिक्षित करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो कोई ऐसी एंट्री नहीं है, कुछ क्लिष्टता नहीं है उसमें कि आप जा रहे हैं तो किसी लिखवाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये भ्रांतियाँ हैं कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं बैठे होंगे, नहीं, सब प्रॉपर वे में बैठ रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप जाइए और अपना इलाज कराएं।
9: टाइमिंग आप बता सकते हैं क्या लगभग टाइमिंग होती है?
10: टाइमिंग जो ओपीडी की टाइमिंग होती है डॉक्टर्स के, वही टाइमिंग रखी गई कि आपको अलग से परेशान ना होना पड़े।
9: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओपीडी के टाइम पे ही आपके ये काम भी हो जाता है, तो एक फीमेल एक मेल आपको योगा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि इस तरह से सेंटर्स चल रहे हैं, और अगर हम ऑल ओवर गोंडा की बात करें तो कहाँ कहाँ इस तरह के सेंटर्स हैं, क्या और भी यहाँ की जो तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी क्या इस तरह के सेंटर्स हैं?
10: देखिए, एक सेंटर पंडरी कृपाल में है
9: जी,
10: एक गोंडा प्रॉपर में है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे, मैंने आपको बताया उसी कैंपस में है हॉस्पिटल के, और उमरी बेगमगंज में है, पकड़ी में है, दूरस्थ इलाकों में भी है, मतलब ऐसे कई सेंटर्स चल रहे हैं और हर जगह योग प्रशिक्षक रखे गए हैं। सरकार की ये नीति है कि गांव के दूरस्थ इलाके में भी आपको अच्छे से अच्छी आयुष की सुविधाएं मिले, जैसे आपको वहां से चल के शहर में ना आना पड़े, 50-50 किलोमीटर दूर तक सेंटर है, तो आपको यहां आने के लिए परेशान ना होना पड़े, तो आपके घर के नज़दीक में जो सेंटर हो आप वहां जाएं और अपने लिए इलाज करें।
9: तो मोस्टली ये सेंटर्स आपको CHCs के पास में या जो हॉस्पिटल से वहीं मिलेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल से?
10: ऐसा ही है।
9: ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आयुष मिशन के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अगर आपके अकॉर्डिंग हम माने तो सारे ही ब्लॉक्स में और सारी ही तहसीलों में इस तरह के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और लोगों को उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग या फिर बेसिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं या योगा होते हैं उनको बताया जाता है, उनको हेल्थ के लिए अवेयर किया जाता है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से, अब चूंकि आप बता रहे हैं इस वक्त और आप DPM भी हैं, लेकिन सुनने वाले इस वक्त आपको बहुत सारे सुन रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इसको सुनने और समझने के बाद किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों तक क्या, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है, मतलब ये नहीं कि आप जवान हैं, आप बैठे हैं और आपका फिगर ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटेन दिख रहा है, तो इट मींस कि आप मेंटेन है, तो क्या लगता है कि योगा कितना ज्यादा जरूरी है, उस तरह के सेंटर्स का लाभ कितना उठाया जाना चाहिए?
10: देखिए, हम तो चाहेंगे 100% उठाया जाए, आप सबको ये तो नहीं कह सकते कि आप बीमार हैं, सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कोई किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको कह दिए, उसको गुस्सा आता है ना कि हमारा बिगड़ा है, लेकिन योगा सबको करना चाहिए, योग करेंगे निरोग रहेंगे। अब सुबह उठना सबको मालूम है अच्छा है, लेकिन सब लोग तो उठ नहीं पाते हैं, खाना सबको मालूम है कि 12 बजे दिन में खा लीजिए, रात में 8 बजे खा लीजिए, 11 बजे तक भी खाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, TV नहीं देखना चाहिए 9 बजे, पहले सबको मालूम था, TV कम से कम 10 फीट की दूरी से देखनी चाहिए, सबको मालूम था, अब 10x10 के कमरे ही हो गए हैं, है ना
9: जी।
10: मोबाइल स्क्रीन आपको लांग से सटा के देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जिसको हमको आपको जानकारी थी, अब वही भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ को व्यवस्थित, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर हो नहीं सकते, सोशल मीडिया से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि इतना वर्कलोड है लोगों को, 8-8 बजे रात तक लोग कंप्यूटर पर काम करते, तो काम छोड़ा नहीं जा सकता। उसी बीच में कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको अपने लिए, शरीर के लिए। नहीं तो कहने को तो हर व्यक्ति स्वस्थ है, जब तक स्वस्थ है तब तक चल रहा है, जब अस्वस्थ होता है तभी उसको लगता है कि ये दिक्कत। इसीलिए आज आप देखिए अमूमन 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं 40 की उम्र में। 40 की उम्र में तो पहले लोग सुनते ही हंसते थे कि 40 की उम्र में हो गए, लेकिन अब ये कॉमन सी बात हो गई। इसीलिए आप योग करें कि कम से कम जो बीमारी, जिस पहले सुनते थे कि बुढ़ापे के रोग हुआ करते थे, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज होते थे, अब आप देखते हैं कि 35 साल के व्यक्ति को हो गया, आजकल तो अपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि 18 साल के लड़के को हो गया, उसकी डेथ हो गई बेचारे। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? खान पीन आपका बिगड़ गया और फिजिकल एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, आप मशीन से काम करने लगे, खुद भी मशीन बन गए। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए या तो लोग पसीना बहाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूक करें और 100% लोग इसमें काम।
9: बेशक, और आए दिन चूंकि हम सुनते हैं कि भाई योगा डे पे, यानी वर्ल्ड योगा डे जब होता है तो उसकी टैगलाइन हमेशा चेंज की जाती रही है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। क्यों की जाती रही है? क्या योगा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ भारत लेवल पे नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक लेवल पे योगा को महत्व दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये सारी बातें हम आने के बाद भी जानेंगे, और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य पे हमको चर्चा करना है। हम सभी में इन चीजों की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। करेंगे चर्चा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने पूछा था। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एंड फिजिशियन होम्योपैथ। क्योंकि जाने से पहले हमने ये कहा था कि हर बार जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है या योगा से स्पेसिफिक कोई भी इवेंट किया जाता है तो उसकी टैगलाइन दी जाती है, लेकिन हम स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल योगा डे पे, तो क्या वजह है कि कभी आध्यात्मिक रूप से उसको जोड़ के बताया जाता है, कभी सामाजिक रूप से, इतने अलग अलग पहलुओं से योगा को जोड़ा जाता है? क्या महत्व है योगा को, वो भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट अब किया जाने लगा है?
9: देखिए, योगा को छोटे में आंकना तो गलत होगा। बहुत विस्तृत रूप से इसके, बहुत ब्रॉड रूप से इसको जानना है। और इसके लिए ये है कि अब आप मौलिक रूप से अपने आप को स्वस्थ यत करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी प्रकार के विकास की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हर दूर दूर तक गांव में से लेके और शहर में सबका रहन सहन अलग अलग होता है, एक जैसा आप नहीं मान सकते पूरी तरीके से। तो सबको व्यवस्थाएं देना और सबके लिए अलग अलग, क्या सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग कैसे पैमाने पर खरा उतरा जाए और कैसे उतारा जाए, इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया भी करते रहते हैं। और विस्तृत होने के नाते तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ते भी रहते हैं तो और अच्छे से आपको समझाया जा सके। मान लीजिए इस बार ये हुआ कि ऐसी चीज़ें, इस बीमारी, कभी होता नहीं, जैसे कोविड में आपने बहुत सी चीज़ों की नई चीज़ जानी होगी, कुछ नए आसन आपको सिखाए गए होंगे, कुछ आपने नई जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना था।
8: बिल्कुल
9: ऐसा नहीं था, उसका नाम था नहीं, तो बहुत व्यस्त है, हमको जानकारी नहीं था। ऐसे ही योगा का है, हमको जानते ही नहीं है लेकिन बहुत वृहद है।
8: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि बहुत ही वृहद है और कहीं ना कहीं जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, इसीलिए शायद बार बार टैगलाइन भी हर तरह से इसको चेंज किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमने योगा की बात की है तो योगा से हम जाना चाहेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हम फिजिकल, हमारा बहुत सारा काम है, हमारा इवन काम ही MR कायम है, जा जा के जगह जगह दवाओं के बारे में रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा काम फील्ड का है, या मेरा काम बहुत उठाने रखने का है, बहुत हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीजें उठाते रखते हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले चाहे पुरुषों की, तो उनका मानना होता है फिर हम योगा क्यों करें, फिर योगा अलग से क्यों करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं।
9: देखिए, जो काम आज हो रहे हैं ये काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए मशीनरी नहीं थी, तब तो मानते थे हम लोग, आटा भी चक्की से पिस के आता था, दूसरे तरीके से महिलाएं खुद पीस डालती थी, मसाले पीसते थे। अब आपने मिक्सी खरीद ली, काम खत्म। काम तो आज भी आप मसाला पीसने कर रहे हैं, कह तो रहे हैं।

0: होते थे, अब ये सब नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क अगर घटा है, लेकिन खान पीन तो आपका घटा नहीं, वो तो और खराब हुआ। पीजा वर्कर का आपने नाम भी नहीं सुना था, पाश्चात्य संस्कृत में हम लोग जोड़ते चले गए, थोड़ी खान पीन की भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए अब योगा बहुत जरूरी है आपको फिजिकल बैलेंस करने के लिए, मेंटल बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज के लिए योगा आपको करना ही पड़ेगा। सबको लगता है हम फिट हैं, कौन तय करेगा फिट हैं? आपके बॉडी के मानक ही तो तय करेंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 की उम्र में तो आप फिट नहीं है, डायबिटिक हो गए तो आप फिट नहीं है। तो आपको आप ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन अब जीने की इच्छा नहीं है। तो फिट रखने के लिए आपको फिर पुरानी पद्धति में जाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे। तो इसलिए एक योगा एक ऐसी चीज है जो पहले से हमारे यहाँ थी, प्रचार प्रसार की कुछ कमी थी, अब अच्छे से हो रहा है। अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं, बढ़िया प्रशिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलेंगे सीखेंगे तो आपका शरीर दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकते हैं। दवाइयाँ छूट सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाइयाँ चलती रहें, छूट भी सकती हैं।
1: और सब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वस्थ खान पान, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीवन शैली सही नहीं है, तो हम किस तरह स्वस्थ हो पाएंगे? जापान के बारे में जब बात आती है तो फिर कहा जाता है कि वो लोग बहुत फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एज भी वहां के लोगों की रिकॉर्ड की जाती है। और जहां तक मुझे पता है, कई जगह ऐसे वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जिसपे सुबह 20 मिनट और शाम में 20 मिनट निकाल करके बूढ़े बच्चे से लेके हर कोई उसको वहां पे योगा कराया जाता है, एक्सरसाइज, बेसिक्स एक्सरसाइज जो होती है वो कराया जाता है। और कहा जाता है कि ये सबके लिए मैंडेटरी, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पॉज करें और 20 मिनट का टाइम निकालें और उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरी समाज को स्वस्थ करने के साथ वो एक्शन भी दिखता है। क्या लगता है आपको कि हमको इन चीजों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी 20-25 साल का भी कोई बंदा है, उसका भी पेट बाहर ही चला आ रहा है। दुकानदार हम लोग जिनसे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मतलब आपको उनके चेहरे से पहले उनकी तोंद नजर आ जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कि ये हेल्थ को लेकर के। तो हमें क्या अभी करने की जरूरत है? आपने योगा बताया, अब आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आपके शहर में भी है, यानी आप जहां पे हैं आपके नियर बाय में वो सेंटर्स हैं। तो अब हमें क्या उन सेंटर्स का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए, किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं?
0: देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से पूर्णतया ही है, लेकिन यदि जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, बगल में चल रहा है तो आप कैसे जान पाएंगे? उसको ऐसे लीजिए, लोगों पहले अपने अवसाद का नाम कभी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब इधर डिप्रेशन के मरीज बहुत हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा लगी रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ तो फिर आप क्या योगा करेंगे, आपको क्या जरूरत है, आप तो थक गए, आप चूर हैं, आपका हो गया योगा, हो गई फिटनेस, ऐसा नहीं है। मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको शुद्ध चीज़ें, क्यों कहते हैं कि हरी साग सब्जियाँ खूब खाने चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आपके मेंटल लेवल को भी ठीक करता है। तो आप जब योगा करेंगे तो पड़ोसी को भी बता पाएंगे। अगर आप अनफिट हैं और फिट हो गए आ गए तो पड़ोसी भी पूछेगा, भैया कैसे हो गए हो फिट, क्या किया, तभी तो आप बता पाएंगे हम फिट हुए हैं। तो आप भी चले जाइए, अभी ऐसा ऐसा कीजिए, आप ले जाएंगे, एक से एक करते हुए 11 बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़ेगी, लोग फिट होंगे, तो एक भार जो कम होगा, जो आपका स्वास्थ्य के प्रति जो खर्चे हैं आपके, वो भी आज बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से सैलरी का 1/4 मिनिमम लोग स्वास्थ्य के पीछे खर्च कर देते हैं। उसमें मैं फल सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें दवाओं की
1: बात कर रहे हैं आप।
0: तो ऐसे खर्चों से बचना है, अगर हम नहीं करें पूर्णतया बचा जा सकता है, मैक्सिमम रूप से तो बच सकते हैं आप। तो अगर हम लोग कोशिश करके 5% पे ले आए उस खर्चे को, तो पैसा आप किसी और चीज में हो सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, समाज से सोशली आप जुड़े रहेंगे। अभी तो कट हो रहा है ना धीरे धीरे करके, बस इसीलिए होगा, जरूरी नहीं, नितांत जरूरी है।
1: आपने अभी एक टर्म इस्तेमाल किया कि मेंटल लेवल पे भी चीजें सही होती है, महत्वाकांक्षा बताया, किस तरह की लोगों को महत्वाकांक्षाएं रहती है, क्यों थोड़ा सा स्ट्रेस में आजकल लोग नजर आते हैं?
0: देखिए, सबके ऊपर कंपटीशन का दबाव, प्रमोशन का दबाव, और हो जाए अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, तो लाइक्स बढ़ जाएं,
1: लाइक्स
0: चेक कर रहे हैं, रात रात में चेक कर रहे हैं, गॉगल्स लगा के देख रहे हैं, पूरा अपने लाइफ को अपने बिल्कुल एक सीमित कर लिया है, कमरे के अंदर बंद कर लिया, खुली हवा में आप जाते नहीं, क्रिकेट मैच खेलते नहीं, कुछ करते नहीं। क्रिकेट भी आजकल मैं देख रहा हूँ लोग मोबाइल भी खेलते हैं, अब उससे कितनी एक्सरसाइज हो रही है तो आप जानिए, है ना। तो एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती है, पसीने तो आपके निकल नहीं सकते,
1: बेशक
0: मेंटली परेशान हो सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए आपको निकलना भी पड़ेगा, खुली हवा में लेना पड़ेगा, खुली हवा, लाख रुपए की दवा, ये सब बातें जो होती थी तो उसके पीछे एक तर्क था। अब ये दिक्कतें बढ़ रही हैं इसीलिए क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए हैं। अब नेचर से पास जुड़ने के लिए

0: ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इसलिए जब आप जुड़ेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और वही स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है।
1: आपने कहा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। योगा में ऐसा क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हम मेंटल लेवल पे भी खुद को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं, क्या चीजें ऐसी होती हैं?
0: देखिए, उसमें कुछ ध्यान की मुद्राएं भी आपको बताई जाती हैं। फिर जब ध्यान की मुद्रा आप करते हैं तो बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, रिलैक्स होगी पूरी बॉडी। हमेशा जो दौड़ भाग की होती है ना एक स्थिति, तो अब जैसे आप जिम चले जाएं तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मेंटल आपको वहाँ पीस नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको योग करना ही पड़ेगा, प्राणायाम उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो ये चीजें जब जुड़ती है तो मेंटल आदमी मेंटल रूप से बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, अलग से लगता है। आप किसी दिन बैठ के अगर आधे घंटे ध्यान करें एक बंद कमरे में, या खुली हवा में चले जाएं किसी पेड़ के नीचे हल्की सी धूप में बैठ के करें, तो आपको अलग सा लगेगा कि हाँ कुछ नई ऊर्जा मिली है, अपनी ही ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि आपने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा समय दिया है। अब लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता एक बात कि डिग्रियां बढ़ती जा रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज आते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खुद को मॉडर्न बताने लग गए हैं और जानते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, उसके बावजूद क्यों लोग नहीं उठा पा रहे कदम, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। आखिर क्या माइंडसेट बन गया है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम समझदार भी हैं, और आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी सारी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध भी कराया जा रहा है आपके अपने शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जान के भी चीजों को नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसके पीछे?
0: देखिए, इसकी एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षित। जो आपने कहा डिग्रियां बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में अंतर यही है कि आप उसके बेसिक चीज को समझें, क्या चीज हमारे लिए जरूरत है। आप तो जानते हैं कि फल खाना बहुत अच्छा है, एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ये नारा बड़ा पढ़ा होगा आपने
1: जी,
0: पर क्या फॉलो हो पा रहा है, कैसा कर पा रहे हैं? हर रात में 8 बजे सो जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, 7 घंटे सोएंगे तो मन फ्रेश रहेगा। सिविल सर्विस वालों को कहा जाता है कि आप 14 घंटा पढ़ें, 4 घंटा घूमें, इतने देर सोएं, क्या हो पा रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन की दौड़ में हैं, आप बार बार सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी घट गई है। तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को हम नया कह रहे हैं वो पुरानी ही चीज़ें हैं अपनी, उनको वापस लाना है। अब सिर्फ नया से आप पाश्चात्य वाला संस्कृत वाली बातें आ रही हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो साइकिलिंग से थी वो भी खत्म हो गई। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आपको दूर जाना है तो आप साइकिल चला के जाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए या तो साइकिल चला के स्वस्थ हो जाएं, और या तो फिर योगा करके, या तो कुछ और स्विमिंग करके, कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए एक मानक तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आपको पसंद हो। बाकी तो जब कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक प्रशिक्षक है, वो आपको बताएंगे कि ये वाला योग, ये वाली मुद्रा आपके लिए ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जरूरत है कि प्रशिक्षित लोगों से सीखा जाए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए।
1: तो आपने कहा कि एक जो चीज बढ़ाने की बात की, उससे मुझे गांधी जी का वो थॉट याद आ गया कि ये कहा गया कि अब तक जो करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक की है कि हाँ, कुछ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप शिक्षित हैं या सिर्फ डिग्री है, ये हमको खुद तय करना होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षित जो हो, तो ये कैसे हम जाने कि कोई एक योगा इंस्ट्रक्टर हमको बेहतर मिले? क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप इसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये चीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जैसे बाकी चीजें होती हैं। तो हम कैसे एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर तलाश करें, क्या उसके मानक होते हैं, कैसे हम पता करें?
0: देखिए, जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रशिक्षित लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक डिग्री ली है, उस पर काम किया है, उनको पूरा ट्रेंड रूप से स्किल्ड है, पूरी तरीके से स्किल्ड है। जब आप किसी मोहल्ले में जाएंगे या ऐसे ही किसी सीख रहे हैं, हो सकता है वो भी अच्छा सिखाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी विभाग के तहत जो लिए जाते हैं उनका एक मानक तय है कि आपको ये डिग्रियां होनी चाहिए, इसके तहत तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा वो मानक पे खरे उतरने पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि जब मानक पे खरे उतरे हैं तभी लिए गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर वहां पे जाएं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो आप ये पता कर लेते हैं इनका एफिलिएशन है कि नहीं है, वहाँ पे सही टीचर हैं कि नहीं है, या आप अच्छा जब आप सीखने भी जाते हैं तो आपको एक हफ्ते में पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। तो आपने वो तो इसके लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा है कि सरकारी सेंटर्स पे जाएं जहाँ प्रशिक्षित लोग ही हैं।
1: तो आपने ये बताया चूंकि सरकार का अपने मानक है, उस मानक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है जो भी योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी पूरी तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि वो प्रशिक्षित हों, स्किल्ड हों, सीखा हो, प्रैक्टिकल किया हो, उसके बाद लिया जाता है। तो ये एक सीधा और आसान तरीका है कि भाई आप आयुष मिशन के तहत जो हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां जाके सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप सीख सकते हैं एक बेसिक जो भी आप योगा जाना चाहते हैं। एंड इसके बाद ये चीजें तो आप घर पे भी खुद से कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, इसको अगर बढ़ावा देना है तो मान लीजिए अभी जो हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो अपने लेवल पे कैसे इस चीज को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ साथ अपनों का भी जैसे कह सकते ना भला करने के लिए।
0: देखिए, पहले तो आप खुद जाने स्टार्ट करें। जब आप सीख के आएंगे आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि बॉडी सुधार आ रहा है, परिवार भी जागरूक होगा, कहेगा अच्छी चीज कुछ करके आए हैं। फिर जो परिवार के और लोग बीमार हैं उनको लेके जाइए, धीरे धीरे बात ये मोहल्ले तक जाएगी। मोहल्ले के बीमार लोग जैसे होता है ना, सब लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कैसे ठीक हुए, अच्छा डॉक्टर बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या खाया जाता है इसमें, कैसे लोग जान जाते हैं कि चीनी नहीं खाना है शुगर में, किसी ने बचपन में तो पढ़ा नहीं था, मोहल्ले में ही बताया, उनको हुआ तो उन्होंने खाया, रसगुल्ला नहीं खाना है, आपने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही जब आप सीख के आएंगे, अच्छे से करेंगे, फिट होने लगेंगे, तो पड़ोसी को भी लेके जाएंगे, भैया आप भी बीमार है, आप भी चलिए, मानवता यही तो है, या आप ठीक हुए दूसरे को ठीक करें, लेकिन आप ही अस्वस्थ हैं तो दूसरे को क्या सलाह दे पाएंगे। इसलिए एक लोग जाएंगे तो धीरे धीरे कतार बनेगी वो।
1: बेशक, यानी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं तो वो अपने नियर बाई सेंटर्स को जो है वो विजिट करें, अब जाए सीखे और खुद पहले उसका लाभ मिले, खुद महसूस करें, फिर जब खुद वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो चीजें स्प्रेड करें लोगों को, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। बेशक, ये बिल्कुल सही है। और एक चीज जो हम और आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि क्या सावधानियों की जरूरत होती है जब हम योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि योगा से फायदा तो होता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं योगा को करने या सीखने के दौरान?
0: देखिए, मोटी मोटा तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि जैसे एक तो आप सुनते होंगे कि बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए
1: जी,
0: सुबह और शाम का दो समय जो लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि सुबह वो ना आदमी का पेट खाली हो जाता है फ्रेश होने के बाद, और शाम को भी इसलिए 6 बजे के लगभग लोग उसका है योगा करने के लिए, क्योंकि दोपहर में आप 1:30 से 2 बजे तक खाना खा लेते हैं 5-4 घंटे बाद में खाली पेट होता है। तो ये बातें जब आप इस तरीके से करते हैं, फॉलो करते हुए, तो आपको कुछ लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, आपने योगा तो सीख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, खाना खाया, भूल गए आप मुद्राएं शुरू कर दी, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी काम को बेहतर तरीके से, किस आसन में, अच्छा किसको क्या बीमारी है, उसको किस योगा की जरूरत है, इसको कौन बताएगा, इसीलिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, वो उपलब्ध हैं, अच्छे हैं, स्किल्ड, इसलिए वहां जाइए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती
1: है। जैसे कि सही कहा आपने कि कोई चीज जब बेहतर होता है तो लोग डिस्कस करते हैं कि हमने ये खाया था तुम भी खाओ, लेकिन यहाँ तो ये कि भाई इंस्ट्रक्टर आपको आपकी बीमारी और आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें बताने वाले, इसीलिए तो वो ट्रेंड है ना, ट्रेनर है। ऑफकोर्स, चूंकि हमने बहुत सारी बातें आपसे की, पहले तो हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपके छात्र जीवन के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में, एंड इसके बाद हमने चूंकि जाना कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पद पे आपका कार्य क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें बताई आपने, आयुष के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन किया, मिशन के बारे में बताया किस तरह से चलाया जा रहा है। तो लास्ट में चूंकि ये सारी बातें हुई हैं और हमारे बहुत काम की है, जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कोई लाइफ मंत्रा बताएं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो उसको जरूर उनको इंस्पिरेशन मिले आपके लाइफ मंत्रा से। आपका कौन सा ऐसा मंत्रा है लाइफ का सबसे बड़ा?
0: देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं इस विषय पे बोलने के लिए आया हूँ, सबसे पहले खाने का टाइमिंग सुधार लें, सब लोग कोशिश करें
1: जी
0: कि दोपहर का खाना 12-1 बजे तक हो जाए, रात का खाना 7:30 से 8:30 के बीच में हो जाए, और कम से कम आधे घंटे का फिजिकल वर्क नेचुरल रूप से जरूर होना चाहिए। नेचुरल रूप से मेरा कहने का मतलब है कि बाहर निकल के जाएं, घर के बाहर टहलें, कुछ नहीं कर सकते तो टहल सकते हैं, टहलें, मान लीजिए किसी कारण से नहीं टहल सकते हैं तो हल्की धूप जो सुबह की हो तो उसमें बैठें, जो प्राणायाम जानते हैं वो करें, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों आपके अगल बगल हो रही हों, आपका मन उदास रहेगा, मन आपका अपनी बीमारी में ही लगेगा, कोई आपसे बात करेगा आपका लगेगा नहीं, इसलिए आप अपने आप को समय दें। लोग आप दुनिया को तो समय दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आप को समय नहीं दे रहे, अपने आप को पहचानिए और अपने आप के लिए क्या जरूरी है उसके लिए काम जरूर करें।
1: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि भाई आपको लग भी रहा है क्योंकि आपके पास कोई मिलने आता नहीं, आपको लगता कोई समय नहीं दे रहा है, एंड ऑफकोर्स आप खुद भी समय दे रहे होते हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे होते हैं और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दे रहे होते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने अपने को ही वक्त देना बंद कर, शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई कई दिन हो जाता है और लोग आसमान की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखते हैं कि आज आसमान कैसा दिख रहा है, आज हवाएं कितनी ज्यादा ठंड है, आज पेड़ किस तरह लहलहा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब हमको ये चीजें देखनी होगी जो कभी हम लोग देखा करते थे, जो कभी देख करके हमारे मन में चीजें जहन में बदल जाया करती थी। बहुत ही शानदार आपसे बातचीत के अंश रहे और अब चूंकि जाने का बिल्कुल वक्त आ गया है, जाने से पहले एक ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है। जिस तरह से अभी ये टॉक शो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये गोंडा वासियों को या इसके जो श्रोतागण है जो सुनते हैं इसको, उनके लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहा होगा उनकी लाइफ में?
0: देखिए, पहले तो इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एक अच्छा सेटअप बनाया है। गोंडा जैसे इसको लोग पहले पिछड़े जिला मानते थे, लेकिन आप इसको अग्रणी ले जाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। छोटी छोटी बातों को हम लोग कैसे गाँव तक पहुँचाएँ, आपकी बातों को लोग दूर दूर तक सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो किसी चीज़ को अच्छे से पहुँचाने का कला जो FM के थ्रू से हो जाएगा वो ऐसे नहीं पहुँच सकती। अपनी बातों को रखने का एक सही प्लेटफॉर्म जो आप लोग देते हैं और सभी लोग को देते हैं, जो और भी विभाग हैं या सरकारी योजनाएं चल रही हैं या क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें भी गांव के दूर दूर दराज तक पहुंचती हैं। जो आप एक पोस्टमैन का वाला भी काम आप लोग को कहा जाए तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा है। तो आप कहिए और अच्छा चले, और आपके श्रोताओं को मैं दोबारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और आप व्यूअर्स को बढ़ाएं, श्रोताओं को बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें करते हैं, तो ये अच्छी चीज है।
1: जी बेशक, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी बातों को कवर किया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आपसे हमने बात की और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सहजता व सरलता के साथ उत्तर दिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि भाई आप भी सुनते रहिए, अभी ट्यून करे रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, और कल फिर मुलाकात होगी अगले बार इसी शो में किसी नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ और जानेंगे और जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज हम हर रोज ऐड करते रहेंगे इसी FM के साथ में मिलकर के। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
15: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
14: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
15: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
14: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
15: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
16: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
17: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल, सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838
18: 2883386।
13: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
19: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
20: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

दुआएं सबकी लगती हैं, पर कहते हैं ना कि खास दुआओं का खास असर दिखता है, और उसी दुआ का असर है कि भाई आज 12th का CBSE बोर्ड का रिजल्ट भी आउट हो गया है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं की CBSE बोर्ड की परीक्षा दी है, और मुझे जहाँ तक पता है कि सभी बच्चों का एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट रहा है। एंड तकरीबन 80% से ऊपर, मतलब लगभग 85% बच्चे जिन्होंने भी सबने एग्जाम दिया, तो उनमें से बच्चे पास हुए हैं, और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे खास बात, जो बच्चे मतलब किन्हीं कारणों से या किसी कह सकते हैं कि थोड़ी कम कोशिश की वजह से उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन सभी को भाई मैं ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री एक मौका और देती है, आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उतार चढ़ाव ज़िंदगी का मतलब कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, और हाँ हम भी जानते हैं कि हमारे मार्क्स कहाँ कम हुए, कैसे कम हुए, तो उन जहाँ भी कमियाँ थी, उन कमियों पे हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ते हुए, और अपनी जो कहते हैं ना कि विल पार को ना खोते हुए आगे काम करेंगे। भाई देखिए, रिज़ल्ट क्या होता है, अच्छा बुरा बेकार सही जो भी है, मुझे ये पता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और इस बार का CBSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आज ही निकला है, और 85.2% सारे बच्चों में से बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से जो लड़कियों की परफॉर्मेंस है वो लड़कों की तुलना में 88.86 है, वहीं अगर लड़कों की तुलना करें तो 82.13% लड़के भी पास हुए हैं। और अगर रिज़ल्ट की ओवरऑल बात करें तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तो देखिए सारी स्ट्रीम्स जो हैं उन सब में अलग अलग जो कहते हैं लोगों का मतलब ओपिनियन है कि भाई इस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, प्रेशर बराबर होता है, बोर्ड्स का प्रेशर एक जैसा ही होता है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज ही यानी कि 13 मई को रिज़ल्ट आउट हुआ है, और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सफल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पिछले साल की से रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब ख़राब रहा है, और फिर से जो लड़कियां हैं उन्होंने ही बाजी मारी है, यानी कि लड़कियों का जो पास प्रतिशत है वो ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की, तो CBSE ने ही इस रिज़ल्ट को डिजी लॉकर पर अपलोड किया है, और 12वीं में कुल अगर बात करूँ तो 15,07,109 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और पिछले साल की अगर बात करूं तो इसका आंकड़ा 3.19% कम हुआ है। और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले बीते साल जो उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या थी वो इससे कम थी, ठीक है। तो मैं आगे बात करते हुए आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष का जो रिज़ल्ट है वो बच्चों को एक माइलस्टोन की तरह लगा, क्योंकि काफ़ी बदलाव भी हुए थे परीक्षाओं में, खास तौर पे 10वीं की परीक्षाओं में तो ज़्यादा ही बदलाव हुए थे। और इस बार ऑनलाइन चेकिंग हुई है, यानी कि जो 12वीं की जो कॉपीज़ हैं वो टीचर्स ने कह सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में चेक किए, तो इस बार ये बदलाव रहा है, और ई मोड में कॉपी चेक करना थोड़ा मुश्किल काम था, पर शिक्षक जहाँ हो वहाँ सब कुछ संभव है। और बिल्कुल जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये जो नई बदलाव हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं, और हमें उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, और बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि आरजुबीना की तरफ से, ज्ञान सिटी 9.6 FM की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, सबने मेहनत की, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन जो खास बात यह है कि आपके ऊपर प्रेशर जो था वो इक्वल था, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते किस बच्चे ने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं अगर कंपार्टमेंट की बात करूं तो कंपार्टमेंट की भी बात अगर की जाए तो बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट भी आई है, और 1,63,000 बच्चों की जो है कंपार्टमेंट आई है, और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं प्रयागराज से हैं, और ये संख्या ये बताती है कि कहीं ना कहीं बच्चों ने थोड़ी सी लापरवाही की है, क्यों की है कहाँ की है तो उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बच्चों ने अच्छा काम किया, जिसने भी किया वो अच्छा काम किया, और ये
आगे भी अच्छा होता ही रहेगा। सो लेट्स एंजॉय द रिजल्ट। और इसके साथ मैं बता दूं, आज है अंताक्षरी और मैं आज आप लोगों से आपके ट्वेल्थ के रिजल्ट की बात करना चाहूंगी। अरे अरे अरे, मार्क्स नहीं पूछूंगी, ये जानूंगी आप लोग कौन सी स्ट्रीम से थे और आप क्या अपनी पसंद की स्ट्रीम से पढ़े हैं या फिर आपको किसी ने ज़बरदस्ती कोई स्ट्रीम पकड़ा दी कि नहीं तुम तो डॉक्टर ही बनेगा, नहीं तुम तो इंजीनियर बनेगा, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम क्या करेगा, तुम तो शादी करके बाहर चला जाएगा, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ज़्यादा। तो ऐसा कुछ तो नहीं था ना, वैसे ऐसा हुआ भी नहीं होगा। हम लोग की जनरेशन अच्छी खासी थी, पढ़ी लिखी, और हमारे पेरेंट्स ने हमें खूब पढ़ाया है। और एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन वाला गाना हो जाना चाहिए और ये स्पेशल सॉन्ग ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जिन्होंने काफ़ी स्ट्रेस के बाद यानी कि स्कूल लाइफ को ओवर करते हुए एक गाना मतलब बच्चों को डेडिकेट करने का मन था, तो वो गाना मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया। सो चलिए, आज अंताक्षरी वाला दिन भी है तो अंताक्षरी खेलने के लिए कौन कौन तैयार है? भाई मैं तो साइंस स्ट्रीम से थी, मैं पहले ही बता देती हूँ, साइंस में भी बायो स्ट्रीम से थी मैं। और जैसे कि मेरे साथ एक अलग सी कहानी घट गई थी, मेरे घर वालों ने मुझे ये बता दिया था कि भाई तुम केमिस्ट्री फिजिक्स डील नहीं कर पाओगी, फिजिक्स स्पेशली। तो मेरे घर वालों ने बोला कि यार मतलब कॉमर्स ले लो। तो मैंने भी घर वालों का सोच के यार कहीं नंबर वंबर कम हो गए साइंस लेने से, चलो कॉमर्स ले लेते हैं। और सबने कहा कॉमर्स में ये है वो है, बैंकिंग है शैंकिंग है ये सब। फिर मन तो कभी भी बिना चित्र वाली किताबें देखने का किया ही नहीं, कॉमर्स लिया, किताबों में बस वही ग्राफ्स ये सब दिख रहे थे, थोड़ी बहुत इमेजेस इसमें पॉलिटिकल साइंस की बुक, सॉरी पॉलिटिकल साइंस बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स की बुक में देखने को मिल जाती थी, पर मन नहीं लगा। 6 महीने पढ़ने के बाद हाथ पैर जोड़े एंड फाइनली पेरेंट्स हमारे कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, दिखते जरूर सकते हैं लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं, एग्री हो गए और उन्होंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बायो ले ले। और मैंने बायो लेने के बाद खुद को बहुत सुकून की सांस दिलाई कि यार सही किया मैंने, आई डिड वेरी वेरी गुड। सो लेट्स इन्जॉय दिस स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर माई स्टूडेंट्स, माई लिसनर्स, माई ऑल द लविंग लिसनर्स जिनके आसपास कोई एक आध बच्चा भी घूम रहा है जो 12वीं का रिजल्ट निकाल के चेहरे पे मुस्कान लेके हाथ में लड्डू लेके खिलाने आ रहा है, उसके लिए

बिल्कुल, शाबाशियों का समय है और भाई देखते देखते रिजल्ट के साथ साथ हम लोग शाम के 6:22:38 के साथ अंताक्षरी की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बताइए कि आप लोग किसकी किसकी टीम से कौन कौन खेलने वाला है। गुड इवनिंग मीनू जी, आप कैसी हैं? स्वागत है आपका, गोंडा से आप भी हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोग के आसपास किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसके कितने प्रतिशत आए? चलिए प्रतिशत नहीं पूछते, रिजल्ट कैसा रहा, अच्छा या खराब? और मैं भी एक हैशटैग चलाना चाहती हूँ कि भाई रिश्तेदार हैं तो भाई रिश्तेदार बन के रहें और हम बस ये पूछें कि रिजल्ट अच्छा रहा है या मतलब कुछ दिक्कत है, और परसेंटेज पूछ के सामने वाले को डिमोरलाइज बिल्कुल भी ना करें। तो फटाफट से टीम ए बी से निवेदन है कि आ जाओ, उड़ जाओ, जाग जाओ और अंताक्षरी खेलने के लिए अपने स्वरों को खोलो।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

बिल्कुल, आरंभ प्रचंड होगा तो रिजल्ट भी अखंड होगा, नो डाउट। एंड देखिए मैंने क्या लाइन बना दी, मतलब शायरी में मुझसे कोई पीछे रह सकता है? नो, नेवर नेवर नको। सो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ इस शायराना सी शाम में, एक अलग सी दुनिया में, करने बहुत सारी बातें। और आप लोग को बता दूँ कि आज है पारा एकादशी का व्रत, और सब कहते हैं ना कि बड़ी खास होती है ये एकादशी। और तो मतलब जैसे मैंने कहा ना कि जनरल नॉलेज आपके पास भरपूर होनी चाहिए, चाहे करने के लिए पंचायत ना हो। जी हाँ, कहते हैं ब्रह्मा पुराण एक किताब मानी गई है, और उसके अनुसार कहते हैं पारा एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्यों के सारे पाप मिट जाते हैं। तो ये बताइए, किसी ने कोई पाप किया है? पता नहीं किया हो, कोई ना कोई पाप तो हम लोगों से हो ही जाता है कभी। मतलब अब आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, हम लोग चलते समय कभी रोड पे इतना ध्यान से नहीं देखते, पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव हमारे पैरों के नीचे से मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें संभव है। फिलहाल मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो व्रत है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, और इसे अचला एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि व्रत को रखने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। मतलब अगर आपने साल भर में एक भी एकादशी नहीं रखी, इसको रखा तो बहुत सारा मतलब आपको फल मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ शुक्रमृद्धि यश कीर्ति इन सब का मतलब कहते हैं ना कि आप सबको फायदा मिलता है इस एकादशी का व्रत रखने से। सो इस साल 13 मई को यानी बुधवार को ये एकादशी मनाई जा रही है, और जैसे कि आपको पता है ज्येष्ठ माह चल रहा है, एंड ज्येष्ठ माह जैसे कि ज्येष्ठ बोलते हैं जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और आप लोग अगर इस व्रत को रखते हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे पाप धुल जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप पे ज़रूर होगी। युधिष्ठिर ने कृष्ण से एक बार पूछा था कि जनार्दन ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के में किस नाम की एकादशी होती है, तो मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर के इस सवाल पे भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो राजा, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे किए हैं जो सबके फायदे के हैं। तो ज्येष्ठ माँ की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसे अपरा एकादशी भी बोलते हैं, और ये बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी होती है। इससे सारे जितने मतलब आपने पाप वगैरह किए होते हैं ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या तक, गौत्र की हत्या या गर्भस्थ बालक को मारने वाली, मतलब ये सारे जितने भी बड़े बड़े पाप हमसे होते हैं, और उससे बचने के लिए हम इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और झूठी गवाही देना, माप तोल में धोखा देना, ये सारी चीज़ें जितने भी मतलब बहुत सारे कूट ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, तो ये सब नरक के निकास के लिए प्राणी के लिए काफ़ी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से आप पाप रहित हो सकते हैं, मतलब एक तरह से आपके ऊपर शील्ड बना देगी, आपको बचा देगी। ठीक है, तो आपको कोशिश करना चाहिए ना कि आप इस व्रत का अगर पालन मतलब इस पालन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस व्रत को लेके, तो मुझे नहीं पता आप लोग रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन फास्टिंग अगर साइंटिफिकली भी देखें तो काफ़ी अच्छी होती है, तो हम फास्टिंग कर सकते हैं। तो फास्टिंग के साथ मुझे यह याद आ रहा है कि आज भाई हम लोग की फास्टिंग के साथ साथ इवनिंग भी हो चुकी है, और इवनिंग में हम लोग की स्पेशल इवनिंग है। और आज मैंने आप लोगों से एक सवाल भी किया कि आपने अपने 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी, क्या अपनी मर्जी से ली थी या अपने पेरेंट्स की मर्जी से। और आज तो भाई दोपहर में जो तूफान आया, तूफान मुझे लगता है कि किसी के रिजल्ट का ही था, जैसे रिजल्ट आया तूफान ने भी आके तहलका मचा दिया कि लो भाई बड़ा बढ़िया धमाकेदार रिजल्ट आया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के साथ आज की शाम की शुरुआत तूफान वाली हो चुकी है, और आंधी ने तो जो जो उड़ाया है क्या कहने। मुझे तो लगता है कि काफ़ी सारे मतलब पेड़ पौधे तो उखड़ गए होंगे, और आप लोग अगर तूफान में बाहर थे तो मुझे पता है कि आप लोग सुरक्षित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर अ कप ऑफ टी मीनू जी, और चाय पीना मुझे पसंद है, स्पेशली आज के मौसम में, आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहले तो आज की जो क्लासिक महफिल है उसकी शुरुआत के पहले कहना चाहूँगी कि नफरत को हम प्यार देते हैं, प्यार पर खुशियां वार देते हैं, बहुत सोच समझकर हमसे पंगा लेना, क्योंकि हम गीतों से दुश्मन के बेकार इरादे मार देते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, हम लोग गाने ऐसे ही गाते हैं कि एक दूसरे को खुश कर दें। और अगर बैठे बैठे हो रहे हैं बोर तो करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके
आरजे वीरा का नाम थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, नहीं नहीं प्रभु का नाम। सो चलिए आज दोनों ही टीमों का देख लेते हैं मुकाबला है। फिलहाल तो टीम ए ही अभी दिख रही है, टीम बी का आगाज होने को है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पिछली बार तो टीम बी ने जो ऐतिहासिक जीत बनाई थी ना, क्या बताऊं, मेरे छक्के छूट गए। तो फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए सब चलता रहेगा। चलिए मौसम के लिए, अच्छे मौसम के लिए एक गाना हो जाना चाहिए। और आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहा है। मई के मंथ में ऐसा मौसम कभी कभी नसीब वालों को ही मिलता है। तो इस बार इस साल 2026 में लोग इस मामले में नसीब वाले हैं, मौसम अच्छा है, ठंडी भी काफ़ी दिनों तक पड़ गई, गर्मी का भी एहसास अभी तक नहीं हुआ। तो नाउ वी आर लकी।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब
1: भाई नए गानों में तो अपनी अपनी मतलब कहते हैं ना वाइब है, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनकी वाइब सिर्फ और सिर्फ ऑन एयर सुनने के बाद ही मज़ा देती है, और वो है पुराने गानों की वाइब। और इस गाने को कभी भी बारिश में आप सुन लेना, मज़ा ही आएगा।

0: भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

ओके वेलकम बैक, मैं आपके साथ वापस हूँ इस इवनिंग वाली वाइब के साथ। और जैसा कि पता है कि मौसम थोड़ा सा दो दिन से गर्म हुआ था, लेकिन गर्म मौसम के आते ही कहते हैं ना कि हमारी जो बारिश है, या कह सकते हैं एक कहते हैं ना मौसम के साथ जो हमारा कांटेक्ट है, जो रिश्ता है, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब जैसे परेशानी होना, तुरंत सेंसर सेंस कर देता है भाई बारिश करने का है। सो इसी बात पे मुझे कुछ याद आ रहा है, मतलब कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, और आप लोग को भी मन करता होगा ना कि मौसम ऐसे बिन मौसम ऐसे आ जाए बारिश, और फिर मन करता है कि एक कप चाय हो, थोड़ा सुकून हो और साथ में कुछ अपने हो। सच्ची ये इससे बेहतर कुछ दुनिया में हो सकता है? एक कप चाय, साथ में कुछ अपने दोस्त, कुछ अपने मतलब वो फैमिली कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपकी मतलब अच्छी सी मतलब कर्टसी हो, जिसके साथ आपकी बढ़िया सी मतलब दोस्ती हो, पक्का वाला रिश्ता हो वो, तो और साथ में थोड़ा सुकून। सुकून मतलब कि हैसल ना हो कि भागना है भागना है भागना है भागना है, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, उससे बेहतर, उससे कीमती कोई मतलब समय का मतलब हो सकता है इम्पोर्टेंट चीज़? नहीं। गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग सबलू जी। तो लड़के और लड़कियों की टीम से दो लोग आ चुके हैं, मीनू जी हमारे साथ, रवि हमारे साथ, अनिल जी हैं, श्रद्धा हैं, सारे लोग हैं। तो चलो सबको मैं कह देती हूँ भाई अंताक्षरी शुरू करने का समय हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं एक बिन मौसम जो बारिश आ चुकी है उसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ क्या, बहुत कुछ कहना है, पर समय जो है ना वो लिमिटेड है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जितना भी बोलूँगी वो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, हम सबको अच्छी वाली फीलिंग दिलाएगा। बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो कहते हैं कि आसमान में अचानक

कुछ शोर सा छा गया। आसमान में अचानक कुछ शोर सा छा गया, बिना बताए ही बादलों का हुजूम आ गया। न सावन की पुकार थी और ना ही असाढ़ की आहट, बस मिट्टी की सेंधी खुशबू का पैगाम आ गया। बेवक्त ही इन बूंदों ने कैसा जादू कर दिया, भीगे पत्तों ने पेड़ों को फिर से तरोताज़ा कर दिया। तपती सड़कों पर पल भर में जैसे चैन मिल गया। गोंडा में धूल भरी खिड़कियों का नया सा रंग मिल को गोंडा की नई धूल भरी खिड़कियों को जैसे नया सा रंग मिल गया। पर रुककर ज़रा उन खेतों का हाल भी पूछो, मिट्टी में दबी उन मेहनत करने वालों से सवाल भी पूछो। हाँ, उनको भी एक मुस्कुराने का मौका मिल गया। ये बारिश उनकी सुनहरी तकदीर बनाने आ गई। किसी के लिए ये चाय और पकौड़े का बहाना था, किसी के लिए घर की छत बचाने का ज़माना था। ये बूंदें कहीं राहत तो कहीं आफत बन गिरती हैं। बिन मौसम की बारिशें बस अपनी मर्जी से फिरती हैं। ऐ बादल, ज़रा वक्त का लिहाज तो किया होता, जहाँ प्यास थी ज़मीन की वहीं बस भिगोया होता। खूबसूरत तो है बहुत तेरा ये बेवक्त आना, काश तूने हर वक्त मुस्कुराना सीख लिया होता, काश तूने हर वक्त हमें मुस्कुराना सीख लिया होता। तो आप लोग बताइए, आपके साथ भी ये वाली फीलिंग आई या फिर नहीं? तो भाई अनिल जी भी आ गए हैं, तो लड़के लड़कियों की टीम एकदम मतलब फुल टू मतलब कहते ना ऑन मूड में आ चुकी है। तो सबसे पहला राउंड आपको मैं इस बार लेटर राउंड ही दूंगी। तो सबसे पहला जो लेटर होगा वो होगा, उस लेटर से आपको गाना है, जिस लेटर से मैं गाना ओवर करूंगी। और इस बार कोई मतलब टाइम की वो नहीं है, पहले राउंड में आप अपने टाइम से कॉल कर सकते हैं। बस ये है कि जो पहले टीम, जिसकी टीम पहले कॉल करेगी उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं गाना सुना देती हूँ, बड़ा प्यारा सा गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना।

रे। आप बताइए इस गाने की टाइटल लाइन क्या है, जो बताएगा उसको उसकी पसंद का गाना सुना दूंगी मैं आज। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए कोई बात नहीं, मत गैस करिए, मैं आपको गाना ही सुना रही हूँ कि ध्यान से सुनिए। हम तुम कितने पास कितने

मस्त है, आपको गाना गाना है और मस्त से गाने के लिए लग रहा है किसी टीम का कॉल भी आ गया है। देखते हैं कौन गाएगा सबसे पहले गाना। और कॉल हो चुका है डिस्कनेक्ट। पहले ही बता देती हूँ कि आपको मस्त से गाना गाना है, तो टीम ए और बी दोनों ही टीम के मेंबर्स मेरे सामने हैं, तो सभी को सबसे पहले इस खूबसूरत सी शाम का इस्तकबाल है, इस खूबसूरत सी शाम की तरफ से वेलकम है। आप सुन रहे हैं शो गोंडा वैसे मसाला आरजे बीना वाला, अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी जो हर मौसम में आपके साथ है, ज्ञान सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो अर्ज़ किया है कि अगर बेवक्त बारिश हो और गोंडा में सब चिलैक्स कर रहे हैं तो क्या होगा। यस, बिल्कुल सही आपने गाना गेस किया है। लेकिन अनिल जी, आपको मस्त से गाना भी सुनाना है। गाना ख़त्म हुआ है,

0: अगर तुम, माँ से गाना है आप लोग को। तो जिसकी भी टीम कॉल करेगी माँ से गाना सुनाएगी, और तब तक के लिए सुन लीजिए गोंडा का हाल क्या रहता है जब बेवक्त बारिश हो जाती है। कहते हैं कि जब दुखरनाथ की चौखट तक ये ठंडी हवाएं आती हैं। अभी नवाव को रोक के रखते हैं क्योंकि कॉल आ गया है, देखते कौन है हमारे साथ।
1: हेलो, हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, क्या हाल है? हमारे यहाँ तो बारिश काफी हुई है, तूफान भी काफी आया है। आपसे जानना चाहते हैं आपके यहाँ कैसा था मौसम?
1: हमारे यहाँ भी इसी तरह का हुआ है, उधर आने के बाद इधर हुआ है।
0: अरे बहुत तेज
1: तूफान आया है।
0: तूफान तो ऐसा था कि मतलब पता नहीं कितने पेड़ गिर गए और पता नहीं कितने बिजली के खंभे। फिलहाल चलिए कोई ऐसी मतलब दुखद घटना तो नहीं हुई, भगवान बस अच्छे से बनाए रखे। तो आपसे जानना चाहती हूँ, माँ से आपको गाना गाना है क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं ये नदी, ये धरती, ये रहना। और
1: तो मैं माँ से सुना देता हूँ आपको गाना।
0: जी
1: मैं

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपकी टीम को मिल जाते हैं 20 points। थैंक यू।
0: थैंक यू।
1: तो भाई लड़कों की टीम ने कॉल पहले कर दिया है, तो अब बारी लड़कियों की है, और लड़कियों को गाना है स से गाना। तो स से सुन रही हो सहेलियों, जल्दी से आ जाओ और आप लोग को स से गाना सुना के अपनी टीम को पॉइंट दे देना है। तो अभी लड़कों की टीम से अनिल जी ने गाना गा दिया है और पॉइंट अपनी टीम को दिला दिया है। अब बारी है हमारे लड़कियों की, देखते हैं क्या गाती हैं। तो मैं कहाँ थी, हाँ हवाओं को बुला लिया था। जब दुखरनाथ की चौखट तक ये ठंडी हवाएं आती हैं, गोंडा की तपती गलियों में राहत की बूंदें छाती हैं, गांधी पार्क की हरियाली अब और निखर सी जाएगी, धूल भरी ये नवाबगंज की सड़कें आईना बन मुस्काएंगी, आईना बन मुस्काएंगी। बात तो सही है, कितनी खूबसूरत व्याख्या की जा रही है। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं श्रद्धा? और मैंने आपका आगाज़ पहले ही किया था और उम्मीद है कि आपने अपना नाम सुना होगा। आपको सुनाना है गाना स से सपेरा।
2: यस मैम। की चोकर सी वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे

0: दिल ले गई तेरी ये बिंदिया, दिल ले गई। थैंक यू मैम।
1: बिल्कुल, और बारिश हुई है तो सर की तो सरकेगी धीरे धीरे। थैंक यू सो मच ये गाना सुनाने के लिए। तेरी चुनरिया दिल ले गई, ई से गाना सुनाना है लड़कों की टीम को, तो लड़कों ई से इमली मत खाओ, गाना सुनाओ। तो चलिए अगले स्टैंजे की ओर चलते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ आगे कि गांधी पार्क की हरियाली अब और निखर सी जाएगी, धूल भरी ये नवाबगंज की सड़कें आईना बन मुस्काएंगी, सरयू के घाटों पर देखो कैसा अद्भुत मंजर है, आसमान में बादल है और नीचे बहता अंबर है, वो छपिया की शांति में बूंदों का शोर सुहाना है, ये बारिश नहीं प्रकृति का गोंडा को एक नज़र आना है, पर टिकरी के जंगलों में जब बूंदें पत्तों से टकराती हैं तो किसान के मन में फसलों की कुछ यादें भी घबराती हैं, गन्ने की उन नई कपोलों को तो ये पानी जीवन देगा, पर अनाज की सूखी कोठरियों को शायद ये नम कर देगा, ये गोंडा की मिट्टी है साहब, यहाँ का हर रंग निराला है, कभी चिलचिलाती धूप यहाँ कभी बारिश का बोलबाला है, चाय की चुस्की अदम गोंडवी की बातें और ये फुहारें, चाय की चुस्की अदम गोंडवी की बातें और ये फुहारें, खूबसूरत कर देती हैं ये बारिशें हमारी गोंडा की दीवारें, हमारे गोंडा की दीवारें। तो गोंडा की दीवारें चमचमा रही हैं बारिश की बूंदों से, थैंक्स कह रही हैं कि भाई अपने को भी नहाने का मौका मिल ही गया फाइनली, गर्मी बढ़ रही थी। तो बढ़ती गर्मी के साथ लड़कों को गाना है इसे गाना, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसे तो गाने ही बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं नहीं गाने वाली, मुझे तो एक प्यारा सा सुहाना सा सुरीला सा गाना याद आ रहा है, मन तो कर रहा है सुना दूं लेकिन अभी आप लोग की बारी है ना, और जब आपकी बारी होती है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करती। हस्त और शेप क्या बात है, क्या नया वर्ड बना देते हैं ना, मतलब हस्त एंड शेप, मतलब क्यों इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स को मिला के बनाते हैं, मतलब हिंदी वाले हिंदी तक ही रहे, इंग्लिश वाले इंग्लिश तक ही रहे, ये इंग्लिश हो जाता है मामला। चलिए देखते हैं इसे गाना सुनाने के लिए लड़कों की टीम से कौन आता है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार
1: जी, अगेन आपका स्वागत है। अनिल जी आपको ई से गाना सुनाना है।
2: ई से,
1: ई से, ई
2: दुनिया में तान के नियत एक नहीं एक रंग बदलती दुनिया में। धन्यवाद।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो रंग बदलती दुनिया में, भाई देखिए इंसान की नीयत ठीक नहीं तो बिल्कुल संभल के चलिए। और इसी के साथ लड़कियों को माँ लेटर फिर से मिल चुका है, तो सोती हुई लड़कियों उठ जाओ और एक कप चाय की प्याली लेकर अपने मैदान पे छा जाओ, क्योंकि गोंडा की पहचान देश की पहचान है और देश की पहचान यानी कि पूरी दुनिया की पहचान है। लड़कियाँ तो हमेशा से आगे होती हैं और अगली आवाज़ सुनने के लिए भी हम लोग एकदम बेताब से हैं। और इसी आवाज़ के साथ मैं आपको बता दूं ये आखिरी गाना होगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड की ओर जाना होगा। हेलो,
3: हेलो मैम, श्रद्धा
1: जिसको देखे बिना दिल रहे आधा। श्रद्धा कौन सा गाना सुनाएंगी आप, माँ से गाना है?
3: सुनाना है
1: जी, माँ से।
3: ओके मैम,

तेरे सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी से मरते हैं। दिल भर नजरें मिला के हमको

क्या बात है, और हम आपकी दीवानगी पे मरते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। और इसी के साथ श्रद्धा, नेक्स्ट राउंड के लिए भी तैयार रहें। और नेक्स्ट राउंड क्या होगा आप लोग सुनिए, तब तक मैं आप लोग को एक गाना सुना देती हूँ। और बहुत अच्छा लड़के लड़कियों की टीम खेल रही है, अभी तक दो कैंडिडेट्स की आवाज़ सुनने को मिली है। आगे भी बहुत सारी आवाज़ों का मतलब कहते हैं ना कारवां होगा, लेकिन कारवां को मैं पहले बता दूँ, नेक्स्ट राउंड जो है वो है आप लोग का गेस्ट राउंड, और इसमें मैं आपको एक म्यूज़िक सुनाऊँगी और आपको गेस्ट करना होगा गाना कौन सा है, और गाने के सिंगर का नाम भी बताना होगा, जैसे कि जो गाना ओरिजिनल है उसको किस सिंगर ने गाया है, उस सिंगर के नाम के साथ गाना पहचानना होगा। तो ये इस बार थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोशिश करेंगे तो हार तो नको नेवर हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा गाना सुना रही हूँ धुरंधर वाला, क्योंकि धुरंधर के सारे गाने सुनने के बाद आप लोग मोस्ट एनर्जेटिक फील करते हो, तो मैं आप लोग की एनर्जी को क्यों ही डाउन करूँ। तो चलिए सुनते हैं धुरंधर फिल्म का ये गाना, जिसने हम सभी को एकदम मतलब कहते हैं ना कि इधर से उधर कर दिया। लेट्स एंजॉय द लेटेस्ट सॉन्ग फ्रॉम धुरंधर, मेरा फेवरेट वाला गाना, जान से गुजरते हैं, बाय शाश्वत सचदेव खान साहब।

0: Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.
1: So, इतने फैंटास्टिक से गाने सुनने के बाद अब सुनने के समय में आपको कुछ और सुनाने का टाइम हो चुका है। जी हाँ, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि म्यूज़िकल ब्रेक के टाइम कॉल्स नहीं लिए जाते हैं, तो चलिए इसी के साथ अब अगले कॉल की बारी है। तो जो आपको गाना प्ले करके सुनाया था वो ऑलरेडी गाना ही था अनिल जी, वो कोई क्लू नहीं था। क्लू जो भी होगा मैं ऑलरेडी आपको बताऊँगी कि अभी आपको क्लू दिया जा रहा है। तो क्लू से पहले एक म्यूज़िकल ब्रेक लेती हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मतलब अभी ये जो सेकेंड राउंड है वो म्यूजिकल ब्रेक के बाद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं गाना आप लोग के लिए। आई होप आप लोग गाने को पहचानेंगे और गाने के सिंगर का नाम भी गेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मिडल जो कहते हैं ना कि टाइम का, यानी कि मिडल टाइम, यानी कि 2000 के आसपास का गाना लूंगी, द ईयर 2000 का। मूवी का नाम नहीं बताऊंगी। अब आप लोग को गेस करना है गाना कौन सा है और उस गाने के सिंगर कौन है। तो ध्यान से सुनिए, आप लोग चैट रूम में कॉल करके या मतलब जैसा भी है आप लोग चैट रूम में भी बता सकते हैं। तो जो भी जैसे भी आप जो सबसे पहले बताएगा आइधर चैट रूम आइधर कॉल, उसकी टीम को पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये कहते हैं कि कौन गेस करता है। तो सबसे पहला म्यूज़िक आप लोग के लिए।

0: चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसने भी सुना होगा गाना इसको 2-3 बार वो तुरंत गैस कर लेगा। तो चलिए बताइए कौन सा गाना है और इस गाने के सिंगर कौन है। थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग गैस कर लेंगे। और कॉल एक आ गया है, आवाज़ सुनते हैं किसकी है और गैस करने वाले कौन है। हेलो
1: हेलो हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: गीता श्रीवास्तव बोल रहे
0: हैं। ओके गीता जी, वेलकम बैक। पहले तो आपकी आवाज़ सुनने को मिली, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। और आपने कॉल किया इसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि आपकी टीम को आपकी ज़रूरत थी। बताइए कौन सा गाना है ये?
1: मैम ये मोहब्बत के फिल्म का गाना है।
0: मुझे क्या पता आप गाना बोले। यस यस यस, वेरी वेरी करेक्ट। यस, इस गाने को गाया किसने?
1: उदित नारायण, मनोहर शेट्टी और ईशान।
0: ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने ना सिर्फ गाना गेस किया, और मुझे लगा कोई गेस भी करेगा तो किसी एक सिंगर का नाम गेस करेगा, लेकिन आपने आपने
1: मैं तीन एक्टर है ना, तो तीनों की अलग अलग
0: वॉइस है। ओह हो हो, क्या बात है, तीनों के लिए अलग अलग एक्टर की अलग अलग वॉइस दी गई है, और अलग अलग वॉइस को हमारी मतलब क्या कहते हैं गीता जी ने गेस भी किया। गीता जी वैसे आपका मैंने टैलेंट फेसबुक पे देखा था, बहुत आप टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत आप लग रही थी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बात और है कि आपने मिठाई नहीं खिलाई। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी शादी को कितने 28 साल पूरे हो गए हैं?
1: 27 28 28।
0: ओके वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। इसी के साथ लड़कियों की टीम ने भाई गेस कर लिया है, ये रेयर सा गाना, और इसी के साथ लड़कियों की टीम को मिल जाते हैं पॉइंट 90। तो अगले म्यूजिक के लिए आप लोग रेडी हो जाए, लड़कों की टीम थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, नहीं तो आपकी टीम को मतलब परेशानी हो सकती है। और मैं सुनाने जा रही हूँ थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि लेटेस्ट वाला गाना सुनाऊंगी, लेटेस्ट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं लूँगी मैं, तीनों जोन के गाने लूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, एक हमारा 90s वाला, एक हमारा 2000 वाला, और एक इधर वाला 2015 के बाद वाले गाने। तो चलिए देखते हैं कौन गेस कर पाता है अगला गाना, थोड़ा सा नया है। और मुझे जहाँ तक पता है इसके गाने सबने सुन रखे हैं, बहुत नए गाने हैं इसके। तो इस गाने का इंस्ट्रूमेंटल भी मुझे मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, और आई होप इसके सिंगर को तो गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर क्या करें, कोशिश अगर करी जाए तो हमारे जो कहते हैं ना सुनने की क्षमता हमारे आंसर को हमारे तक पहुंचा देती है। तो चलिए सुनते हैं इस म्यूज़िक को और देखते हैं कौन गेस करता है।
2: wow.

आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप लोग चाहें तो गेस कर सकते हैं। कौन गेस कर रहा है भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी प्लीज़ प्लीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। कौन बता रहा है भाई, गीता जी, हाँ थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए एक दूसरे को अगर सपोर्ट करें तो सब लोग अच्छा कर लेंगे। और देखिए लड़कियों की टीम इस मामले में काफ़ी आगे हमेशा रहती है और इस बार भी आगे। और अभी जो है आशु जी ने बिल्कुल सही गेस किया है, गाना है राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। और भूमि त्रिवेदी की आवाज़ है एंड अगेन लड़कियों की टीम को मिल जाते हैं 50 पॉइंट्स। और इसी के साथ मैं दे देती हूँ लड़कियों की टीम को पॉइंट और इसी के साथ लड़कियों की टीम के हो जाते हैं 140 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स फॉर वन गेस। तो चलिए अगले इंस्ट्रूमेंट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए मैं आपको 1960s की ओर ले जाती हूँ और पुराने गानों में जिसकी जो पकड़ हो, मतलब मैं चाहती हूँ कि सबकी पकड़ सब में मतलब हो, तो उसी के हिसाब से मैं गानों को ढूंढ के लाऊं। और आई होप ये जो मतलब गाना है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर गेस कौन करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। तो अगेन आपको गाने को और गाने के साथ गाने को के गाने वाले सिंगर का नाम भी गेस करना है। सो लेट्स लिसन अनदर म्यूजिक फ्रॉम 1990s।

0: बताइए कौन सा गाना है। बहुत अच्छा सा गाना है, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। और देखिए कॉल आ गया है किसी का, आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो,
1: शुभ संध्या बीना जी।
0: शुभ संध्या, और देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं।
1: मैम, चोरी चोरी मूवी का ये गाना है, राज कपूर साहब और नरगिस जी इस गाने में है। और गाना है वो क्या नाम है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मन्नाडे जी ने गाया है ये।
0: श्योर?
1: 100% श्योर है।
0: हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने, मन्ना डी जी के साथ लता जी की आवाज भी है। थैंक यू सो मच, और आपने गेस किया, इसी के साथ आपकी टीम को मिल जाते हैं फुल पॉइंट्स। तो अनूप जी ने भाई आके अपनी टीम को बचा लिया, और फाइनली गाना गेस, गाना तो बहुत सारे लोगों ने गेस किया लेकिन कॉल उससे पहले आ गया। वेरी गुड आशु जी, और लड़कियों में सबसे पहले, मतलब लड़कियां इस राउंड के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल मुझे लग रही हैं। चलिए अगले गाने को देखते हैं कौन गेस कर पाता है। मैं थोड़ा टफ टास्क लेती हूँ, थोड़ा पुराना और पुराना गाना निकालती हूँ, और देखते हैं कौन गेस कर पाता है। आज आप लोग की जो कहते हैं ना कि शक्ति, मतलब मैं कहूँगी पुराने गानों की कैपेसिटी को मैं देखना चाहती हूँ कि किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। ऐसे गाना बहुत ही अच्छा है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो। आगे मुझे थोड़ी लिरिक्स भूल गई मतलब मेरी ही हालत ख़राब है, क्या बताऊँ। मतलब सच्ची मज़ा बहुत आ रहा है, ये वाला राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत मज़े से गेस करते हैं, एंड रियली आई लव इट लव इट लव इट लव इट लव इट। तो चलिए देखते हैं कौन क्या क्या गेस करता है, और अगली बार वाले गानों के लिए मुझे पता है कि आप लोग की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी आप लोग की कम पड़ सकती है। तो चलिए एनर्जी बचा के रखिए, नहीं तो आगे मुसीबतें हो सकती हैं। सुनते हैं अगला म्यूज़िक।

आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा और देखते हैं किसका आंसर आता है। काफ़ी आसान सा है ये और जिसने भी इस गाने को ध्यान से सुना होगा उसके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा। और ये भी मैंने पुराना ही लिया, इसके बाद मैं इधर का गाना लूँगी। अब देखते हैं आवाज़ तो आप लोग आसानी से पहचान देंगे। अगर आपने गाना पहचान लिया तो आवाज़ पहचानने में तो एक भी मिनट नहीं लगने वाला, लेकिन आपको गाना सबसे पहले पहचानना होगा। अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं जब भी आपको नेटवर्क मिले आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धर्मेंद्र जी गुड इवनिंग, आपने बिल्कुल सही गेस किया था इसके पहले वाला गाना और आप ही की टीम को पॉइंट भी मिला है। आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो। अरे यार मैं गाना गा क्यों नहीं पा रही हूँ, चलिए मैं गा ही लेती हूँ इसी के साथ। गेस किया आप लोगों ने इसके पहले का म्यूज़िक या नहीं, चलिए मैं सुना देती हूँ ये गाना आप लोग आंसर्स के साथ। तब तक आप लोग मुझे सुनिए मैं कैसे गाती हूँ ये गाना। गाना ला ला ला ला ला ला आ जा सनम, स्केल मेरा हिल गया लग रहा है।

देखिए मैंने कोशिश की फाइनली। इसके पहले का म्यूजिक आप लोग गेस नहीं कर पाए, अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, ना चैट रूम में ना कॉल, क्या बात है यार, बड़ा आसान सा था। एक बार चलिए फिर से सुनाती हूँ, दोबारा सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हैंड रेस करिए चैट रूम में, मैं तब तक गाना ही गाती हूँ। लेकिन मुझे इसका म्यूजिक ही नहीं याद आ रहा, कौन है भाई कौन, फटाफट से आंसर दीजिए कॉल करके, आप लोग का आंसर ही नहीं आ रहा। चलिए एक बार फिर से मैं म्यूजिक आप लोग को सुना देती हूँ, जिससे आप लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो, वहीं से गाना, वहीं म्यूजिक फिर से सुनिए और पहचानिए कौन सा गाना था।

0: तो अभी तक कोई भी गेस नहीं कर पाया है। अनिल जी आपने कॉल भी किया लेकिन आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी रिसीव करने चल रहे हैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तू मेरी नज़र कौन सा गाना है, आप सिंगर के साथ बताएं फिर मैं बताती हूँ गाना सही है या नहीं। वैसे आप सभी लोग गेस कर सकते हैं, गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत बार सुनाया है मैंने आप लोग को, और इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू ऑल। और अगर आप लोग हारी मानते हैं तो मैं बता देती हूँ गाना कौन सा है, क्योंकि लड़कियों की टीम से तो मुझे आंसर मिल ही जाना चाहिए था, क्योंकि आंसर थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप लोग का जो कहते हैं ना कि इंतज़ार है वो बरकरार है, और उम्मीद है कि आप लोग फटाफट से आंसर्स दे देंगे। और इसी के साथ चलिए, इंतज़ार करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे नहीं लगता कोई इस गाने का आंसर दे पाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ गाना कौन सा है, म्यूज़िक के साथ ही बताती हूँ जिससे आप लोग गेस कर ले, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आरजेबीना ने तो हमें बता दिया और ऐसा तो नहीं था, हमारे साथ बेमानी हो गई है। गुड इवनिंग लिखते हैं नागेश्वर जी कि सुना है कि लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल जाती हैं, सुना नहीं ऐसा होता है, आप भी जा सकते हैं जाना चाहें तो। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी। हेलो जी, जी अगेन गुड इवनिंग, कौन सा गाना है बताइए।
1: तुम्हारी नजर खपा हो गई,
0: ना गलत आंसर, रॉन्ग।
1: लेकिन इसका जो बीट बजा है ना मेरे को ही
0: अभी मैं बताऊंगी ना तो आप तुरंत कहें अरे ये तो गाना मुझे याद था, मुझे पता आप गेस कर लेंगे बताने के बाद। बस उसी दौर का गाना है ये। मैं हिंट अगर दूं आपको इस गाने की तो मैं एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताती हूँ।
1: जी जी बताएं।
0: फिल्म बता दे तो 1968 की फिल्म है ये। उन्नीस सौ अड़सठ की फिल्म है ये।

0: तक।
1: जी हाँ बिल्कुल, यही गाना है और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने। बहुत ही प्यारा गाना है, उस दौर में सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला, सुना जाने वाला गाना था। और इसी के साथ ये आंसर मैंने दिया है और आप लोग आंसर नहीं दे पाए। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त, 1968 की बहुत फेमस हुई फिल्म थी और लोगों को मतलब दीवाना बना के रखा था। इसमें आपके प्यारे धर्मेंद्र जी थे और आपकी बहुत प्यारी एक्ट्रेस थी, नाम तो नहीं बताऊँगी मैं, क्योंकि अगर मैं नाम बता दूँगी तो आप लोग कहेंगे कि आरजे बीना जो है ना एक्टर एक्ट्रेस का नाम बता के टाइम वेस्ट कर रही है। तो फिलहाल दो मतलब गुलाब थे इसमें और एक अनार था। फिलहाल आंसर देने के बाद अब नए म्यूज़िक की ओर चलते हैं। अगला म्यूज़िक जो है आई होप आप लोग गेस कर लेंगे, थोड़ा सा नया है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिडिल का ही है। आई होप आप लोग गेस कर पाएंगे। लेट्स लिसन।

0: तो चलिए बताइए ये कौन सा गाना है, जल्दी से गेस करिए और अपनी टीम को पॉइंट दिलाइए। देखिए आंसर क्वेश्चन हर बार इजी इजी नहीं मिलेंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे तभी तो गेम का मज़ा आएगा। रिंकू जैन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और आई होप इस गाने को आप लोग गेस कर पाएंगे। और एक कॉल भी आ चुका है, उम्मीद करती हूँ कि आंसर के साथ कॉल आया होगा। हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड इवनिंग आपका।
1: हेलो
0: गुड इवनिंग।
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो।
0: सो हमारे लिसनर को हमारी आवाज़ नहीं मिल रही थी और देखते हैं कौन आंसर देता है। रिंकू जैन जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गीता जी ने शर्मिला टैगोर का नाम भी बता दिया। और भाई देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से। नागेश्वर जी अगर आप जाना चाहें तो आप कहीं भी जा सकते हैं, वो आपका ससुराल हो या किसी और का ये डिपेंड करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट से सोचिए ना। आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हाँ इतना भी नहीं। चलिए मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर देती हूँ, फिल्म बता देती हूँ। फिल्म बता दूँगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर एक सेकेंड तक आप लोग आंसर नहीं दे पाते तो मैं आपको फिल्म बतानी पड़ेगी। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था। म्यूज़िक अगर आपने सुना होगा, आप लोग ध्यान से म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। और इसके पहले वाला तो बहुत आसान था मुझे जहाँ तक पता है कि हाँ देखिए अब पूरा इंस्ट्रूमेंट ही बज जाएगा तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा ना, आपको थोड़ा गेस तो करना ही पड़ेगा। और जो चलो सजना गाना है ये एक अपने टाइम का बहुत ज़्यादा फेमस गाना हुआ करता था। और ये फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। और इसमें ख़ास तौर पर मुझे धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छी अदाकारी, बहुत ही पोलाइट, क्या कहने। तो चलिए आप लोग एक बार फिर से म्यूज़िक सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो मैं अगला म्यूज़िक सुनाऊँ और आप लोग के लिए फिर से मैं ही गाना गेस कर दूँ।

और मुझे उम्मीद लग रही है कि इस गाने को भी आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ही गेस कर देती हूँ गाना। आप लोग ध्यान से सुनिए, म्यूजिक के साथ ही गेस करती हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे ये गाना तो इसके साथ जा ही नहीं रहा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, सोनाली केबल का गाना है, अमजद नदीम, और गाना है

इस गाने को आप लोग गेस कर चुके होंगे, फिल्म थी सोनाली केबल। और चलिए मैं थोड़ा सा आसान सा गाना देती हूँ और आई होप इस गाने को तो आप लोग गेस कर ही लेंगे। काफ़ी आसान गाना है, ना नया ना पुराना, मिडल ही है लेकिन गेस आप कर सकते हैं।

0: चलिए देखते हैं, लगता है किसी ने गेस कर लिया। हेलो
1: जी मैम, वो है मैं रंग सर्वतों का।
0: बिल्कुल सही आंसर। और
1: अरिजीत सिंह।
0: किसकी आवाज है इसमें?
1: अरिजीत सिंह की मैम।
0: आर यू श्योर?
1: जी मैम, मेरे ख्याल से तो यही है।
0: और मुझे जहाँ तक पता है बिल्कुल सही है। और ये गाना ना सिर्फ मेरा फेवरेट है बल्कि बहुत सारे लिसनर्स का फेवरेट भी है, क्योंकि
1: मेरा भी मैम फेवरेट है।
0: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
1: सुना दीजिएगा मैम।
0: ऑफ कोर्स सुना दूंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस गाने को वैसे अरिजीत ने गाया तो है, लेकिन ओरिजिनली इस गाने को आतिफ असलम ने गाया। ठीक है, मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि अरिजीत ने भी इस गाने को गाया हुआ है, तो इसलिए कोई बात नहीं। तो नंबर आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और गेस करने के लिए। थैंक यू। तो भाई लड़कियों की टीम आज दमदार दिख रही है इस वाले राउंड में, क्या बात है भाई। और इसी के साथ इस राउंड को मैं करती हूँ अब समाप्त, और इसके बाद हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और लड़कों की टीम को मिल जाते हैं पॉइंट्स। कितने 140 पॉइंट्स है लड़कों के, और लड़कियों की टीम के इस समय हैं 190 पॉइंट्स। क्या बात है, 190 पॉइंट्स है लड़कों की टीम के और लड़कियों की टीम के। तो बहुत अच्छी सी, मतलब मुझे लगता है नहीं, लड़कियों की टीम के और ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं क्या? नहीं, लड़कियों की टीम के 190 पॉइंट्स हैं और लड़कों की टीम के हाँ जो 90 पॉइंट्स हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा ये कारवां। और इसी के साथ मैं लेती हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद मैं 1 मिनट राउंड शुरू कर दूंगी। 1 मिनट राउंड में आपको एक मिनट में मैक्सिमम गाने गाने होंगे। तो लड़के और लड़कियों की टीम को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी अपनी कमर जो है कस लें। 1 मिनट में मैं कोई भी राउंड, मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, गाना आप कोई भी गाइएगा, लेकिन 1 मिनट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाने हैं। तो आई होप आप लोग जो रूल है उसको समझ चुके हैं, और इसी रूल को समझते हुए अब जो मैं आप लोग को गाना सुनाने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए इस म्यूजिकल ब्रेक को। और आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि मतलब मैं 2 मिनट दो बार मौका दूंगी, और अगर लगता है कि टाई हो रहा है तो एक मौका और दूंगी, और इसी के साथ ये गेम ओवर हो जाएगी। तो 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा गाने सोचने का मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ। तब तक एक म्यूजिकल ब्रेक हम लोग एंजॉय करते हैं। सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 93.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, आप कुछ बेहतर सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली आरजेबीना के साथ शो सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला, आरजेबीना वाला अपने फेवरेट फ्रिक्वेंसी 93.6 FM पर।

0: मुलाकात हो। तो एक मिनट वाले राउंड के लिए आप लोग रेडी हैं तो फटाफट से अपना नंबर यानी कि 6793-3164-29 डायल कर लीजिए। और एक पहला कॉल आ चुका है, चलिए देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो
1: मैम
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: अरमान
0: जी।
1: अरमान,
0: अरमान क्या बात है, अरमान मलिक लग रहे हैं आप तो। ये बताइए कहाँ से सुन रहे हैं?
1: पटेल नगर मलियाना।
0: ओके, तो आप सुन रहे हैं तब से शो?
1: जी।
0: तो ये बताइए एक मिनट में आप कितने गाने गा सकते हैं?
1: अब ये तो बता नहीं सकते,
0: बस अपनी टीम को जिता सकते हैं, क्या कहते हैं?
1: हाँ,
0: तो चलिए हम आपके लिए टाइमर शुरू करते हैं और अगर आप रेडी हैं तो बताइए, हम स्टार्ट करते हैं।
1: जैसे किस तरह गाना है
0: आपको? जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताती हूँ कि एक मिनट का टाइम शुरू हो गया तो आपको मुखड़ा भी नहीं गाना है, मतलब गाना मुझे पता चल जाए ऐसे गाना है, जैसे कि दिल दे दिया है तन्हाई तेरी मेरी तन्हाई, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, खोया खोया चांद चांद छुपा, ऐसे करके मतलब कई सारे गाने आप गाते जाइए, लेकिन ज्यादा गाने आपको गाने हैं इसी हिसाब से आपको फटाफट से गाना है। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया, आप जितने गाने गा सकते हैं एक मिनट में गा के दिखाइए। आपका समय शुरू होता है अब।
1: दिल ने ये कहा, मस्ताना मौसम है रंगीन सारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, गोरी हो कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मैं रंग शरबतों का और तू मीठे घाट का पानी, ये रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग पे इतना घुमा न कर कुछ पल में ये रंग ढल जाएगा।
0: स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और इसी के साथ आपने कुल 6 गाने गाए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अरमान जी बहुत अच्छी कोशिश थी और आपने गाना थोड़ा ज़्यादा गा दिया, अगर गाने का थोड़ा सा पार्ट गाते तो आप 15-20 गाने गा लेते, लेकिन चलिए पहली बार गाया इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अरमान जी, थैंक यू सो मच अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। सो लड़कों की टीम को मौका मिल चुका है और लड़कों की टीम ने गाने भी गा दिए और इसी के साथ इस बार एक गाना गाने के मैं 20 पॉइंट्स दे दी, तो 6 गाने गाए हैं 6-2-12 और 120 पॉइंट्स के साथ लड़कों की टीम अब पहुंच जाती है, देखते हैं कहाँ पहुंचती है। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, तो बस आप लोग भी मौके के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब बारी है अगले कॉलर की, देखते हैं कौन कॉल करता है। देखिए इस बार मैं लड़के और लड़कियों को टाइम नहीं दूंगी, जो पहले कॉल करेगा उसी की टीम को पॉइंट मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला कॉल किसका है, ये तो आवाज़ ही सुन के पता चलेगा। हेलो,
2: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, ओके आशु जी आ गई हैं, क्या हाल है आशु जी?
2: तो मतलब बहुत मुश्किल से कॉल मिला है मैम, बहुत बाहर है, थोड़ा लग जाए बीच में कट ना जाए वक्त।
0: इसी के साथ मतलब आज आप मतलब कटघरे में आके फंस गई हैं। तो चलिए लड़कों की टीम के 260 पॉइंट जीतने के लिए आपको बनाने हैं 270 पॉइंट, चलिए देखते हैं आप गाने गा पाती हैं या नहीं। आपका एक मिनट शुरू कर दें, आपकी मर्जी से, आप कहें तो स्टार्ट करें।
2: बिल्कुल मैम,
0: आपका समय शुरू होता है अब।
2: बिल्कुल मैम, दीवाना दिल सजना दिल विल प्यार वाल दिल है कि मानता नहीं, दिल वालों का दिल का करार लूट, शीशा हो या दिल हो ये दिल तुम बिन कहे, दिल तो है दिल दिल का इतवार को ने दिशा में लेके चला रे, अखियों के झरोखों से तुमने पुकारा और हम चले आए, आज कल याद और रहे, आयु मेरी जिंदगी में तुम राम तेरी गंगा में, योग पत्थर के सनम तुझे हम में, बरसात में जब आएगा सावन झुमका गिरा रे बरेली के वक्त, मैं ना भूलूंगी तेरा साथ है तो हमने सनम।

0: ओ खत लिखा जिंदगी प्यारी कहती है, तुमसे बढ़कर दुनिया में न जाने की मोहब्बत। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे जब हम जवान होंगे, ताल से ताल मिला मैं तेरी दुश्मन, जीवन की डोर से कोयल से तेरी बोली
1: स्टॉप। आपने कुल 29 गाने गाए हैं, क्या आपको भरोसा था?
0: मैम और गाना था लेकिन मैम
1: 29 गाने, मैं तो सुन सोच रही थी अरे टाइम कम पड़ रहा है यार, गाने बड़े जा रहे हैं। और मतलब 29 गाने गाना कोई मतलब मैं कहूँगी आसान बात नहीं है। और इसी के साथ आपकी टीम के 580 पॉइंट हो जाते हैं सिर्फ आपके गाने से। और क्या कहने, और इतनी मतलब धमाकेदार जीत के बारे में मैंने नहीं सोचा था। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टीम है, बहुत अच्छा आपने खेला। और सबसे स्पेशल और बड़ा वाला थैंक्स आशु जी आपको, आपकी वजह से आपकी टीम के 770 पॉइंट्स है। क्या कहने, थैंक यू सो मच। सो लड़कियों की टीम आज बनी विजेता, पिछली बार लड़कों ने तोड़े थे रिकॉर्ड्स और इस बार लड़कियों ने तोड़े हैं रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे खासे। हाँ भाई देखिए, मौके की बात है, कौन पहले कॉल कर देता ये भी हो जाता है। और इस बार अरमान जी ने कॉल करके ये प्रूफ कर दिया कि लड़कों में बिल्कुल भी एनर्जी कम नहीं है, और सारे लड़के मतलब एटलीस्ट मैदान में आने का तो जज्बा रखते हैं, और इसी जज्बे को गर्जबीना करती है सलाम। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए, लड़कियों ने आज बहुत धमाकेदार एंट्री की है। और इसी के साथ एक धमाकेदार सेलिब्रेशन वाला गाना भी हो जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगली बार जो लड़के हैं उनको कम से कम 800 का टारगेट तो पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई जीतने का कोई मज़ा नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप जीत रहे हैं तो आप रिकॉर्ड्स भी तोड़िए, ठीक है? तो आज की पार्टी हमारे लड़कियों के लिए है, चलिए एंजॉय करते हैं लड़कियों के लिए ये स्पेशल वाली पार्टी। आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसे मसाला आरजेबीना वाला, आरजेबीना के साथ अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पे।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास और बहुत प्यारी प्यारी बात जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए ना, और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, ये महफिल आपके, ये गीत आपके, और ये आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। सो क्या हाल चाल है और क्या रहा आज के अंताक्षरी का रिजल्ट, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम नागेश्वर धाकड़, अनुष्का श्रावस्ती से, अनिल वर्मा सैदापुर से, द ग्रेट सेन साहब राजस्थान से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी, आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम रिंकू जैन एंड सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजेश मीना जी मोहित मालवे नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत है और एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली पहली पहली पहली पहली फरमाइश। और धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, आपका क्या हाल चाल है, हाँ चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं पहला पहला पहला गाना। सो हमारे पास में पहली फरमाइश है अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, ये दिल वालों की बस्ती है, और ऑब्वियसली ये दिल वालों की ही बस्ती है, ये गीत आपके नाम से प्रोग्राम, ये फरमाइशी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ दिल वालों का है, और सच में ये दिल वालों की बस्ती है, तो हम सभी के लिए इंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना अनुष्का की फरमाइश में, जो कि है श्रावस्ती से। और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना, रेडियो ग्यारह स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

बस्ती है और चाहत का इलाका है। ऑब्वियसली दोस्तों, चाहत का इलाका तो सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर शाम के 7:30 पार हो चुके हैं, अगर 7:45 हो चुका है और आप शाम में सुकून ढूंढ रहे हैं, दिल वालों की बस्ती ढूंढ रहे हैं और चाहत का इलाका ढूंढ रहे हैं, सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आ जाइए आपके अपने ज्ञान स्थल 89.6 FM के फरमाइशी प्रोग्राम में आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में, और हमारे दिल वाले और चाहत से भरे लिसनर्स के साथ में जुड़ने के लिए देरी ही क्या है दोस्तों। बस आना है और अपनी फरमाइशी गीतों को यहाँ पे चैट बॉक्स में साझा करना है और अपने जज्बात को भी आप दिल खोल के साझा कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई आपके दिल की सुनेगा नहीं ना, सो आपके दिल के दरवाजे को कोई बंद भी नहीं करेगा। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, अनिल वर्मा जी की, सैदापुर से। उनको सुनना है गाना जो तुमको हो पसंद, वही बात लिखूंगा, शायद यही वाला है गाना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुकेश जी की शायद आवाज में, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक हिट नगमा। लेकिन उसके पहले अनिल वर्मा जी ने सैदापुर से कहा है कि बिन मौसम बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिन रात नहीं होती। फिर से सुनिएगा, बिन मौसम बरसात नहीं होती और सूरज डूबे बिन रात नहीं होती, क्या करें कुछ ऐसी हालत है मेरे दिल की, कोई है जिसे देखे बिन मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। आए हाय। और कुछ लोग ऐसे हैं मेरी जिंदगी में दोस्तों कि जिनको देख लेती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो ही नहीं सकती। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। सो एंजॉय कर लेते हैं अनिल वर्मा जी की फरमाइश, स्टे ट्यून्ड। आज भी मुझे किसी ने ज्यादा बोलने वाली दवाई खिला के यहाँ

जी हाँ दोस्तों, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुकेश जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक हिट नगमा सफर मूवी का। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि ये शो तो है फरमाइशों के सिलसिले को बस आगे बढ़ाते रहने का, यूं ही चलते रहने का, आपके साथ चलते रहने का। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सीन साहब की, और उनको सुनना है गाना आ कहीं दूर चले जाएं हम। सो लावारिस मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं हमारे द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सीन साहब की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। सो गोंडा में आज किसने आंधी तूफान का मजा लिया है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह।

चले जाएं हम, हमने एंजॉय किया लावारिस मूवी का ये गाना द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। इतना खूबसूरत नगमा, इतना प्यारा गाना है, इस एकदम से आज के माहौल पे फिट बैठने वाला, जश्ने वाला गाना हमने एंजॉय किया है द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। इस गाने को सुनने के बाद मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि दिलों की बात है इसे दिल में ही रहने दो, दिलों की बात है इसे दिल में ही रहने दो, मोहब्बत का दरिया है बस इसे बहने दो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और एमपी से हमारे जग्गू दादा को सुनना है गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी। सो कवारियों का दिल मचले। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नया दौर मूवी का जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रमोद श्रीवास्तव, स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया है हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, मींस हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नया दौर मूवी का। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले जग्गू दादा जी बस यही इतना कहना चाहूंगी कि आपके इस फरमाइशी गीत ने तो हमारी पुरानी यादों को एकदम से तरोताजा कर दिया है। नजरें मिली और दिल मचलने लगे, आपकी पसंद के दीप हर तरफ जलने लगे। सो ये जोश और ये जुनून और ये एंटरटेनमेंट का माहौल एकदम से खत्म नहीं होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, और एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, उनको सुनना है गाना मितवा भूल ना जाना। सो आपका मितवा बिल्कुल नहीं भूलेगा, वो बात अलग है कि अगर उसको भूलने की बीमारी है तब तो वो भूल ही जाएगा ना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड and stay always energetic like you are just simple who is not so simple. Stay tuned.

0: मितवा भूल न जाना। मोहम्मद अजीज जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश पर जो की है। बोरी वाली मुंबई से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये तो कहना चाहूंगी कि मोहम्मद अजीज जी की आवाज ने तो जैसे गुजरे हुए कल की हर याद को बिल्कुल से जिंदा कर दिया है। एक छोटी सी लाइन मेरे पास भी है इस गाने के लिए कि बिछड़ कर आपसे हम अब कहां जाएंगे, बिछड़ कर आपसे हम अब कहां जाएंगे, आप जब भी याद करोगे हम याद आएंगे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशा मिश्रा जी की लखनऊ से। आशा मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा कि अब हम तो हुए परदेसी तेरा यहाँ कोई नहीं। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना प्रेम रोग मूवी का सिर्फ और सिर्फ हमारी बहुत ही प्यारी सी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड,
1: डाउनलोड करिए।
0: ऐसा नहीं लग रहा कि माहौल पूरा का पूरा एकदम भावुक होता जा रहा है, इमोशनल होता जा रहा है। काय को भैया, रोने का नहीं है, रोने का नहीं है, ओनली एंजॉय करने का है। स्टे ट्यून्ड।

कि अब तो हम हुए परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं, हमने एंजॉय किया प्रेम रोग का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। लेकिन मुझे ये पूछना है कि अभी जो मैंने पिछले दो तीन गाने बजाए हैं और फिर आशु जी के गाने को मैंने प्ले किया है, फिर उसके बाद में मैं फरमाइश प्ले करने जा रही हूँ मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, क्या आप लोगों ने एक दूसरे से फोन करके पूछा था कि मैं सैड गाने की डिमांड करने जा रहा हूँ, क्या साथ ही में कर दें? क्योंकि आज मेरा पूरा का पूरा मकसद है आरजे सिंपल को रुलाने का। अगर ऐसा आपने सोचा था तो क्यों सोचा था? बैक टू बैक इतने सैड गाने हम सुन रहे हैं दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना अपनों में मैं बेगाना। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार की आवाज में बेगाना मूवी का फिर से शायद ये बहुत ही सैड सा सॉन्ग मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। आखिर क्यों? अच्छा, हस्ती खेलती हुई सिंपल किसी को अच्छी नहीं लगती है ना, मेरे घर वालों को भी नहीं अच्छी लगती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि मैं हस्ती खेलती हुई से एकदम चिढ़ी हुई जिद्दी लड़की लगने लगती हूँ और आप लोग बिना देखो रुला रहे हो मुझे। कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। स्टे ट्यून्ड।

बेगाना, किशोर कुमार जी की आवाज में बेगाना मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है रिंकू जैन की, और रिंकू जैन को सुनना है गाना तू शायर है और मैं तेरी शायरी। उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है द ग्रेट सेन साहब को, तो द ग्रेट सेन साहब के लिए एंजॉय करते हैं रिंकू जैन की तरफ से ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा जी,

तू शायर है मैं तेरी शायरी, और तू आशिक है मैं तेरी आशिकी। हमने एंजॉय किया है रिंकू जैन की फरमाइश पर ये वाला गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। तो क्या दोस्तों, बढ़े हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ? बढ़ेंगे बढ़ेंगे, चलेंगे चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से बताना चाहेगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में

0: 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
1: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। CBI ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। हमने एंजॉय किया है अनुराधा जी की आवाज में नगीना का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने चेहरे से जो हाजिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वसीम बरेलवी जी की ये बहुत ही प्यारी सी लाइन सी गाने को सुनने के बाद में मुझे उमड़ उमड़ के याद आ रही थी, तो आप सभी के सामने ज़रूर पेश करना चाहती थी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड री वेलकम एवरी वन। जुगल किशोर वर्मा जी, प्रमोद श्रीवास्तव, आशु मिश्रा जी, आवाज़ विकास गोंडा से रवि, आपका तो स्वागत ही है। इंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की, उनको सुनना है देश परदेश का गाना। सो इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, आप कहें और हम ना आए, सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे आपका जब तक साथ नहीं। हमने एंजॉय किया है शशि सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना रंग मूवी का इश्क ना मांगे। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। और क्या आप सभी ने आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह नोटिस किया कि आजकल बैक टू बैक इसी गाने की डिमांड की जा रही है सुरेंद्र जी की तरफ से? आखिर क्या बात है, आजकल ये गाना आपकी जुबान से उतर नहीं रहा है क्या? अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई गाने ऐसे होते हैं कि मेरे जुबान पे चढ़ जाते हैं और 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए जब भी मैं गुनगुनाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी वही गाना मैं गुनगुनाती हूँ। तो क्या ऐसा केस आपकी आरजे सिंपल की तरह आपका भी है? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय कर ही लेते हैं आपके पसंद का गाना। स्टे ट्यून्ड।

इश्क न मांगे जीत और इश्क न मांगे हार, हमने एंजॉय किया है रंग का ये गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, संतोष कुमार जी की गिलौली से। और संतोष कुमार जी को गिलौली से सुनना है कूली मूवी का गाना हमका इश्क हुआ है यारो। सो एंजॉय करते हैं आशा जी शब्बीर कुमार सुरेश जी की आवाज में ये सुपर डुपर हिट तड़कता भड़कता सा नगमा संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

शक हुई गवा यारो, हम भी कोई खबरिया लो, हमने एंजॉय किया है कूली का ये गाना। संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार गोंडा से, और उनको सुनना है गाना जा सजना तुझको बुला दिया। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सोनीपर जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो कि होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है प्रमोद श्रीवास्तव की गोंडा से, और प्रमोद श्रीवास्तव को गोंडा से सुनना है राज मूवी का गाना कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये गाना और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा दोस्तों। लेकिन अलविदा लेते लेते कुछ कहना भी चाहूंगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का बिल्कुल भी सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना प्रमोद श्रीवास्तव और आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, I love this song. इस पिक्चर के सारे गाने मुझे सुपर डुपर डुपर हिट लगते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर बताना कल। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, शाम का सलाम कबूल करें आप। और आज तो भाई बहुत खास दिन होता है, क्योंकि आज तो वो दिन होता है जिस दिन हमारे जो हफ्ते भर के श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता, और हम हो जाते हैं सामईन अर्थात सुनने वाले। तो भाई कलिन शुरू हो चुकी है, एक गज़ल हमने आपको इसलिए सुना दी ताकि आपका मूड बन जाए, थोड़ा सा गज़ल कहने का, शेर कहने का, शायरी कहने का, कविता कहने का, जो कुछ भी आपके पास है। तो भाई अब शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। जी हमारे साथ विशाल बेदर्दी जी हैं। जी हाँ, शुभ संध्या मनु सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और सविता शास्त्री जी हैं। जी हाँ नमस्कार सर जी। जी बिल्कुल प्रणाम करते हैं आपको। और देखते हैं भाई, दिन तो बहुत खास है बुधवार का, और देखना यह है कि आज के इस कार्यक्रम की आधारशिला, इस कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। तो फिलहाल आपका दूरभाष क्रमांक 6393 इंग्लिश में 6393316429 ये आपकी प्रतीक्षा में है। और हम चाहेंगे कि भाई अब आप में से कोई शुरुआत करें। कहा जाता है फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, पहला कदम बहुत कठिन होता है, लेकिन किसी न किसी को तो रखना ही पड़ता है, तो क्यों ना आप रखें। और जो रखेगा उन संदेह बहुत तो महान कहलाएगा। तो तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या, बहुत ही प्यारी सी गज़ल हमने सुनी भाई, और इसके पश्चात अब गीतों का, गज़लों का, कविताओं का, शेरों का, इन सब का सिलसिला हो चुका है प्रारंभ। जी हाँ, तो कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, और सविता जी हमको नज़र आ रही हैं भाई अपने चैट बॉक्स में। तो ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना, पहली बार सुनी थी हमने, और तब से अभी तक हमको वो पंक्तियाँ याद है, बहुत प्यारा गाया था। तो भाई अब देखते हैं शुरुआत कौन करता है, और जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम शुरू रखते हैं अपना। जी हाँ बिल्कुल, आशा भोसले की आवाज़ में वो गीत जिसको उन्होंने कहा था कि मैंने इतने गीत गाए लेकिन सबसे अच्छी अदायगी अगर किसी ने की तो वो इस गीत पर हुई थी, जो रेखा जी ने की थी। तो जब तक आपका फ़ोन नहीं आता है, हम फिलहाल इस गज़ल को सुनाते हैं, और आपका फ़ोन आते ही इस गज़ल को यहीं रोक कर शुरू करते हैं कालीन प्रोग्राम। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, फोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
1: हाँ हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास?
0: अरे आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के भी कुछ ऐसे दोस्त सुन रहे हैं जहाँ पर हिंदी समझी और बोली जाती है जी। प्रणाम
1: जी, मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ कोतवाली के सामने से।
0: जी जी, प्रणाम करते हैं आपको।
1: बस बस, हम भी आपका आवाज काफी दिनों से नहीं सुने।
0: जी जी,
1: कुछ एक कहावत नहीं है
0: जी,
1: किसी ने कहा है, कल मिला वक्त जुल्फे तेरी सुलझाऊंगा।
0: हाँ,
1: आज उलझा वक्त को सुलझाने
0: में। और ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल जो है वो आप हमारी जुल्फे आकर संवारिएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सर पे बाल कुछ कम बचे हमारे। और लेकिन अब
1: नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा
0: जी जी कुछ व्यस्तता
1: है कि उस समस्या में जरा उलझा हुआ हूँ।
0: नहीं कोई बात नहीं, अगर जहन में दीवार नहीं है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं। आप जब मिले तो अच्छे प्यार से मिले, गर्म जोशी के साथ मिले, ये अच्छी बात होती है।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मिल रहे हैं आपकी गर्म जोशी के साथ मिल रहे हैं।
0: जी जी,
1: क्या क्या सुनाऊं,
0: जो जो
1: कहूं,
0: जो आप सुनाना चाहें।
1: मुझे मुकद्दर का सिकंदर का वो लाइन याद आ रहा है
0: जी।
1: अरे आखिरी वाला लाइन मुझे कहना था,
0: जिंदगी तो बेवफा है।
1: नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, अरे जो रेखा के साथ जो अमिताभ बच्चन गा रहे थे आखिरी वाली लाइन।
0: अच्छा, रेखा के साथ जो गा रहे थे।
1: हाँ,
0: मतलब हैप्पी वाली लाइन।
1: हाँ हाँ, आखिरी वाली जो लाइन थी, याद नहीं आ रहा है कुछ क्या था वो, जरा थोड़ा बताइए तो मैं थोड़ा और कहूँ।
0: मुकद्दर के सिकंदर वो साथी देते हैं बिना भी क्या जीना।
1: मैंने रेखा के साथ वो जो अमिताभ बच्चन गा रहे थे,
0: वो इसके आगे की अब दास्तां।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: सुन के
1: इसके तेरे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबूबा जाएगी, बात अब तक जो थे क्या था तेरे दिल में थी, मेरा दावा है ओंठों पे आ जाएगी।

मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम लेकर चले आए हैं। अब दवा दे या दे दे तू मुझको जहर, तेरे महफिल में ये दिल जले आए हैं।

0: आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं, दे दुआएं तुझे
1: उम्र भर के लिए। वाह वाह, मजा आ गया।
0: इश्क मेरी जान जरा
1: कबूल कर लो, तो हम तो प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन,
0: आप ही लोगों से
1: क्या गाना था?
0: अरे नहीं, गाना तो आपका था, हमने तो केवल गुनगुनाया है। गाया तो आपने?
1: नहीं, गाया तो वो क्या है, किशोर कुमार ने था।
0: हाँ, किशोर कुमार ने, लेकिन फिलहाल आपने गाया।
1: मैंने गाना बहुत बढ़िया था, लिखने वाले ने जबरदस्त लाइनें लिखी थी। तू मसीहा मोहब्बत के मारो का है,
0: हम
1: तेरा नाम लेकर चले आए हैं।
0: उसके बाद रेखा जी ने डायलॉग बोला था उनसे, जो उनके साथ गए थे, उनसे कहा था इस महफिल में अगर कोई आता है तो या तो चोट खा के जाता है या चोट लेके जाता है, लेकिन ये पहला शख्स है जो मुझे चोट दे के जा रहा है।
1: नहीं नहीं, तो मसीहा मोहब्बत के मारों का है।
0: रेखा जी ने गुलशन बहादुर से यही बात कही थी, लोग इस महफिल पर तो चोट खा कर आते हैं, लेकिन ये पहला शख्स है जो चोट दे के जा रहा है।
1: अरे वो फिल्म भी जबरदस्त थी, उसके गाने भी बहुत अच्छे अच्छे थे। गाना था वो क्या कहते हैं जो आपने गाया था भी,
0: साथी ने तेरे बिना भी के लिए।
1: हाँ, वो भी बढ़िया था। और मुकद्दर का सिकंदर का जो था,
0: जी,
1: जो वो गाड़ी चला रहा था अमिताभ बच्चन शुरुआत में,
0: जी,
1: वो गाना था जो आपने गाया था,
0: रोते हुए आते हैं सब।
1: अब तो

0: का सिकंदर जान मम कहलाएगा। तो
1: क्या गाते हैं आप? आप लोगों को सुनकर थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं कि हम भी सीख लें।
0: नहीं नहीं, आपका प्यार है और आपका योगदान है कि हम अपनी बात आपके जरिए हम कह पा रहे हैं।
1: नहीं बिल्कुल, मतलब आपका स्नेह मिलता रहे और आप लोगों से सीख कर कुछ हम भी कर सके, ऐसी इच्छा है।
0: नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं।
1: नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये आपका गीत था जो अधूरा रह गया, तुमको लगा इसको पूरा करना चाहिए।
0: नहीं नहीं, वो आखिरी वाला लाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने गुनगुना दिया।
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार, बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके। और उससे भी अच्छी बात,
0: काफी दिनों बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ, मुझे लग रहा है काफी महीने हो गए
1: जी। लेकिन चलिए, खैर साल नहीं बीते, ये अच्छी बात है।
0: अरे मैं वही हूँ जो शराबी का गाना गाया था
1: जी,
0: याद कीजिए।
1: मुझे याद है, मुझे याद है।
0: हाँ, मेरे बाप को मुंह तो जवाब देने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। और समुन्द्र में तैरने वाली मछलियाँ कौन तालाबों में डुबकियाँ नहीं लगाया करती।
1: क्या बात है रवीन जी, क्या बात है। आज तबीयत खुश हो गई आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि अगले बुधवार को आपको फिर सुनेंगे।
0: जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद
1: जी, प्रणाम,
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हाँ भाई, तो ये रविंद्र सिंह जी भाई, और क्या बात है, फिल्म मेरी देखी हुई मुकद्दर का सिकंदर। धर्मेंद्र मोहन जी, ऐसा मत कहिए भाई, और मैं भी सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल। धर्मेंद्र मोहन जी आप सुन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुनिए मत। आज बुधवार का दिन है, आज सुनाइए, मतलब आज का ही तो दिन मिलता है आपको सुनाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये उचित दिन होता है कि आप अपनी बात कह सकें भाई। और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ चुका है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
1: अरे क्या बात है, दर्द कुमार जी, कैसे हैं?
2: हाँ ठीक है भैया
1: जी। तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे?
2: आज रोमांटिक वाला है।
1: अच्छा, मतलब आज आप
2: रोमांटिक गीत है जो कभी हुआ नहीं, ना कभी किसी ने गाया है, तो आज मैं एक गुनगुना दे रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, नहीं आप गाते हैं, गुनगुनाते तो हम हैं।
3: तेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे, चश्म पट्टू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म पट्टू। मुखवे को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म पट्टू। यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर से रा करो। यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर से बचा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चार संभल कर चला करो। मुखवे पे छुपा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे पट्टू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे पट्टू। एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे पट्टू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, چشم بد دل میں چھپی وہ تیر ہو تم کیا ہٹتی تقدیر نہ ہو تم کون نہیں ہوگا وہ دیوانہ جس کی تم تقدیر ہو تم نکلا نہ کرو تم راہوں میں جروں کی نظر نہ لگے چشم پٹو تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم پٹو. تھینک یو سر. سسار مووی کا ہے محمد
1: کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب, طبیعت خوش ہو گئی آپ کی سن کر, آج آپ رومانٹک کمار بن گئے.
2: نہیں بن نہیں گئے, ہم نے کہا چلو کوئی گیت ایسا گا تو جو کبھی کوئی گاتا نہیں, تھوڑا پرانی یادداشت تازہ کرنے لوگوں کا.
1: ہاں بالکل ضروری ہے, ضروری ہے.
2: یہ گیت آپ شاید بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے.
1: ہاں لیکن
2: میرا ماننا ہے,
1: ہاں اور یہ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ کسی کو دیکھ کر آپ نے گیت کبھی گنگنایا بھی ہوگا, لیکن وہ کون ہے اس کا نام آپ بتائیں گے نہیں, اس لیے چلیے کوئی بات نہیں, جانے دیتے ہیں. اچھا سلام کرتے ہیں آپ کو.
2: اچھا سلام سلام.
1: ہیلو
4: ہیلو از ناؤ بینگ ریکارڈیڈ.
1: ہیلو
5: ہیلو سر نمستے
1: جی. پرنام.
5: میں سویتا شاستری بول رہی ہوں.
1: سر اسپرش کیسی ہیں آپ؟
5: خوش رہیے. اچھے ہیں آپ بتائیے.
1: بس آپ کا آشیرواد.
5: چلیے آشیرواد تو ہمیشہ ہی ہے
1: جی.
5: چلیے آپ کے کارکرم کی شروعات تو اچھی ہو ہی گئی ہے.
1: ہم چاہیں گے کہ آپ بھی بہت پیارا گیت سنائیں.
5: میں وہی غزل سناؤں گی فلم گھٹنا کا, ہزار باتیں کہے زمانہ.
1: کیا بات ہے کیا بات ہے, بہت بہت پیاری غزل ہے. میری وفا پہ یقین رکھنا. کیا بات ہے.
5: کوشش ہے چھوٹی سی.
1: ارے آپ کی کوشش بہت کامیاب ہوتی ہے ہم کو پتا ہے.
5: چلیے شروع کریں.
1: جی جی شروع کریں. بالکل آج بدوار ہے, آج شروع کرنے کا. آج گائیے
5: جی.

मोहब्बत की जिंदगी को नजर न लग जाए इस जहाँ की, नजर न लग जाए इस जहाँ की, यही सदा है धड़कते दिल।

इस जहाँ की, यही सदा है धड़कते दिल की। मेरी सदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना।

0: हया है औरत काए के गहना, मेरी हया पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना।
1: हाय हाय हाय हाय, आप ही लोगों से सीख कर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम भी कुछ सीख लें गाने वाने के लिए।
0: मतलब, नहीं सर, आप तो गाते हैं, कुछ कुछ लाइनें गाते हैं, अच्छा गाते हैं।
1: नहीं, हम तो मतलब हम गाते नहीं, हम गुनगुनाते हैं। गाते तो आप लोग हैं, हम तो
0: नहीं नहीं गुनगुनाते तो सर हम लोग भी है, जैसा सोचे वैसा तो नहीं गा पाई हूँ, एक कोशिश ही है गाने की।
1: ये पहली बार किसी ने इस प्यारी सी गजल को गाया है, इसके पहले किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा, हजार बातें कहे जमाना।
0: तो
1: बहुत आपने पहली बार गाया और एकदम दिल कुछ हो गया।
0: मतलब, बहुत लोग कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ से कैसा गाना गाती हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ सर कि जो गाने में या गजल में जो शब्द होते हैं, जो सोल होते हैं, अगर वो पसंद आ जाते हैं तो वही गाना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये गाना अच्छा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गाना गा रहा है उसके ऊपर वो बीता हो।
1: जी नहीं, जी नहीं, आपने लेकिन आपने वो पहली गजल सुनाई थी, ये मेरे दिल नादा तू हमसे न घबरा।
0: जी जी,
1: मतलब
0: जी जी,
1: पहली बार आपने ही हमको एकदम पहली ही उड़ान में एकदम फ्लैट कर दिया। और भाई आपकी तारीफ भी है, रविंद्र सिंह जी लिखते हैं बहुत अच्छा गाना गाया है आपने, और जय शर्मा जी ने लिखा है नाइस परफॉर्मेंस, और पूरा निभाया नाइस, ये कायनात जी लिखती हैं।
0: जी जी, सबका धन्यवाद
1: भाई। वास्तव में आपका गला बहुत प्यारा है, और थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमको दिए ताकि हम भी गा सकें।
0: नहीं सर, आप तो गाते हैं, बल्कि हम लोग को मौका मिला है कि कुछ हम लोग गा के अपना अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं।
1: हम बिल्कुल नहीं गा पाते हैं, मतलब हम खाली से तो मन में आया तो सारा देख लिए तो हम अपने मोहल्ले।
0: नहीं सर, मैं आपका इंस्टाग्राम वगैरह में देखी हूँ, आपने गाया है दो गाना, और गाने गायकी से अच्छा तो आपने जो बजाया है टेबल,
1: क्या बात है, तो हाँ।
0: बहुत ही सुर में है
1: वो बस बस आप, आपका आपके चरणों का आशीर्वाद है। जी, अच्छा, चल स्पर्श,
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, तो कनक ने कहा वाह, सिर्फ सविता जी हैं, अब देखते हैं कौन है सर भाई। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: मतलब आपके नाम की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हुई करती थी अपने जमाने में, शायद उनका नाम मुमताज था, और आप वही बोल रहे हैं।
2: जी सर, आदाब।
1: आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: और कैसे हैं आप?
2: बस आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है। आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आप भी ठीक हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस बस बस आप लोग की दुआओं का असर है।
2: आपका गाना हमने सुना, बहुत अच्छा लगा हमको।
1: अरे मतलब आप के साहब, हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं आप लोग साहब।
2: अगर सामने होते तो दो छेना तो जरूर खिलाते आपको।
1: चलिए कोई बात नहीं, अभी हम घर आपके घर के पास आ जाते हैं, आप पैक करा के रखिए, हम अपने घर ले जाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है, वो रवीन जी ने गाया और हमको उसके आगे की लाइन पता थी इत्तेफाक से, तो हमने गा दिया, वरना हम गाते नहीं, हम तो गुनगुनाते हैं साहब, गाते तो आप लोग।
2: इजाजत हो तो हम भी कुछ सुना देंगे।
1: जी जी जी,
2: तो स्टार्ट करते सर।
1: निसंदेह,
2: तो लीजिए, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ सर।
1: जी बिल्कुल।

तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तो

अकेले में होंगी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन हो।

0: तौहीन होगी। जी सर,
1: क्या आवाज़ है? हमको लगता है फिल्म राम अवतार का गीत है, मोहम्मद अजीज की आवाज़ है।
0: जी सर,
1: सही हूँ मैं?
0: जी सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। क्या क्या खूबसूरत अंदाज में गाते हैं आप मुमताज जी, मतलब तबीयत
0: खुश कर देते हैं। ऊपर वाले का करम है सर, बताओ और क्या चाहिए।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद सिंह लिखते हैं, भाई जमाने में खुश रहना है तो अपने आप से मोहब्बत कीजिए। बिल्कुल, हम लोग वही कर रहे हैं।
0: मगर सर एक बात कहना और चाहते हैं।
1: जी,
0: मैंने मोहब्बत में जमाने का चलन देखा है। मैंने मोहब्बत में जमाने का चलन देखा है, लोग तो लोग ही अपने को दगा देते हैं। जी सर।
1: नहीं नहीं, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसका चलते हैं अपने अगले श्रोता की तरफ। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: ओह हो, दुनिया के सबसे गहरे सागर था तो प्रशांत महासागर जी, प्रणाम।
2: प्रणाम प्रणाम सर, कैसे हैं सर आप?
1: आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद आपका। आप कैसे हैं, आप बताइए।
2: बस बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। अभी आपका सर प्रोग्राम सुनने थे तो हमने कहा सर एक पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ।
1: बिल्कुल, मतलब निसंदेह आपके बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। गोंडा के जित नारायण है आप।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक आपकी महानता है सर।
1: नहीं, मानता नहीं, वो आपकी आपकी परिपक्वता है, आपकी गुणवत्ता है। हाँ, जो है उसे कहा जाएगा।
2: सर आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाने जा रहे हैं, केपी बाल सुब्रमण्यम जी का गाना गाया हुआ।
1: ओ क्या बात है, जिनको हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी।
2: लेकिन उन्होंने गाने बहुत अच्छे गाए हैं।
1: गाने बहुत अच्छे गाए हैं।
2: तो ये बहुत ही फेमस गाना है और काफी लोग इसे पसंद भी करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं।
1: जी जी, निसंदेह।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, एकदम हूबहू उतार दिया। हमको याद है जब हम लोग बचपन में ये गीत सुनते थे तो उसके बाद आता था एक साबुन, हम लोग गाते थे रेक्सोना। अगर आपको याद होगा तो मेरे सवालों का जवाब दो दोना। क्या बात है भाई, बहुत
0: एक गजल दो लाइन की मैं और गाना चाहूंगा
1: जी।
0: ये सलमा आगा जी का गाया हुआ है।
1: हाँ, दिल के अरमान नजदा में बह गए।
0: जी जी जी, फिल्म का गाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: जी जी जी,
0: फजा भी है जवान जवान,

तुनी दास्तां मजा भी है जवां हवा भी है रवां सुना रहा है ये समां सुनी सुनी दास्तां मजा भी है जवां जवां पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के लहर लहर के होंठ पर

0: तमाम सुनी सुनी दासता। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई प्रशांत जी, मानना पड़ेगा भाई आप जिसको गाते हैं उसके जैसा हो जाते हैं।
0: आज सर मैं हाई नोट को बहुत नहीं गा पा रहा हूँ, कुछ गले की दिक्कत है।
1: लेकिन मतलब बहुत प्यारा गाया है, लेकिन मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि किन शब्दों में कहूँ कि आपने कितना अच्छा गाया है।
0: थैंक यू सर।
1: हमारी बिटिया रानी सो गई है कि जाग रही है?
0: हाँ सर वो तो सो गई।
1: अगले बुधवार को भाई उनको जगा के रखिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: बहुत प्यारा गाया आपने और पिछले बुधवार शनिवार की कमी इस बुधवार को पूरी कर दी आपने।
0: बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर।
1: अच्छा प्रणाम आपको।
0: प्रणाम प्रणाम
1: जी भाई। तो ये प्रशांत जी हैं, उसके बाद चलते हैं देखते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: जी सर नमस्ते।
1: जी नमस्कार।
2: और आप कैसे हैं?
1: हाँ मतलब आप पूरब दिशा बोल रही हैं?
2: हाँ मैं पूर्व दिशा बोल रही हूँ।
1: जी हाँ, तो बंधु कौशल्या प्राची कौशल्या माँ के समान मैं प्राची जी को प्रणाम करता हूँ।
2: जी अब आज से मेरा नाम पूर्व दिशा ही है।
1: जी हम आपको पूर्व दिशा ही कहेंगे।
2: जी
1: कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस आपका आशीर्वाद है, क्या हो सकता है मतलब।
2: जी
1: जी
2: वो तो हमेशा रहेगा,
1: वो रखिएगा हमेशा आप अपने साथ।
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो आज क्या सुनने वाले हैं हम?
2: आज एक बहुत ही अच्छा गाना है, कैसे हुआ, कबीर सिंह मूवी का।
1: हो क्या बात है, क्या बात है।
2: तो वही मैं गाना चाहूंगी।
1: हाँ बिल्कुल, कैसे हुआ कबीर सिंह मूवी का।
2: जी जी।
1: तो पहले ये आप बताएंगी क्योंकि कबीर सिंह कैसे हुए?
2: नहीं ये मूवी है कबीर सिंह, वहाँ उसका गाना है कैसा हुआ।
1: ये बात है, जो नहीं मूवीज नहीं देखते इसलिए कबीर सिंह कोई मूवी है जिसका।
2: हाँ, उसका एक गाना है कैसे हुआ जो विशाल मिश्रा ने गाया हुआ है।
1: विशाल मिश्रा ने गाया हुआ, क्या बात है।
2: जी मैं भी मिश्रा हूँ, वो भी मिश्रा है।
1: वो भी मिश्रा है, मैं भी मिश्रा हूँ। जी क्या बात है।
2: तो मैं स्टार्ट करूँ?
1: जी नहीं निसंदेह।
2: मैं बारिश की बोली

0: थैंक यू सर। हेलो,
1: अच्छे गाने को मतलब मेल वॉइस को फीमेल वॉइस में इतना प्यारा निभाया आपने, यकीन
0: नहीं। मेल वॉइस जी जी थैंक यू सर।
1: नहीं नहीं तो कुछ फीमेल वॉइस में भी आपसे सुन लेते हैं भाई हम।
0: फीमेल वॉइस में क्या सुनाऊं, आज आप बोल लीजिए जो सुनाना हो।
1: मेरी आवाज ही पहचान है घर आते।
0: एक बहुत ही अच्छा गाना है श्रेया घोषाल का
1: जी,
0: वो मैं गाऊंगी।
1: क्या बात है जी।
0: थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, हाँ थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, मेरी सांसों की

0: थैंक यू सर।
1: प्राची जी, और आपसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत हमको भी सिखा दिए ताकि हम भी थोड़ा बहुत गा लें।
0: अरे आप इतना अच्छा वैसे ही गाते हैं।
1: अरे बाप, हमारी टांग खींच रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन
0: नहीं नहीं, आपके पास बहुत सारे गुण हैं। अच्छा। आप शायरी बोलते हैं, आप गाने गाते हैं, आप पढ़ाते हैं,
1: मतलब लेकिन मतलब जय का फॉल्ट है तो मास्टर आपने अच्छा कुछ भी नहीं कर पाते।
0: नहीं नहीं, आपने तो हर चीज बेस्ट ही किया है।
1: मतलब ये अगर कॉम्प्लीमेंट है तो भाई इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं कि मतलब अगर आप ऐसा मानते हैं तो।
0: हम तो ऐसा ही मानते हैं।
1: क्या बात है। चलिए, आपने हमारी हौसला अफजाई कर दी है।
0: जी।
1: हम भी गाने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आज से स्टार्ट कर दीजिए आप।
1: हाँ बिल्कुल, आज रात में 12 बजे से हारमोनियम लेकर बैठ जाएंगे हम।
0: हाँ, और आप लाइव गाइएगा।
1: मतलब
0: आप रेडियो पर लाइव गाइएगा।
1: हाँ, रेडियो पर लाइव गाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, रात में 12 बजे।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल, आप सुनते रहिएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: जी जी जी जी, अच्छा, प्रणाम
0: जी सर, नमस्ते
1: जी। जी भाई, तो ये पूरब दिशा अर्थात प्राची जी बहुत प्यारी श्रोता हमारी, और आज तो वक्ता बहरहाल वैसे तो श्रोता रहती हैं, और देखते हैं भाई मेरे पास 3 मिनट का समय और शेष है, और ये बहुत विशेष है। हम भाई धर्मेंद्र मोहन जी से कह रहे हैं कि भाई आपके दिल में जगह मिले या टाइम हो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साहब। धर्मेंद्र मोहन जी तुरंत हल्का फुल्का नहीं बल्कि बहुत हल्का फुल्का गुनगुना आलू बिल्कुल कचालू, और भाई हम कायनात जी को हमने देखा बहुत, मतलब लेकिन तस्वीरों में देखा लेकिन आवाज़ नहीं सुनी कायनात जी की कभी कभी। मतलब फ़ोन करके वो कह दें कि हाँ मैं कायनात बोल रही हूँ और ये सुना ले रही हूँ आपको, क्या मतलब, समझ लीजिए हम समझे कि जीवन हमारा सफल हो गया। मतलब इतना सुंदर गुलाब का फूल रखना अपने पास, सबको कॉम्प्लीमेंट देना और सबके लिए खुशियों की इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व तो जो होगा वो बहुत शानदार होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। तो फिलहाल जी हाँ, देखते हैं हमारे साथ कौन है।
2: हेलो सर जी।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी।
2: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: बस थोड़ा सा गुनगुनाना था।
1: ओहो धर्मेंद्र जी।
2: हाँ
1: जी जी,
2: सुना दे।
1: जी जी,
2: अभी तक तो सुनते थे
1: जी,
2: और सुना रहा हूँ
1: जी,
2: बस थोड़ा सा गुनगुनाना है
1: जी।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक जी, चाहे जिससे प्यार करूँ, चाहे गुले को साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूँ, सारा जहाँ मेरे लिए मेरे लिए बस सर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपके पास टाइम नहीं है, हमारे भी पास टाइम नहीं है।
1: नहीं नहीं, दोनों के पास समय है, कल फिर मिलेंगे भाई।
2: हाँ तो मिलेंगे तो जरूर ही।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि दिल लगा लिया है ना आपसे,
1: बस मोहब्बत करके भी प्यार करके,
2: बस यही तो दुनिया में है और क्या है।
1: और क्या है साहब, मोहब्बत के अलावा और क्या है।
2: बस यही मोहब्बत है और क्या है।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है। हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी, हेलो
3: हेलो
1: जी। हाँ मैं सुन रहा हूँ, प्रणाम।
3: प्रणाम सर
1: जी, आपका शुभ नाम।
3: जी सर, स्वाति सिंह नाम है मेरा
1: जी।
3: और आप? जी गोंडा है, कॉल लगा है मेरा।
1: जी हाँ बिल्कुल, गोंडा में ही कॉल लगा है आपका।
3: जी सर थैंक यू, मैं वही लगाई थी गोंडा ज्ञान स्थली।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही एकदम सही है आप।
3: जी सर, अभी प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं कॉल लगाई तो लग गया मेरा।
1: जी बिल्कुल, तो आज कालीन प्रोग्राम है, आज हमारे जो श्रोता होते हैं वो वक्ता होते हैं, वो गाते हैं, हम सुनते हैं, तो अगर आप कुछ गाएं या गुनगुनाएं तो हम आपको सुनें।
3: जी सर बिल्कुल गुनगुना देंगे, लेकिन सर आपकी आवाज थोड़ा भनक आ रही, मैं दोबारा कॉल कट करके लगा रही हूँ, फिर सुना रही हूँ आपको।
1: आवाज एकदम से सही आएगी, आप निश्चिंत रहिए, अभी स्पीकर आने इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
3: अच्छा सर, ऐसी बात है।
1: जी जी,
3: रिकॉर्डिंग आता है किसी दिन पे चैनल पे
1: जी
3: सर, रिकॉर्ड भी आता है पे आपके चैनल पे
1: जी। फिलहाल आप गाना गा दीजिए क्योंकि अगला प्रोग्राम प्रारंभ होने वाला है, फिर आप हमसे बात कर लीजिए तो मैं आपको सारी बातें बता दूं।
2: हेलो
1: जी,
2: अब बस मैंने सुना तो दिया आप।
1: हेलो
3: आज
1: जी, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप गुनगुना लीजिए उसके बाद आप मुझको फोन कर लीजिए तो मैं आपको सब समझा देता हूँ प्रोसेस।
3: जी क्या करने पहले?
1: पहले जो आप गाना चाहती हैं वो गा लीजिए।
3: सर आपको सुना देगा कि?
1: जी हाँ, हमको ही क्यों, मतलब सभी लोग सुन रहे हैं, 2.5-3 लाख लोग सुन रहे हैं।
3: अच्छा सुना दे रहे हैं। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल।
4: मेट्रो के दरवाजे खुले, भीड़ का एक सैलाब उसे अंदर ले गया। आर्यन के एक हाथ में उसका कीमती लैपटॉप बैग था और दूसरे में कैपेचिनो का गरम कप। तभी अचानक एक जोर का धक्का लगा, आर्यन का संतुलन बिगड़ा और उसकी पूरी कॉफी सामने खड़ी एक लड़की के सफेद लखनवी कुर्ते पर जा गिरी। पूरे कोच में सन्नाटा छा गया। लड़की के चेहरे पर हैरानी थी जो धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, आर्यन हड़बड़ाया। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला पर फिर झिझक कर रुक गया। लड़की ने अपने कुर्ते पर बने भूरे दाग को देखा और फिर आर्यन की उन घबराई हुई आंखों को। उसने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आवाज को स्थिर।
1: जी हाँ, और इसी के साथ तब आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, प्रसन्न रहेगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बहार दे गजल, ठीक 9:30। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थलीट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।
4: बस ग्लानी में डूबा रहा। जब लड़की नोएडा सिटी सेंटर पर उतरी तब आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उसे माफ कर चुकी हो। उस दिन आर्यन प्रेजेंटेशन में क्या बोला उसे कुछ याद नहीं रहा। उसे याद रहा तो बस वो सफेद कुर्ता और वो अजनबी चेहरा। अगले 15 दिनों तक आर्यन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वो उसी समय उसी कोच में उस लड़की को ढूंढने लगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फ्रेंडशिप इन मेट्रो। अब तक आपने सुना, आर्यन मेट्रो से ऑफिस जा रहा था। उस दिन उसकी नई नौकरी का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। उसके हाथ में कॉफी थी जो कि भीड़ के कारण मेट्रो में एक लड़की के ऊपर गिर पड़ी, लेकिन उस लड़की ने शायद उसे माफ कर दिया। आर्यन हर दिन बस उस लड़की को ही ढूंढने लगा। अब आगे 16वें दिन जब उम्मीद टूटने ही वाली थी, वो दिखी। वो एक कोने में खड़ी अमृता प्रीतम की एक किताब पढ़ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। उसने एक छोटा सा कागज का थैला उसकी ओर बढ़ाया। नमस्ते, मैं वही कॉफी विलेन। इसमें एक स्टेन रिमूवर पेन है और माफी के तौर पर एक डार्क चॉकलेट। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, रियली। लड़की खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सर्दियों की सुबह पहली धूप खिली हो। आप वाकई बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं। मैं ईशा हूँ, और वैसे दाग तो नहीं गया, पर कुर्ता अब विंटेज लगने लगा है। यहां से शुरू हुआ बातों का वो अंतहीन सिलसिला। ईशा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर थी। वो शब्दों की बाजीगर थी, जबकि आर्यन इमारतों का डॉक्टर। वो मेट्रो की खिड़की से बाहर भागती दिल्ली को देखते और सपनों की बातें करते। आर्यन उसे बताता कि कैसे पुरानी दिल्ली की हवेली आजम खां की मेहराबें आज की कंक्रीट की इमारतों से ज्यादा मजबूत हैं, और ईशा उसे समझाती कि एक विज्ञापन के एक छोटे से स्लोगन के पीछे कितनी रातों की नींद छिपी होती है। महीने गुजरे, उनकी दोस्ती अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां राजीव चौक का इंतजार काम से ज्यादा जरूरी हो गया था। एक शनिवार उन्होंने मेट्रो की भीड़ से दूर मिलने का फैसला किया, कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, जहां फाउंटेन की बौछारें हवा में ठंडक घोल रही थीं। ईशा ने अचानक पूछा, आर्यन तुम्हें डर नहीं लगता? हम इस शहर की भीड़ में दो छोटी सी बूंदों की तरह हैं। अगर कल हम एक दूसरे का नंबर खो दें, तो हम शायद कभी मिल ही ना पाए। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस पास की

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फ्रेंडशिप इन मेट्रो। अब तक आपने सुना आर्यन और ईशा की पहली मुलाकात मेट्रो में बाय एक्सीडेंट हुई और अब वो दोनों एक दूसरे के इतने

पक्के दोस्त बन गए थे कि उनके काम से भी ज्यादा जरूरी काम एक दूसरे का इंतजार करना हो गया था। और अब उनके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिछड़ने का डर भी आने लगा था। अब आगे बारिश की बूंदों ने ईशा के चेहरे को भिगो दिया था। आर्यन ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उस पहले दिन थी। उसने धीरे से ईशा का हाथ थामा। कोई वादा नहीं हुआ, कोई इकरार नहीं हुआ, पर उस बारिश ने उनकी रूहों पर एक मुहर लगा दी थी। जिंदगी अक्सर उस वक्त सबसे बड़ा झटका देती है जब हम सबसे खुश होते हैं। आर्यन के पिता, जो एक सरकारी रिटायर्ड अफसर थे, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि दिल्ली की भागदौड़ और प्रदूषण उनके लिए जानलेवा हो सकता है। उन्हें तुरंत किसी अच्छे, शांत, बढ़िया पर्यावरण वाले इलाके में शिफ्ट होना था। आर्यन के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। जिस दिन उसे ये बात ईशा को बतानी थी, उस दिन दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ईशा, मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। ईशा के हाथ में पकड़ा चाय का कुल्हड़ स्थिर हो गया। उसने आर्यन की तरफ नहीं देखा, बस सामने जलते हुए स्ट्रीट लाइट को देखती रही। कब? उसकी आवाज कांप रही थी। परसों पापा की टिकटें बुक हो चुकी हैं। ईशा खामोश रही। उस रात दिल्ली की सड़कों पर टहलते हुए उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े रखा, जैसे वो वक्त को थामना चाहते हों। जब आखिरी बार आर्यन ने उसे घर छोड़ा, तो ईशा ने बस इतना कहा, आर्यन, बड़े शहर में जाकर कहीं तुम दिल्ली के इन छोटी गलियों को भूल मत जाना। दूसरे शहर जाकर आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया। शुरुआत में रोज फोन होते थे, घंटों बातें होती थीं, पर धीरे धीरे फासले आने लगे। आर्यन को बड़े प्रोजेक्ट संभालने थे और ईशा दिल्ली में अपनी पहचान बनाने में जुटी थी। एक दिन ईशा का फोन आया, आर्यन, मेरी शादी तय हो गई है। पापा की पसंद का लड़का है, नेवी में है। आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं था, उसने बस इतना कहा, खुश रहना ईशा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फ्रेंडशिप इन मेट्रो। अब तक आपने सुना आर्यन और ईशा की पहली मुलाकात मेट्रो में हुई थी और फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर अचानक आर्यन के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से आर्यन को अपने घर लौटकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। फिर एक दिन ईशा का फोन आया कि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। आर्यन कुछ नहीं बोल सका। अब आगे, उस रात आर्यन ने एक डायरी खरीदी और उसमें अपना पहला खत लिखा, वो खत जो उसने कभी पोस्ट नहीं किया। अगले 5 सालों में उस डायरी में सैकड़ों खत जमा हो गए। वो ईशा से बात नहीं करता था, पर वो ईशा को लिखता था। 5 साल बाद आर्यन को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वापस दिल्ली भेजा गया। वो पुरानी दिल्ली की एक हवेली को बुटीक होटल में तब्दील करने का काम था। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे लगा जैसे हवा में अभी भी वही कॉफी की महक है। प्रोजेक्ट के दौरान आर्यन एक शाम लोधी गार्डन गया। वो वही जगह थी जहां वो घंटों बैठा करते थे। सूरज ढल रहा था, तभी एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में एक कागज का जहाज था आर्यन से आकर टकरा गया। अंकल मेरा प्लेन उड़ा दो, बच्चे ने चहकते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर जहाज पकड़ा और जैसे ही उसकी नजर बच्चे की आंखों पर पड़ी, उसे लगा जैसे उसने कोई पुराना सपना देख लिया हो। वही आंखें, वही गहराई। कबीर, चलो बेटा घर जाने का वक्त हो गया है, पीछे से एक आवाज आई। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। वो ईशा थी। उसने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में एक छोटा सा क्लच था। वो वैसी ही थी, पर उसकी आंखों में अभी दुनिया का तजुर्बा था। ईशा, आर्यन की आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही थी। ईशा रुकी, उसकी आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ी, फिर धीरे से एक मुस्कान आई। आर्यन, तुम यहां? वो दोनों एक बेंच पर बैठे। कबीर पास ही तितलियों के पीछे भाग रहा था। कबीर बहुत प्यारा है, आर्यन ने कहा। हाँ बिल्कुल अपनी पसंद का है, जिद्दी और मासूम, ईशा ने कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद ईशा ने अपने बैग से एक छोटा सा मखमली बटुआ निकाला, उसमें से एक मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका कागज निकाला। ये वो खत है आर्यन, जो मैंने उस रात लिखा था जब तुम जा रहे थे। मैं स्टेशन आई थी पर तुम्हारी ट्रेन जा चुकी थी। मैंने इसे कभी फाड़ा नहीं, शायद इसलिए कि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फ्रेंडशिप इन मेट्रो। अब तक आपने सुना आर्यन और ईशा की पहली मुलाकात मेट्रो में हुई थी और फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर परिस्थितियां बदली। आर्यन को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद घर वालों की मर्जी से ईशा की कहीं और शादी हो गई। 5 साल बाद जब किसी काम से आर्यन वापस दिल्ली आया तो उन दोनों की दोबारा अचानक एक पार्क में मुलाकात हो गई। ईशा ने 5 साल पहले का लिखा हुआ एक खत निकालकर आर्यन के सामने रख दिया। अब आगे आर्यन ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें सिर्फ एक कविता थी। पटरियां तो साथ चलती हैं उम्र भर, पर क्या कभी मिल पाती हैं? मंजिल शायद साथ ना हो हमारी, पर सफर की यादें हमेशा साथ निभाती हैं। आर्यन की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपने बैग से वो डायरी निकाली जिसमें 5 सालों के खत दफन थे। ईशा, ये मेरी 5 सालों की खामोशी है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ईशा ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। उसकी आंखें भर आईं। उसने डायरी बंद की और आर्यन का हाथ अपनी हथेली पर रखा। आर्यन, कुछ प्रेम कहानियां मिलन के लिए नहीं बनी होती, वो इसलिए बनी होती हैं ताकि दुनिया को पता चले कि अधूरापन भी कितना मुकम्मल हो सकता है। शाम के साए गहरे हो गए थे। ईशा उठी, उसने कबीर को आवाज दी और जाने लगी। आर्यन ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि अब उनकी जिंदगियां अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही हैं। ईशा ने जाते जाते मुड़कर देखा और कहा, आर्यन, उस स्टेन रिमूवर से कुर्ते का दाग तो चला गया था, पर तुम्हारी यादों का दाग आज भी ताजा है। वो चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा, हाथ में ईशा का वो पहला खत लिए। उसे आखिरकार अपनी कहानी का आखिरी स्टेशन मिल गया था। वो जान गया था कि मोहब्बत वो नहीं जो साथ रहे, मोहब्बत वो है जो बिछड़ने के बाद भी रूह में महकती रहे। मेट्रो की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी फ्रेंडशिप इन मेट्रो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की

0: सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोम फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आवास के नाम पर हम अगर किसी को याद करते हैं आज भी ज्यादा, तो ऐसे हीरो को जो कि हमारी जहन में हमारे दिल में आज भी राज करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कोई एक नायाब हीरा, हम उसे हमेशा से संभाल के रखते हैं। ठीक वैसे ही संगीत जगत में भी कई ऐसे हीरे हैं जिसे आज भी सुनना, उनके बारे में जानना हम बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक नायाब हीरे के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज भूले बिसरे गीत में लेकर के आई हूँ किशोर कुमार की कुछ बहुत ही प्यारी सी यादों को। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता कुंजी लाल और गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक गृहिणी थी। गृहिणी होने के नाते उन्हें बहुत सारे कामों के साथ संगीत से भी बहुत ज्यादा रुझान था। लेकिन उनके पिता, जैसा कि अभी मैंने बताया, किशोर कुमार के पिता कुंजीलाल जी को भी संगीत जगत में एक ऐसी उपाधि मिली हुई थी कि जिस पर वो हाथ रख देते थे वो उनके लिए काबिलियत की एक प्यारी सी कुंजी बन जाता था। इसीलिए कुंजीलाल गांगुली पेशे से तो एक वकील थे, लेकिन संगीत में उनका बहुत ज्यादा रुझान था और माता गौरी देवी एक गृहिणी होने के नाते अपने पति के साथ संगीत जगत में बहुत ही बखूबी से पैर को जमाया। अब कहते हैं ना कि जब माता पिता ही इस क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो बच्चे उसी पग पर चलने के लिए उतारू हो जाते हैं। जब किशोर कुमार माता गौरी के पास में आए तो उन्हें मानो एक स्वर्णिम सात दिन लगा, बिल्कुल ना भूलने वाला दिन। किशोर कुमार का जन्म जब वो आए तो उनके लिए ऐसे था जैसे कि अंधेरे में दीपक जलने जैसा। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत के साथ थी। माता उनकी एक बात को बहुत अच्छे से बताती हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक प्यारे से उनकी ही आवाज में एक गीत को। तो आइए दोस्तों सुना देती हूँ एक प्यारा सा गाना जो कि है किशोर कुमार की आवाज में।

जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि माता गौरी देवी एक गृहिणी होती, यानी कि किशोर कुमार की माता जी। तो किशोर कुमार जी की माता जी को पहले से ही शायद ये ज्ञात था कि हमारी कोख में जो एक बेटा है वो संगीत जगत का हीरा होने वाला है। ठीक उन्होंने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कई गानों को अपने आप से लिख डाला, गानों को गाने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें गुनगुनाने के लिए। माता गौरी देवी जब गर्भवती हो गई, उसके बाद में किशोर कुमार का जब जन्म हुआ, उनके तीन बड़े भाई बहन थे। सबसे पहले अशोक कुमार, एक प्रसिद्ध अभिनेता, अनूप कुमार अभिनेता, और एक बहन सती देवी। लेकिन किशोर कुमार अपने आप में एक ऐसी हस्ती थे, जब माता जब कोई भी गाना घर पे बैठे या फिर किसी काम में लीन होकर के कोई भी गाना अगर वो बजा देती थी, तो बचपन से ही वो हाथ हिलाना, पैर हिलाना और उस गाने को बहुत ज्यादा गंभीरता से सुनना किशोर कुमार की आदत में था। उन्हें पता था कि बड़े होकर के वो ऐसे दिग्गज, ऐसे महान संगीतकार बनेंगे जिसे दुनिया आज भी याद करेगी और हमेशा से याद करती रहेगी। किशोर कुमार के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसे हम शायद कभी भी भूलना पसंद नहीं करेंगे, जिसमें रूप तेरा मस्ताना और पल पल दिल के पास, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे गीतों को जब उन्होंने गाया तो वाकई में मानो संगीत जगत में एक ऐसा तूफान आया जिसे सभी लोगों ने सोचा कि इसके बाद तो कोई और संगीतकार हो ही नहीं सकता है। कई बार उनसे कहा कि तुम्हारे पिताजी एक वकील हैं, एक पेशे से एक वकील हैं, तो तुम्हें भी उन्हीं के साथ वकालत करनी होगी।

लेकिन उनकी तो दिशा ही कुछ और थी, उनका सपना ही कुछ और था, और उसमें माता जी ने उसका साथ दिया और साथ में पिता कुंजीलाल ने। कुंजीलाल गांगुली ने भी एक बार सोचा कि मैं जिस पेशे में हूँ, मेरा बेटा अगर उस पेशे में ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी काम दिल से करते हैं शायद उपलब्धि तभी मिलती है, सफलता तभी मिलती है। बस तब क्या था, कुंजीलाल यानी कि किशोर कुमार के पिताजी और माताजी दोनों ने उनका साथ दिया, और जब माता पिता का साथ हो तो किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। कहते हैं कि पूरी कायनात साथ होती है जब माता पिता का साथ होता है, और उनके साथ में उनके बड़े भाई किशोर कुमार जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता। किशोर कुमार जी ने अपने फिल्म जगत में किस तरीके से पैर रखा, क्या कुछ उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को सफर किया। शायद ये कह सकते हैं कि किशोर कुमार ने अपने ही भाई को देख करके फिल्मी जगत में कदम को जमाया। कैसे किया सब बताएंगे, लेकिन आइए पहले सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि है किशोर कुमार जी का।

किशोर कुमार जब मुंबई यानी कि बॉम्बे आए और अपने भाई अशोक कुमार के साथ में, जब उन्होंने फिल्मी में यानी फिल्म जगत में अपने भाई को देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मिली कि मेरा भाई यानी कि अशोक कुमार। आज भी अशोक कुमार की मूवीज को हम बहुत ही शौक से देखते हैं क्योंकि हर एक फिल्म में, हर एक मूवी में उनकी एक अदा ऐसी होती थी जिससे अर्थ निकलता था। उनकी पहली बतौर अभिनेता उन्हें मौका मिला शिकारी, जो कि 1946 में आई थी। शुरुआत में केवल अभिनेता बनना चाहते थे, गायक नहीं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड हुए थे अपने भाई अशोक कुमार से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गायन में रुचि दिखाई। गायन में एक गाना जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के शौकिया ही अपने गाने को गाना शुरू किया, तब उन्होंने आदर्श KL सहगल को नकल करते हुए गाना शुरू किया था। उन्हें क्या पता था कि ये नकल आगे चल कर के काफी लोगों की दिलों की धड़कन बन जाएगी और बाद में एक अपनी अनूठी शैली विकसित की जिन्हें हम आज भी बड़े ही शौक से सुनते हैं। किशोर कुमार कभी संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। किशोर कुमार जी को कभी संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया गया था। वे बेहद अनूठे और विचित्र स्वभाव के थे, साथ ही साथ इसीलिए वो सभी के दिलों पर राज भी करते थे और मशहूर भी हो गए। अपनी मस्ती और हास्य के लिए ये बड़े ही दिलचस्प जाने जाते थे। वे राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति में दौर में भी अपनी अलग पहचान को बनाने के लिए भी सफल हुए। उनका आदर्श केवल एक ही थे, जो कि KL सहगल। तो आइए इस प्यारे से गाने को सुनते हैं जो कि किशोर कुमार जी ने बड़े ही चाव से और साथ ही साथ KL सहगल की, जिसे कहते हैं ना कि हम जब हम किसी, कोई हमारे लिए आदर्श बन जाता है तो हम उनकी तरह बखूबी उनकी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि अशोक कुमार उनके आदर्श थे तो सेम टू सेम उनकी नकल करते हुए बहुत सारे गाने उन्होंने गाए थे। तो आइए किशोर कुमार जी का एक प्यारा सा गाना सुनते हैं जो कि KL सहगल की थोड़ी मिलती जुलती आवाज में है।

किशोर कुमार की आवाज में एक स्वाभाविक जोश, भावनाएं और नटखटपन था। वे हर भावना के गीत को जी लेते थे, ऐसे गाते थे जैसे वो उस गाने को जी रहे हैं। चाहे वो रोमांस हो तो पल पल दिल के पास, ओ मेरे दिल के चैन, मस्ती वाले मूड में हो तो खई के पान बनारस वाला, ये शाम मस्तानी, और अगर उदासी वाला गाना कोई होता था तो छू कर मेरे मन को, या फिर दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। दार्शनिक भाव से भी कई उन्होंने गीत गाए, जैसे जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। उनकी आवाज की रेंज इतनी प्यारी थी, इतनी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे उसमें ऊंचे स्वर निचले स्वर दोनों में समान निपुणता से वो गायन की शैली को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियों को शामिल किया अपने में जिसमें वह निपुण थे। निपुणता की अगर बात की जाए तो हर एक संगीतकार की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक सिग्नेचर होता है। तो किशोर कुमार जी का सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो हर एक मूड में हर एक भावना को गाते नहीं थे, उसमें वो जीते थे। चाहे रोमांस, मस्ती, उदासी, दार्शनिक भाव हो, हर एक गाने को इतनी ही मस्ती से वो गाते थे जैसे मानो उस गाने में वो पूरी जिंदगी जी रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर हम भी अपने किसी काम में जी लगा के, उसे जी करके, महसूस करके करें, तो शायद हमारे लिए भी उपलब्धि कदम चूमने के बराबर नहीं रह जाएंगी। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

किशोर कुमार अपने अनोखे और मस्त मौला स्वभाव के लिए तो मशहूर थे ही, उनका स्वभाव ऐसा था कि जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो आसपास के सभी लोग उनका इंतजार करते थे, क्योंकि साथ ही साथ में जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो साथ ही साथ उनके आसपास के लोगों को साथ में बैठ करके बड़ा ही मजा आता था। जैसे कई बातें होती थी जहाँ पर वो मूड मजाक और मस्ती में भी रहते थे, इसीलिए उनका इंडस्ट्री में उनकी रिकॉर्डिंग पे बहुत ज्यादा इंतजार होता था। वे पैसे को लेकर भी बहुत सचेत रहते थे। कहा जाता है कि अगर कोई उनका भुगतान ना करे, पेमेंट ना दे, तो सबसे पहले वो यही कहते थे, पेमेंट पहले गाना बाद में कहकर मजाक में उस गाने से इनकार कर देते थे। इसीलिए यही है एक सच्चे वाले प्रोफेशनल की, क्योंकि मजाक में ही अगर हम किसी बात को ये कह दें तो सामने वाले को भी बुरा ना लगे। ऐसे नहीं कि हमेशा से रौद्र में, क्रोध में अगर हम कोई चीज बोल देते हैं तो हमें लगता है कि हम उस इंसान पर, हम उस पर एक अपना रोब जमा रहे हैं। पर किशोर कुमार ऐसे नहीं थे, मजाक में ही सही पर अपने दिल की बात को कह देते थे। साथ ही साथ उनका सादा और सीधे शब्दों वाला ही जीवन था। इससे एक बात याद आ रही है मुझे कि सीधे और साफ शब्दों वाले इंसान जो होते हैं ना, वो दिल के बड़े सच्चे होते हैं, क्योंकि वो सामने तो आपको कुछ भी कह सकते हैं लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल वो निश्चल भावना से होते हैं। और ठीक वैसे ही किशोर कुमार भी थे। वे बहुत सीधे साधे जीवन जीने की कला को जानते थे। सामने कह देना उनकी एक कला में था, वो भी मुस्कुरा करके। शायद इसीलिए वो लोकप्रिय बनते गए। उनके कितने सारे फैंस थे जो कि आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके कई गानों को, उनके कैसेट्स को अपने पास में रखते हैं। तो आइए प्यार सा गाना सुना देती हूँ जो कि उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी उसमें से।

किशोर कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और शादी भी की, लेकिन मधुबाला की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने उनकी बीमारी के दौरान उनका बहुत ख्याल रखा और मधुबाला का निधन 1969 में हुआ। ठीक उनके जाने के बाद में शायद किशोर कुमार जी अकेले रह गए और बहुत ही उनकी याद को महसूस करने लगे। कहते हैं ना कि प्रेम तो प्रेम होता है, और अगर प्रेम के बाद में उसी को अपना करके शादी की जाए तो शायद प्रेम अटूट सा बन जाता है। और यही कारण था कि मधुबाला से उनकी प्रेम कहानी काफी समय से पहले से चल रही थी, लेकिन उनकी मुलाकात भी एक सेट पर ही हुई थी और उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदला। लेकिन मधुबाला का इस तरीके से चले जाना किशोर कुमार की जिंदगी को झकझोर के गया, क्योंकि किशोर कुमार ने बड़े ही दिल से, बड़े ही चाहत से मधुबाला को चाहा था और उसके बाद में शायद ही उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। ठीक उसके बाद यानी कि 15 साल वो अकेले रहे और उन्होंने अपने संगीत जगत में कई ऐसी उपलब्धियां पाई। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल के करीब दिल को चाहने वाला एक इंसान जब हमें छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो खालीपन रहता है, पर संगीत जगत को उन्होंने काफी कुछ दे करके गए। किशोर कुमार की बहुत सारी यादें, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसे आज हम शायद मधुबाला के साथ भी अगर सोच करके गाएं तो आपको यकीन होगा कि ये प्यार में, ये इश्क में, ये मोहब्बत में ही गाया जाने वाला गीत है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो कि किशोर कुमार ने मधुबाला के प्यार में गाया था।

1948 से 1947 तक लगभग चार दशकों में उन्होंने 2600 से भी अधिक गाने गाए और कहते हैं आज भी उनके गाने हर पीढ़ी के दिल में बसे हैं। उनके बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार ने उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और संगीत जगत में उन्होंने अपना नाम इस तरीके से रोशन किया जैसे कहते हैं ना कि एक दिया जला करके भी अगर हम किसे ढूंढे तो शायद वो नहीं मिलेगा। और आखिरकार हमने ऐसे हीरे को खो दिया 13 अक्टूबर 1987 को अपने जन्म स्थान खंडवा लौटने की योजना बना रहे थे लेकिन उसी दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मुझे खंडवा में ही दफनाया जाए जो कि पूरी की गई। तो ये थी किशोर कुमार जी की पूरी प्रारंभिक से लेकर के उनकी मृत्यु तक की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ में जो गानों का एक बहुत बढ़िया से तालमेल हम लेकर के आते हैं भूले बिसरे गीत में। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ, भूले बिसरे गीत को जब आप सुनते हैं कई सारे कमेंट्स भी करते हैं लेकिन आप लोगों की आरजेस जो कि लेकर के आती हैं, तो कुछ भी अगर आपको इसमें नया सुनना है या फिर किसी और एक कलाकार के लिए तो प्लीज चैट बॉक्स में आकर के सुन करके जरूर से हम आरजेस को बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए सफर में, आपकी अपनी आरजे ख्वाहिश को दे इजाजत, शुभ रात्रि।